सुप्रभात, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। सुबह के 7 बजे हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका आज का दिन शुभता, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। स्वागत है आप सभी का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: संकट मानव की अद्भुत समुत्थान शक्ति को उजागर करता है। ये हमारा दृष्टिकोण ही है जो निर्धारित करता है कि हम किसी भी विपत्ति का सामना किसी गरिमा और संतुलन के साथ करते हैं। कभी कभी तो परिस्थितियां ही हमसे अपेक्षा करती हैं कि हम अपने वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता को क्षण में सक्रिय कर आवश्यक ज्ञान और कौशल को तत्पर होकर सामने लाएं। हमारा दृष्टिकोण ही ये निर्धारित करता है कि हम किसी भी विपत्ति का सामना किसी गरिमा एवं संतुलन के साथ कर पाते हैं। यही हमारी समुत्थान शक्ति है।
1: जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे जीवन सौरभ। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको बता देते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनिएगा 7:20 से। वतन का राग आज का ही कार्यक्रम केंद्रित होगा शरद जोशी पर, सुनिएगा 8:00 से। आठ बजकर 30 पर आमने सामने कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस की बचत और इसका संरक्षण कैसे करें। विषय विशेषज्ञ आशा पाठक से सुनिएगा मोहम्मद दानिश की खास बातचीत।

वागर्थ में सुनिएगा सविता भार्गव का कविता पाठ 9 बजे से। बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम परिक्रमा, सुनिएगा 10 बजे से।

10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, उस्ताद अली अकबर खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी सुनेगा 11 बजे से।

विवेकानंद जी के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद सुनिएगा 11:30 से। श्रोताओ, इन कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुनेंगे रेडियो आजाद हिंद से 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं अग्नि, छंद है अत्यष्टि और अतिध्रति।
1: सूक्त 127। अग्निम होतारम मन्ये दासवंतम वसुम सूनुम सहसो जातवेदसम विप्रम न जातवेदसम य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा घृतस्य विभ्राष्टि मनु वष्टि शोचिषा जुह्वनस्य सर्पिषः। दैवी गुणों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म के संपादक जो अग्निदेव देवताओं के समीप जाने वाली ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से प्रदीप्त और विस्तार युक्त होकर अनवरत घृतपान की अभिलाषा करते हैं, उन देव आवाहन करता दान करता सबके आश्रय भूत अरणि मंथन से उत्पन्न शक्ति के पुत्र सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के सदृश अग्निदेव को हम स्वीकार करते हैं। यजिष्ठम त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठ मंगिरसाम विप्र मन्मभिर विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः परिज्मानमिव द्याम होतारम चर्षणीनाम शोचिष्केशम वृषणम यमिमा विषः प्रावन्तु जूतये विषः। हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्निदेव, हम यजमान उत्तम विचारकों के लिए मननीय मंत्रों द्वारा यज्ञ में आपका आवाहन करते हैं। ये प्रजाएं अपनी रक्षा के लिए श्रेष्ठतम तेजस्वी सूर्य के सदृश गतिमान यज्ञ निर्वाहक एवं प्रदीप्त किरणों से युक्त अग्निदेव को तुष्ट पुष्ट करती हैं। स ही पुरु चिदोजसा विरुक्मता दिद्यानो भवति द्रुहंतरः परशुर्न द्रुहंतरः वीडु चिदस्य स्मृतौ श्रुवद वनेव यत्स्थिरम् निष्हमाणो यमते नायते धन्वा सहा नायते। वे अग्निदेव तेजोमयी सामर्थ्य से अत्यंत दीप्तिमान शत्रुओं में भय का संचार करने वाले तथा फरसे के तुल्य द्रोहियों का नाश करने वाले हैं। धनुर्धारी अचल योद्धा की तरह जिनके प्रभाव से बलवान शत्रु भी पराजित हो जाते हैं एवं अनुशासन स्वीकार करते हैं, उन अग्निदेव के संयोग से अत्यंत कठोर पदार्थ भी खंड खंड हो जाते हैं। दृढ़ा चिदस्मा अनु दुर्यथा विदे तेजिष्ठा भिररणिभिर दाष्टवसे अग्नये दाष्टवसे प्रयह पुरुणि गाहते तक्षद्वनेव शोचिषा स्थिरा चिदन्ना निरिणात्योजसा निस्थिराणि चिदोजसा। जैसे ज्ञानी पुरुषों को धन देने का विधान है, उसी प्रकार अति सुदृढ़ मनुष्यों द्वारा अपने संरक्षण के निमित्त अग्नि में हविष्यान्न देने पर अरणि मंथन से प्रकट होने वाले अग्निदेव अपनी प्रचंड ज्वाला से प्रदीप्त होकर उसे ऐश्वर्यों से परिपुष्ट करते हैं। जिस प्रकार अग्निदेव असंख्य वनों में प्रविष्ट होकर उन्हें जला डालते हैं तथा अपने तेज से अन्नों को पकाते हैं, वैसे ही वे अपनी तेजस्विता से सुदृढ़ वैरियों को भी धराशायी कर देते हैं। तमस्य पृक्षमुपरासु धीमहि नक्तम यह सुदर्शतरो दिवातरादप्रायुषे दिवातरात् आदस्यायुर्ग्रभ्रमण वद्वीरु शर्म न सूनवे भक्तम भक्तमवो व्यंतो अजरा अग्नयो व्यंतो अजराह। हम अग्निदेव के निमित्त यज्ञीय हविष्यान्न अर्पित करते हैं, जो दिन की अपेक्षा रात्रि को अधिक रमणीय लगते हैं। जैसे पुत्र के लिए पिता द्वारा सुखदायक निवास दिया जाता है, वैसे ही दिन की अपेक्षा रात्रि में प्रखर तेजस्वी दिखाई देने वाले अग्निदेव के निमित्त हवियां समर्पित करें। ये अग्नि ज्वालाएं भक्त या अभक्त दोनों का भेद किए बिना प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करती हैं। हविष्यान्न ग्रहण करने वाले अग्निदेव सदा जरा रहित रहते हैं और यजमान को भी अजर अर्थात प्रखर बना देते हैं। स ही शर्धो न मारुतम तुविश्वणि रपनस्वती शूर वराविष्ट निरार्तना स्विष्टनिहि आदध्वा न्याददिर्यज्ञस्य केतुर्हणा अध स्मास्य हर्षतो हृषीवतो विश्वे जुषंत पंथाम नरह शुभे न पंथाम। पूजनीय अग्निदेव यज्ञीय कर्मों उपजाऊ क्षेत्रों और रण क्षेत्रों पर सभी जगह वेगवान वायु की तरह ही ऊंचे स्वर से गर्जना करते हैं। यज्ञ की ध्वजा रूप पूजनीय अग्निदेव हवियों को स्वीकार कर हविष्यान्न ग्रहण करते हैं। निज की प्रसन्नता के साथ दूसरों के लिए भी आनंद प्रद इन अग्निदेव के मार्ग का संपूर्ण देव उसी प्रकार कल्याण प्राप्ति हेतु अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य कल्याण की इच्छा से सन्मार्ग गामी होते हैं। द्विता यदीम कीस्तासो अभिद्यवो नमस्यन्त उपवोचन्त भृगवो मथनन्तो दाशा। भृगवः अग्निदीशे वसूनां शुचिर्यो धरणिरेषां प्रियां अपिधीं वर्णिशिष्ट मेधिर आ वनिशिष्ट मेधिरः। जब भृगुवंश में उत्पन्न ऋषियों ने मंथन द्वारा इन अग्निदेव को प्रकट किया और स्तोत्रकर्ता तेजवान तथा विनयशील भृगुओं ने दो प्रकार से उनकी प्रार्थनाएं की, तब परम पावन धारण करने योग्य ज्ञानी अग्निदेव ने प्रेम पूर्वक अर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण किया। वे ज्ञानी अग्निदेव धनों पर प्रभुत्व स्थापित करते हुए निश्चित ही हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करेंगे। विश्वासाम त्वा विशाम पतिम हवामहे सर्वासाम समानम दंपतिम भुजे सत्यगिर वाह संभुजे अतिथिम मानुषाणाम पितुर्न यस्यासया अमी च विश्वे अमृतास आवयो हव्या देवेश्वा वयः। हम संपूर्ण प्रजा के रक्षक, समदर्शी, गृहपालक, सत्यवादी, अतिथि रूप अग्निदेव को उपभोग्य सामग्री के निमित्त आवाहित करते हैं। उन अग्निदेव के निकट हविष्यान्न पाने के लिए संपूर्ण देव उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार पुत्र पिता के पास अन्न सामग्री की प्राप्ति हेतु जाते हैं। इसी भाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। त्वमग्ने सहसा सहन्तमः शुष्मिन्तमो जायसे देवता तये रैर्न देवता तये शुष्मिन्तमो हि ते मदो द्युम्निन्तम उत क्रतुः अधस्मा ते परि चरन्त्यजर सृष्टिवानो नाजर। हे अग्निदेव, आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं के पराभव करता और अति तेजस्वी रूप में ही प्रकट हुए हैं। जैसे देव यज्ञों के निमित्त धन प्रकट होता है, वैसे ही अग्निदेव यज्ञीय संरक्षण के लिए प्रादुर्भूत हुए हैं। आपकी प्रसन्नता अति बलप्रद और कर्म प्रखर तेजस्वी हैं। वे अविनाशी अग्निदेव इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण सभी मनुष्य दूत रूप में आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। वो महे हसा सहस्वत उषर्बुधे पशुषे नान्ये स्तोमो बभूत्वग्नये प्रतियदीम हविष्मान विश्वासु क्षासु जोगुवे अग्रे रेभो न जरत ऋषूणाम जूर्णिर्होत ऋषूणाम। हे साधको, शत्रु पराभव करता प्रभात वेला में जागरणशील अग्निदेव को आपके महिमामय स्तुतिगान उसी प्रकार से प्रसन्नता प्रदान करें जैसे उदार मना पशुधन आदि का दान देने वाले मनुष्य को मनुष्यों द्वारा की गई स्तुतियां प्राप्त होती हैं। यज्ञ संपादक सभी जगह इसी भाव को दृष्टिगत रखकर प्रार्थनाएं करते हैं। स्तुतिगान में कुशल होता सभी देवों में सर्वप्रथम इन अग्निदेव को उसी प्रकार प्रशंसित करते हैं जिस प्रकार चारण गण धनवानों की प्रशंसा करते हैं। स नो नेदिष्ठम ददृशान आभराग्ने देवेभिः सचनाः सुचेतुना महो रायः सुचेतुना महि शविष्ठ नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्यै महि स्तोत्रिभ्यो अघवसंतुर्वीर्यम मथिरुग्रो न शवसा। हे अग्निदेव, समीप से दीप्तिमान दिखाई देने वाले आप देवताओं द्वारा पूज्य हैं। आप कृपा पूर्वक श्रेष्ठ धन से हमें परिपूर्ण करें। हे सामर्थ्यवान अग्निदेव, आप दीर्घायुष्य के लिए उपभोग्य पदार्थों को प्रदान करके अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं का संहार करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रोताओं, प्रभु की कृपा से मिली इस पावन सुबह में आइए हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें कि हमारे विचार शुद्ध हों, हमारे कर्म सच्चे हों और हमारा मन प्रेम करुणा और मानवता से भरा हो। इसी मंगल भावना के साथ आइए सुनते हैं ये मंगलकारी भजन।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: और हमारा आज का ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है शरद जोशी की जयंती पर।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदमी के पास अगर दो विकल्प हों कि या तो वो बड़ा अफसर बन जाए और खूब मजे करे, या फिर छोटा मोटा लेखक बनकर अपने मन की बात कहने की आजादी अपने पास रखे, तो भाई बहुत बड़े अफसर की तुलना में छोटा सा लेखक होना ज्यादा मायने रखता है। लेखक के पक्ष में एक बात और जाती है कि उसके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। हम कभी नहीं कहते कि स्वर्गीय कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं या स्वर्गीय प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे। लेखक सदा जीवित रहता है। ये विचार थे अपने समय के अनूठे व्यंग्यकार शरद जोशी के। और सच है कि व्यंग्य को हंसने हंसाने की हास्यास्पद कवायद नहीं, बल्कि जन पीड़ा की तार्किक अभिव्यक्ति के रूप में लोगों के समक्ष रखने वाले महान व्यंग्यकार शरद जोशी आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। उनके तीखे शब्द हमेशा लोगों को जगाते रहेंगे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी का नाम शामिल है। उनकी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों की बेबाक तस्वीर नजर आती है। अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ सटीक शब्दों में व्यक्त किया। वो भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में मंच पर गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। फिर शरद जोशी 25 सालों तक कविता के मंच से गद्य पाठ करते रहे। वो एक स्थापित व्यंग्यकार तो थे ही, इसके साथ ही उन्होंने उपन्यास लिखे, व्यंग्य नाटक लिखे, उन्होंने अनेक टीवी धारावाहिक लिखे और इसके साथ ही कई फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। उनकी भाषा शैली और प्रस्तुतीकरण का ढंग विषय के मुताबिक होता, जो सीधे उनके पाठकों या दर्शकों के मन में उतर जाता था। सामाजिक विसंगतियों को लेकर एक बेचैनी उनके मन में हमेशा रही, जो उनके पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं को आंदोलित कर देती थी।

शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास जोशी और माताजी का नाम शांति जोशी था। उनका परिवार मूलतः गुजरात का रहने वाला था, जो बाद में मालवा में आकर बस गया था। शरद जोशी के पिता रोडवेज में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। चूंकि पिता का स्थानांतरण होता रहता था, इसलिए शरद जोशी का बचपन मऊ, उज्जैन, नीमच, देवास और गुना जैसे छोटे शहरों में बीता। दौलतगंज मिडिल हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और बाद में इंदौर के होलकर महाविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा हासिल की। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। अपने शिक्षा काल से ही वो लेखन से जुड़ गए थे, यहां तक कि अपने लेखन से प्राप्त आय से ही उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। सन 1955 में शरद जोशी आकाशवाणी इंदौर में पांडुलिपि लेखक के रूप में कार्य करने लगे थे। उसके बाद वो मध्य प्रदेश सूचना एवं प्रकाशन विभाग में जनसंपर्क अधिकारी रहे। यहां रहते हुए उनकी पहचान एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार के रूप में हो चुकी थी। कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और स्वतंत्र लेखन को ही अपनी आजीविका के साधन के रूप में चुना। किसी के बंधन में बंध कर रहना उनके स्वभाव में नहीं था, इसीलिए उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर पत्रकारिता की ओर रुख किया। शरद जोशी ने अपने लेखकीय जीवन का आरंभ कहानियों से किया था। 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी रचनाएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी थीं। दरअसल शरद जोशी अपने आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस वजह से उनके अति घनिष्ठ मित्र और हितैषी भी उनसे दूर हो गए। मतभेद हुए तो अत्यंत आत्मीय संबंध भी कड़वाहट में बदल गए। लेकिन शरद जोशी ने सदा वही कहा और वही किया जो उन्हें सही लगता था। अपनी आलोचना से खिन्न होकर ही उन्होंने व्यंग्य लिखना आरंभ किया था। दुनिया के अखबारी इतिहास में ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलेंगे कि किसी लेखक के स्तंभ को पढ़ने के लिए पाठक विशेष रूप से किसी अखबार को खरीदें। ये सौभाग्य शरद जोशी के हिस्से था। उनका रोजाना स्तंभ प्रतिदिन अत्यंत लोकप्रिय था। ये कॉलम अखबार के आखिरी पन्ने पर छपता था। पाठकों को इस कॉलम का बेसब्री से इंतजार रहता। इसे पढ़ने के लिए वो विशेष रूप से अखबार खरीदते और अखबार पढ़ने की शुरुआत अंतिम पृष्ठ से करते। सन 1960 के बाद का समय हिंदी साहित्य में विरोध के स्वर की स्वीकार्यता का दौर था। इससे पहले विरोध को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी। शरद जोशी ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरी चोट की। लोगों को लगा कि जो बात वो नहीं कह पाते वो इन व्यंग्यों में कही गई है। उन्होंने राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। शरद जोशी ने लोगों को किसी भी घटना को देखने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने शालीन भाषा में भी अपनी बात बहुत बारीकी से रखी, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। शरद जोशी ने जनता की समस्याओं को जनता की भाषा में जनता के सामने अनोखे ढंग से रखा। उनकी कलम की संवेदना ने जन जन के मन को छू लिया।

शरद जोशी एक आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। तमाम रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने इरफाना सिद्दीकी से विवाह किया था। इरफाना एक पढ़ी लिखी उदार विचारों की लड़की थीं, जो उन दिनों रंगमंच और कथा साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय थीं। दोनों का ये विवाह परिवार को स्वीकार नहीं था, लेकिन दोनों ने ही इसका डटकर सामना किया। दरअसल शरद जोशी की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। उन्होंने जैसा लिखा वैसा ही जिया भी। उन्हें किताबें खरीदने और पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें खरीदने के लिए वो अपनी आय में से बड़ी राशि खर्च कर दिया करते थे। उन्होंने यशपाल, प्रेमचंद, टॉल्स्टॉय, चेखव, गोरकी, रवींद्रनाथ टैगोर, मंटो और कृष्णचंदर जैसे महान साहित्यकारों को खूब पढ़ा और उनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित भी हुए। इसीलिए उनके भीतर एक गहरी साहित्यिक समझ हमेशा नजर आती है। जितनी विविधता उनके विषयों में दिखाई देती है, उतनी ही उसके प्रस्तुतीकरण में भी झलकती है। उनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राग भोपाली, घाव करे गंभीर आदि। शरद जोशी ने दो व्यंग्य नाटक तथा उपन्यास भी लिखे थे। उनके लिखे टीवी धारावाहिक अत्यंत लोकप्रिय हुए, जिनमें प्रमुख थे ये जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और वेताल, सिंहासन बत्तीसी, दाने अनार के आदि। इसके साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। ये फिल्में थीं क्षितिज, गोधूली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सांच को आंच नहीं, दिल है कि मानता नहीं आदि। शरद जोशी ने रेडियो में वार्ता, प्रहसन और नाटक भी लिखे। उन्हें साहित्य जगत में विशेष पहचान तब मिली जब धर्मवीर भारती ने उनकी एक व्यंग्य रचना गागरिन का यात्रा भत्ता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। वो पूरे 25 साल तक कवि सम्मेलन के मंचों पर व्यंग्य पाठ के साथ उपस्थित होते रहे। हिंदी साहित्य जगत में टिकट खरीदकर व्यंग्य सुनने वाले श्रोताओं की परंपरा की शुरुआत शरद जोशी ने ही की। वो कहा करते थे कि आप सर्कस देखने जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, तो फिर किसी लेखक की रचनाएं बिना दाम चुकाए क्यों सुनना चाहते हैं। उन्होंने मंच पर खूब व्यंग्य पढ़े और खूब लोकप्रियता अर्जित की। जैसे कवि सम्मेलनों में कवि बुलाए जाते थे, वैसे ही शरद जोशी भी बुलाए जाते थे, और उनका व्यंग्य पाठ अच्छे से अच्छे कवि पर भी भारी पड़ता था। शरद जोशी की व्यंग्य रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। उनकी व्यंग्य रचनाओं की विशेषता थी उनकी तात्कालिकता। देश समाज में घटित होने वाली घटनाओं पर वो तुरंत व्यंग्य लिखते थे, इसीलिए पाठक तुरंत उनसे जुड़ जाते थे। अपनी सहज और बोलचाल की भाषा में लिखी रचनाओं के द्वारा वो पाठकों के मन तक अपनी पहुंच बना लेते थे। उनका व्यंग्य लेखन मस्तिष्क को केवल झकझोरता भर नहीं था, बल्कि एक नई सोच पैदा करता था। जनता उनके लेखन के केंद्र में थी। उनकी रचनाएं आम जन में जागृति पैदा कर देती हैं। उनका व्यंग्य पाठकों की बौद्धिकता को उत्तेजित कर देता है। इसीलिए शरद जोशी आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। अपने हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलेपन से आम जन को जगाने वाले शरद जोशी ने 5 सितंबर सन 1991 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स।
1: हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
0: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आमने सामने। इसके अंतर्गत सुनिए LPG की बचत और इसका संरक्षण कैसे करें, इस विषय पर विषय विशेषज्ञ आशा पाठक से मोहम्मद दानिश खान की बातचीत।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं दानिश। कार्यक्रम आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर से जुड़ा है, LPG गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह हमारे घरों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसका मुख्य उपयोग खाना बनाने में होता है। यह गैस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने की प्रक्रिया से निकलता है। भारी दबाव डालकर इसे तरल रूप में बदला जाता है ताकि सिलेंडरों में भरा जा सके और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ आशा पाठक जी। नमस्कार मैम।
4: नमस्ते, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: मैम, सबसे पहले हम इस विषय पर आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे श्रोता भी, कि LPG गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए।
4: बहुत ही आवश्यक एक प्रश्न है, क्योंकि LPG हर घर में भोजन तो बना ही रहा है और साथ में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान कर रहा है। कहीं अगर रात में कोई मेहमान आ जाए और चूल्हा जलाना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला का मानसिक स्थिति जो है वो क्या होती है, उस समय लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक प्रकार से LPG जो है परिवार में खुशियां लाता है और ये सबसे ज्यादा बोलना सुविधाजनक ईंधन है और साथ में सुरक्षित ईंधन है। तो LPG का उपयोग जो है वो घर घर में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही आज जो है LPG से चलने वाली गाड़ियां भी हैं और LPG इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो LPG एक प्रकार से इसीलिए ये इस्तेमाल होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक ईंधन है। इसको एक तो कन्वीनियंट है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं या तो फिर हम उसको पाइपलाइंस के जरिए हम भी ले सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है।
3: तो क्या LPG एक सीमित संसाधन है और इसे बचाना क्यों जरूरी है?
4: जी हाँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि LPG आपने बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम मींस वही जो पेट्रोलियम से निकला क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, तो ये कच्चे तेल का ही एक मतलब उसमें से फ्रैक्शन है। दो तरीके से वैसे तो बनाया जाता है ये, थोड़ा इसलिए इसका उत्पादन पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हम जो कई बार जो कुएं होते हैं तेल के, उसके ऊपरी सतह पर एक गैस हमको मिलती है, उसे आप बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं पेट्रोलियम कच्चे तेल का, उसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। या तो फिर कई कुएं ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, तो उससे भी इसको बनाया जाता है। और साथ में क्रूड ऑयल के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो है हमें एक गैस मिलती है। तो यही गैस जो है उसको फिर हम लिक्विफाइड रूप में लाते हैं, मतलब तरल बनाते हैं, उसको इतना प्रेशर देते हैं कि वो, इसका एक गुण है ये कि अगर इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो ये एक तरल रूप में बन जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है इसका, उसके कारण ही हम इसे सिलेंडर में भर पाते हैं, नहीं तो 200 ग्राम गैस भी पूरे सिलेंडर को भर लेती। तो हम इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भर पाते हैं। मतलब ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, जो घरेलू हम लाल वाला जो सिलेंडर होता है, फिर उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर है या अलग अलग, फिर वो उनके मतलब

0: जरूरी है क्योंकि पेट्रोलियम से बना है, तो पेट्रोलियम तो एक प्राकृतिक ईंधन, प्राकृतिक रिसोर्स है, और इसको बनने में लगभग 250-300 करोड़ साल लग जाते हैं। तो इतना लंबा समय इसको बनने में लग रहा है, फिर आप खर्च करने में तो कुछ सेकंड्स में खर्च कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो। हमने तो बहुत इस्तेमाल कर लिया पिछले 50 साल से ही, समझ लीजिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आगे के बच्चों का क्या होगा, आगे के जनरेशंस का क्या होगा, जो आगे हमारी बहुएं आएंगी उनका क्या होगा? खाना तो सबको हमेशा रोज ही चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। तो इसीलिए इसको संरक्षित करके न केवल हम अपना पैसा बचा रहे हैं, बल्कि साथ ही जो भविष्य में जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए हम कुछ
1: छोड़ के जा रहे हैं।
0: तो इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि अब ये बहुत कम बचा हुआ है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी में अंदर से निकाला जाता है, किसी फैक्ट्री में तो आप बना नहीं सकते। तो ये एक कारण है कि इसका संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है।
1: घर में एलपीजी की खपत कम करने के आसान तरीके क्या है?
0: बहुत ही आसान से तरीके हैं
1: जी।
0: और ये कोई तरीके ऐसे नहीं है कि एलपीजी में ही इस्तेमाल, एलपीजी में कुछ विशेष अलग भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वही सब हैं जो कि शायद मेरी दादी भी जब चूल्हा जलाती थी गाँव में तो वो इस्तेमाल करती थी, कि वो जो है लकड़ी कम इस्तेमाल हो या सिगड़ी में कोयला कम इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं वही उसका एक थोड़ा दूसरा रूप एलपीजी में आता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है या कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर कि कोई नहीं कर सकता इसको। तो पहला तो क्योंकि हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिलेंडर के नीचे अगर आप एक लकड़ी का पटा रख दें है ना, लोग आजकल वो एक मतलब स्टैंड टाइप रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जगह अगर आप लकड़ी का पटा रख दें, लकड़ी क्या होती है, ये एक कुचालक है ऊष्मा की, तो आपके जो फर्श होता है वो ठंडा है, और खासकर ठंड के दिनों में तो और ठंडा हो जाता है। तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सिलेंडर के, तो हमारी जो गैस जो है वो थोड़ी नीचे जम जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि गैस खत्म हो गई है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन की कुछ समय, कुछ घंटे तक आप उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट चला जाएगा आपका। तो नीचे आप लकड़ी का पटा रख लीजिए, तो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए, मतलब बचत के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, कुछ घंटों का। उतना भी अगर हम ऐसे 1000 सिलेंडर देखें, 100 सिलेंडर देखें, तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। और जो दूसरे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इनका अगर आप उपयोग कर लें तो 23% तक आपका ईंधन बच जाएगा। मतलब 23% मतलब लगभग एक हफ्ता हो गया।
1: बिल्कुल,
0: एक हफ्ते का सिलेंडर अगर आप गैस की बचत कर रहे हैं, तो ऐसे आप सोचिए कितने घर, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना जो घर घर तक एलपीजी पहुंचाने की थी, तो एलपीजी हम पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे? 23% हम इसी तरीके से बचा सकते हैं। पहला तो आप देखेंगे कि दो आपके बर्नर होते हैं, छोटा एक बड़ा है, कई बार चार बर्नर भी होते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप छोटे बर्नर्स का इस्तेमाल करें, छोटे बर्नर, या तो फिर बड़ा बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसको एक बार कोई भी, जैसे अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने देखा स्टीम हो गई है उसके अंदर, काफ़ी स्टीम आ गई है, तो फिर आप जो है उसको धीमी आँच पे कर दें। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक बाकी सोचने वाला विषय है कि जब हम रसोई का काम करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं। तो हमारा प्रेशर कुकर वो करीब 8 बार विसल दे चुका होता है। अगर आप अटेंड करें, रसोई को अटेंड करें अपन, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब स्टीम बन गई है, तो आप उसको धीमा कर सकते हैं, और धीमा करके फिर थोड़ी देर में तेज कर दें, और फिर ऐसा करके आप 3 बार विसल ले लीजिए, तो आपका खाना, बल्कि 2 ही बार में आपका खाना बन जाएगा, तो जो है आपका काफी ज्यादा ईंधन बच जाएगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बर्तन का साइज क्या है, मतलब एज पर जो रिकमेंडेशन है वो ये बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर व्यास का जो बर्तन होता है वो परफेक्ट होता है। तो आप कैसे देखेंगे ये कि अगर जो लॉ जो है वो बर्तन के ऊपर चढ़ रही है, तले के अलावा ऊपर भी चढ़ रही है, तो वो बर्बादी है,
1: छोटे बर्तन
0: तो वो बर्बादी है, तो उसको या तो धीमा कर दीजिए आप, और थोड़े चौड़े तले के बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो नीचे ही सिर्फ उसकी लॉ लगेगी,
1: तली को जो है कवर,
0: तली को कवर करेगा,
1: लॉ जो है कवर करेगा
0: जी। हाँ, तो ये बर्तनों का है, बर्तन पे ही अगर हम बात करें तो आजकल कॉपर प्लेटेड बर्तन आते हैं जो नीचे तली पे रहता है, तो आप पता है कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है, हाँ, हीट का मतलब, तो वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा बर्तनों पे ही हम आए तो लिड का इस्तेमाल करें, उस पर ढकना है हमको, आजकल तो बर्तन बहुत अच्छे आ गए हैं, साथ में आपके ढक्कन आते हैं, तो उसी तरह के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज ये है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, लेकिन एक घर में शायद तीन तीन चार चार प्रेशर कुकर है, वो क्यों है? एक बार दाल, एक बार चावल, एक में एक्स्ट्रा भी रखा रहता है, कुछ है तो मांझना ना पड़े और तीसरे में कर लिया हमने। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो बने थे उसमें सेपरेटर्स भी मिलते थे हमको, है ना? आपने देखो होगा डिब्बे, आपकी मम्मी के समय के अगर आपने देखे हो तो डिब्बे थे उसके अंदर, तो एक में दाल, एक में चावल, ऐसे करके सब्जी बघाड़ के तीसरे में मम्मी डाल देती थी, तो एक साथ में सारा खाना हमारा बन जाता था। तो एक ही बार का उसमें तो तीन चीजें बन गई ना आपकी। तो जहां तक हो सके आप सेपरेटर्स या वो डिब्बों का इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप जाके आप ले सकते हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर अच्छे वाले इस्तेमाल करें आप, महंगे नहीं बोल रही हूँ मैं, ISI मार्क के अच्छे प्रेशर कुकर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपके गैस की बचत के भी गारंटी होते हैं। लोकल नया करें, वो थोड़ा आपके लिए दुर्घटना का भी कारण बन जाता है कई बार, तो आप अच्छे वाले जो प्रेशर कुकर है उन्हीं का इस्तेमाल करें। यहाँ पर अगर हम ISI की बात कर रहे हैं तो आपके जो गैस के चूल्हे हैं वो भी जो है आजकल जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो स्टार रेटिंग जो देते हैं, तो उसमें जैसे फ्रिज पे आपने देखा है 5 स्टार है, 4 स्टार ऐसे आप लेते हैं, उसी तरह से गैस के चूल्हे भी आते हैं, उनको हम ग्रीन स्टोव्स भी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर 2 स्टार अगर आप लेते हैं तो आप एक लोकल वो बिना स्टार वाला लोगे तो उससे तो आप समझ सकते हो कि ज्यादा ही गैस बचत हो, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है उसका, उसका बर्नर का डिजाइन या सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो बचत करेगा आपकी। बर्नर किस तरह से बचाता है, एक तो बर्नर जो लेके आए हैं आप तो उसमें तो वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन अब आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। देखिए गैस मैंने क्यों बोला था बड़ा कन्वीनियंट ईंधन है ये, क्योंकि ये जलता है तो ब्लू कलर में फ्लेम आती है, तो ब्लू कलर आप भी जानते हैं ये दर्शाता है कि वो ईंधन पूरी तरह जल गया। जब पूरी तरह जल गया तो पर्यावरण के लिए तो कुछ घातक कुछ बचा ही नहीं। लॉ जो है वो ऑरेंज आ रही है मान लेते हैं, इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि ये बर्नर गंदा है,
1: खराब हो गया, बर्नर
0: दाल गिर जाती है कई बार, दूध गिर जाता है तो उसमें चिपक जाता है। तो हम जो है इस चीज का ध्यान रखें कि अगर रोज नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार आप जो है उसकी सफाई करें, और सफाई में ये भी ध्यान रखें बर्नर की लाइफ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कहीं आप गर्म गर्म बर्नर पे पानी तो नहीं डाल रहे हैं, आप समझ सकते हैं ठंडा गर्म तो वो टूटने का भी डर रहता है, ब्रेक हो जाता है। तो आप उसकी जगह क्या, ठंडा हो गया बर्नर उसको आप खोल लीजिए, खोलने के बाद में एक भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप कपड़े धोने वाला सा पाउडर डालिए, उसमें थोड़ी देर भिगो दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको, और फिर उसके बाद 15-20 आधा घंटे बाद उसको निकालिए और जो पुराने टूथब्रश होते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लीजिए। आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा आपका पानी कितना गंदा हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सुखा के और फिर उसको लगा दीजिए तो वो पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम फिर से आने लग जाएगी। तो ये तरीका होता है, और आप ये ध्यान रखिए कि उस पे गिरे नहीं कुछ भी, तो अपने आप ही वो साफ रहेगा। लेकिन आप ये मत करिए कि आपने रोटी बनाई और अब चलो किचन का काम खत्म, अब सफाई कर रहे हैं तो पानी डाल दिया, फिर एक पॉलिथिन में आपने मतलब कोई पाउडर लिया साफ करने वाला और उसको घिसा आपने, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पाउडर अंदर घुस जाएगा
1: बर्नर के जो सुराख होते हैं,
0: सुराख में अंदर चला जाएगा और वो जम जाएगा तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसकी सफाई करें। ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप जो आते हैं ना कि बर्नर साफ करा लो या ये, उनसे मत कराइए आप।
1: अच्छा,
0: आप जो एजेंसी में भी इसको आप कर सकते हैं कि हमारे बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो सर्विस चार्ज लेंगे आपसे, लेकिन वो साफ
1: घर पे आके करके जाते
0: हैं। हाँ, तो वो जो रास्ते पे घूम रहे हैं उन लोगों से ना करवाएं। इसके बाद में जो है आपका भोजन आप बना रहे हैं तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल होता है, पानी उतना ही डालें जितनी जरूरत है, है ना? आप जो है सिर्फ एक वीडियो देखना है या कुछ उसके चक्कर में थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल देते कि जले नहीं, लेकिन उसको उड़ाने में आप कितना ईंधन जला देते हो, तो इसीलिए हमें उतना ही पानी डालें जितनी जरूरत है। और मैं ये कहूंगी कि भोजन वो मतलब एक जरिया है आपके घर के अंदर, माध्यम है जिससे कि घर में संस्कार आते हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: भोजन बच्चों के अंदर जा रहा है, पति के अंदर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, वही आपके विचारों को बनाता है। तो इसीलिए अगर आप उसे मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी बला टालने वाला काम करेंगे कि हाँ भोजन बनाना है हमें, तो फिर आप उसके भी असर देख रहे हैं।
1: प्रायोरिटी पर रखना है सबसे पहले।
0: जी जी, प्रायोरिटी हमारा भोजन है। आप चल किससे रहे हैं, भोजन से ही चल रहे हैं ना।
1: सेहत उसी से।
0: मैं तो आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ महिलाओं को, आप मेरे कहने से, मैं काउंसलर भी हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि विचार क्या काम करते हैं। तो उस रोटी के ऊपर सिर्फ अगर प्रेम लिख लें, उंगली से प्रेम लिख लें, या बच्चे का एग्जाम है 100% लिख लें और बच्चे को सेक के खिला दें प्यार से,
1: अरे वाह,
0: है ना, आप देखिए क्या असर होता है। क्योंकि वो विचार जाता है, वो लिखा इज ओके, लेकिन आपका विचार जा रहा है उसके अंदर। हस्बैंड से तो रोज लड़ाई होती है, लेकिन प्रेम लिख के तो देखिए आप।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: सब मिल बैठ कर एक साथ खाना खाएं, क्यों बार बार जो है रोटी बने, है ना, बार बार तवा गर्म हो,
1: बार बार चाय गर्म करते हैं,
0: बिल्कुल
1: बार बार,
0: बिल्कुल
1: हाँ,
0: हम
1: बहुत
0: तो
1: सारी चीजें हम बार बार करते हैं।
0: अगर हम एक नियम बना दे घर में कि चाय सब साथ में पियेंगे, है ना, या तो एक ही बार बनेगी चाय,
1: हाँ।
0: जी जी, खाना साथ में खाएंगे। अगर दिन में नहीं भी पॉसिबल हो पा रहा है तो डिनर तो साथ में कर लो,
1: बिल्कुल,
0: रात का खाना तो कर लो साथ में। तो उससे क्या होगा कि परिवार में जो एक लिंक्स खत्म होते जा रहे हैं, भोजन एक बहुत बड़ा जरिया होता है, है ना, तो वो जो एक लिंक्स हैं वो फिर से बनेंगे, रिकनेक्ट होंगे। आप बच्चा क्या कर रहा है उसकी शक्ल से आप पहचान जाओगे। तो आप जो है डाइनिंग टेबल वो जगह है, भोजन वो जगह है, वो चीज है। तो आप जो है सब मिल बैठ के खाना खाएं, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, सब मिल बैठ के खाना खाएं, तो प्यार बढ़ेगा आपके घर के अंदर, हमारा एलपीजी बचेगा। और दूसरी चीज, भोजन बना के आप जो है ऐसे बर्तनों में रखें जिससे वो गर्म रहे,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो हम जो है हम वहां पे क्या करते हैं, तुरंत निकाला और ये ठंडा है तो माइक्रोवेव में रख दिया हमने। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जो एलपीजी जैसा तो आपको कोई भी ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी पड़ती है आपको एलपीजी से, अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो।
1: रेगुलेटर जो होता है और पाइप, ये कितने समय पर चेंज करना चाहिए ताकि गैस का रिसाव भी इनमें से ही होने लगता है और हमें पता नहीं चलता है कि बाद वक्त।
0: इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ संरक्षण को लेके, पहले कि जो भी आप दाल चावल वगैरह बना रहे हैं उसको थोड़ा भिगो दें पहले, भिगोने के बाद आप इस्तेमाल करें। नहीं तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मुलायम करने के लिए, अगर वो पहले से मुलायम होगा तो डायरेक्ट पकना चालू हो जाएगा
1: जल्दी,
0: है ना। तो आप इस चीज को कर सकते हैं आप। और जहां तक रेगुलेटर की बात है, यहाँ आपके संरक्षण की भी बात आती है यहाँ पे, कि आप जितनी बार भोजन बनाए उतनी बार आप जो नॉब है उसका, आपका सिलेंडर का, उसको भी बंद करें। तो कहीं अनावश्यक अगर कहीं लीकेज हो रहा होगा तो उसको आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज ये जो आपने पूछा कि कब हमें बदलना चाहिए, तो रेगुलेटर तो बदलने की जरूरत होती नहीं है कभी भी। हाँ, अगर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप कंपनी में जाके, जो भी एजेंसी है वहीं पे जाके आप उसको बदलें। लोकल मार्केट में शायद सस्ता वाला आपको मिल सकता है, लेकिन आप वो ना लें, ये मतलब एक बहुत ही जरूरी चीज है। हो सकता है वो 300 का मिले और ये 150 का मिले, लेकिन वो कभी भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट ला सकता है। तो इसीलिए ISI मार्क का एजेंसी से ही लीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि जो पाइप जो है उसका, आजकल तो आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एजेंसी ही देती है। और जो पहले आते थे सिर्फ रबर के होते थे वो, तो वो काफी डैमेज हो जाते थे, और मतलब एक प्रकार से जो जहाँ पे चूल्हे के साथ लगते थे वो वहां पे खराब होने लग जाते थे, लोग उसे काट काट के छोटा कर देते थे।
1: तो ये रबर के रहते थे,
0: रबर के रहते थे
1: वो,
0: अभी वो वायर के साथ है, तो इट्स बहुत डिफिकल्ट है उसे काटना भी। लेकिन वो क्या होता है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कई लोग उसमें भी दिमाग लगा लें कि हम उसमें काट देंगे आरी से या कुछ, तो क्या होता है ये करीब 1 मीटर करीब होता है ये, है ना। तो वो एक एक्यूरेट मतलब वो लंबाई लेंथ है उसकी, नहीं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे लिक्विफाइड किया जाता है और ऊपर की सतह पर वो गैस होता है। लेकिन वो जो पाइप है वो अगर सही नहीं है, छोटा है अगर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड रूप में बीच में जम जाएगा। और आप खाना बना रहे हैं तो कई बार रोटी बना रहे हैं, 4 बार 5 बार बंद होगा वो, तो आपको सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, तो ये कारण आपका पाइप हो सकता है। अभी तो ये बहुत ही अच्छे पाइप्स हैं, तो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है, करीब आप 6-7 साल भी इसको चला सकते हैं। लेकिन बस इसे काट काट के मत यूज करें,
1: कहीं से चटक गए हैं या चूहे वगैरह ने काट लिया, तो
0: चूहा काटना भी इतना आसान नहीं है इसको। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई आप क्या बहुत डेंजरस चूहे हैं, तो आप फिर उसको बदलिए बिल्कुल, और लेकिन लेना एजेंसी से ही है,
1: बिल्कुल
0: आप कहीं लोकल मार्केट से इसको नहीं लेंगे। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी है,
1: बिल्कुल,
0: और संरक्षण तो है ही, वो बीच में परेशानी भी है आपकी कि गैस बंद हो रही है।
1: बिल्कुल आशा जी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि पीएनजी और एलपीजी में क्या फर्क
0: है। जी दानिश जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज जो है भोपाल में देखिए बहुत सारी जगह थिंक गैस का आपने देखा हो पाइपलाइंस, पाइप दे रहे हैं वो घरों में, मतलब डायरेक्ट सप्लाई है वो। तो पीएनजी का मतलब है पाइपलाइन नेचुरल गैस। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बताया था, तो ये क्योंकि प्राकृतिक गैस ही है तो ये एलपीजी नहीं है, एलपीजी का मुकाबले सुरक्षित है ये। एलपीजी की अगर हम स्मेल आ रही है तो क्या है कि एलपीजी जमीन पे चिपकता है, क्योंकि वो हवा से भारी गैस है, तो जमीन पे चिपक गई कोई चीज तो उसको निकालोगे कैसे आप, अनलेस अनटिल आपको ये पता हो कि झाड़ू लगाओ अब, है ना, तो कई बार पता नहीं होता, तो वो चिपकी हुई है, हम सब दरवाजे खिड़की खोल दिए फिर भी टाइम लेगी वो। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो हवा से हल्की गैस है, अगर ये लीक होती भी है तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर तो उसको बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है फैलने का, तो सुरक्षित भी है। मैं तो यही बोलूंगी कि जहां कहीं पे भी जिस भी मोहल्ले में पीएनजी की सप्लाई के लिए अभी आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है तो आप जरूर लें उसको, क्योंकि आगे पीएनजी की सप्लाई ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हो सकता है एलपीजी की कम हो जाए,
1: और फिर ये सिलेंडर भरवाने का या
0: हाँ वो सब भी खत्म हो जाता है, आपके मीटर लगा रहता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे आप अपना,
1: ये तो सुविधाजनक हो,
0: बिल्कुल बहुत सुविधाजनक है, इसका कोई वो भी नहीं
1: भारी
0: है
1: भारी आप... सिलेंडर उठा के अंदर रखना हो फिर बाहर ले जाना,
0: जी जी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं उसको लगा ही नहीं पाते कई लोग,
1: वो अचानक रात में भी सिलेंडर खत्म,
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: ये सारी दिक्कतों से
0: वो वेटिंग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसके अंदर। ये दोनों में अंतर है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये पाइपलाइन नेचुरल गैस, तो ये काफी कन्वीनियंट है, उससे भी अच्छी है कहना चाहिए, तो इसको जरूर इस्तेमाल करें आप।
1: आशा जी, आजकल एलपीजी का जो सिलेंडर है वो लोग अपने कार में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफिल करवाते हैं और कार चलाते हैं उससे, तो ये क्या इस्तेमाल करना सही है?
0: देखिए एलपीजी का इस्तेमाल करना सही तब है जब आप उसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कई हमारी आजकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इस तरह का वो दे दिया है, आपके पास टैंक्स हैं कि जिनमें आप डायरेक्ट एलपीजी फिल करवा सकते हैं आप, अभी तो सीएनजी आ गया है, कंप्रेस नेचुरल गैस है वो, तो आप उसको लें तो ज्यादा अच्छा है, और भी अच्छा है। और अगर लेकिन आप एलपीजी, अगर आपकी गाड़ी है आप एलपीजी उसमें फिल करवा रहे हैं तो आप जो है पेट्रोल पंप्स पे जहां पे अवेलेबिलिटी है इसकी वहीं से करें, खुद ट्राई ना करें। और जो आपके घर के अंदर कई लोगों ने घर में चार मतलब कुछ ज्यादा लोग हैं उनके नाम से सिलेंडर्स ले लिए हैं, फिर उनको आप वो ब्लैक वाले सिलेंडर वो जो पाइप जो रहते हैं सिलेंडर्स उसमें आप करते हैं चेंज करते हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा जोखिम भरी चीज है और इसमें आप कई घर बर्बाद हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो ये कभी ना करें। थोड़े से पैसे बच जरूर जाएंगे आपके, लेकिन जो तरीका यही है कि जो आप पेट्रोल पंप्स पे या इसके सिलेंडर जो मिलते हैं वही इस्तेमाल करें। तो आजकल तो सीएनजी का समय है तो आप सीएनजी का इस्तेमाल करें, तो कंप्रेस नेचुरल गैस है, अगेन नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, आप समझ सकते हैं, तो आपको वो ज्यादा सुविधाजनक है, सुरक्षित है, और दूसरी चीज ये है कि अवेलेबिलिटी ज्यादा है।
1: अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
0: पीजी अगर हो जाती है तो तुरंत जो है हमें सबसे पहले तो दरवाजे खिड़की खोलने चाहिए, क्योंकि उसे बाहर करना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए कि अगर एलपीजी जो है जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, रसोई जो है हमारा वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, पूरा बंद कमरे के अंदर आप एलपीजी मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जलेगा, और जो भी कुछ विषैली गैस बनेंगी वो आप ही के अंदर जाएंगी, क्योंकि आप वहां ज्यादा समय है तो आपको चक्कर आने लग गया या आपको उल्टी जैसा होने लगा, तो इसका मतलब है वो बिना किसी कारण के अगर हो रहा है ऐसा, और जब आप खाना बना रही है तभी हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कारण हो, तो हम मैं ये कहूंगी तुरंत तुरंत आपको पूरे दरवाजे खिड़की खोल देने हैं। और दूसरी चीज जो सिलेंडर है उसको तुरंत निकाल लीजिए, रेगुलेटर निकाल दीजिए, उसको तुरंत बाहर करिए, उसमें सफेद कैप रहता है, सफेद कैप लगाइए और उसे बाहर करिए। कभी भी बिना सफेद कैप जो रहता है उसके बिना सिलेंडर को रखना ही नहीं है आपके घर में, अगर खाली भी सिलेंडर है तो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत तेज बदबू आ रही है तो आप जोर जोर से फर्श पे झाड़ू लगाइए, तो क्योंकि हवा से भारी गैस है जमीन पे चिपक गई है, तो झाड़ू लगाएंगे तो ये बाहर जाती है। अगर एलपीजी लीकेज हो रहा है तो ये इसका तरीका है। लेकिन अगर आग लग गई, मतलब इसके हम सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो मैं एक दो चीज़ जरूर ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा रसोई होता है उसके अंदर देखा होगा आपने, महिलाएं जो हैं वो कागज जो रहता, पेपर जो रहता है, उसे काट काट के लगाती हैं शेल्फ्स में, तो ना करें वो, क्योंकि वो भी एक माध्यम बन जाएगा और ज़्यादा फैलाने का। जहाँ सिलेंडर रखा उसके आसपास कोई ज्वलनशील चीज़ ना रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आप गैस आपकी ऑन है, आप खाना बना रहे हैं, आपने कॉकरोच देखा और वहीं पर आपने उसे मारना चालू कर दिया हीट वगैरह से,
1: तो अंदर भी
0: वो भी पेट्रोलियम ही है,
1: फ्लेमेबल, हाँ
0: फ्लेमेबल है वो, तो आप जो है उसमें भयंकर आग लग सकती है। एक और चीज है, कई बार महिलाएं जहाँ गैस जल रही है उसी के पास मोबाइल रख के और खाना बनाती हैं, तो ये बहुत रिस्की है।
1: वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब
0: वीडियोस देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक स्टैटिक चार्ज है, बाय चांस आपने ध्यान नहीं दिया कहीं गैस लीक हो रही है, कई बार गैस बंद हो जाती है, आपका ध्यान ही
1: ध्यान
0: नहीं
1: है।
0: हाँ, तो आप जो हैं इस तरह के जो रिस्क हैं वो ना लें, मोबाइल आप दूर रखें। दूसरी चीज, आपके मोबाइल के ऊपर उतने कीटाणु होते हैं जितने टॉयलेट सीट के ऊपर हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप बार बार उसको पकड़ रही हैं, फिर खाना भी बना रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसका, ये तो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आग लग जाती है, सपोज कहीं इतने बुरा हो गया कि आग ही लग गई, दुर्घटना हो गई, तो आपको जो है तुरंत सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या आप उसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो बाहर निकल लो, जान ज्यादा जरूरी है, सबको घर से बाहर कर दो, क्योंकि अगर आग लग गई है और सिलेंडर फट गया, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाएगा आग के कारण कि वो फट जाता है, अगर वो फट गया तो जो गैस जो उसमें तरल रूप में है वो पूरी दीवारों पे चिपकेगी और हर दीवार पे विद इन सेकेंड आग लग जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें लाइन में आ गई वो आग, तो इलेक्ट्रिसिटी तो तुरंत बहुत आराम से पूरे घर के अंदर आग को फैला देगी। तो इसीलिए हमें तुरंत ये देखना है, और अगर आपको लग रहा है कि आप बच कर सकते हो, अभी ज्यादा नहीं फैला हुआ है, तो उसके ऊपर तुरंत कोई मोटा कपड़ा गीला कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कंबल है या कोई ऐसी मोटी दरी है तो उसके ऊपर लगा के, आपने निकाल लिया रेगुलेटर, उसके ऊपर डाला आपने, और उसको जो है अच्छे से कवर कर दे, या फिर कोई भगोना है जैसे प्लास्टिक का नहीं बोल रही हूँ, वो उसके ऊपर रख दे, ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई जो है कट कर दे, तो आग बुझ जाएगी। सप्लाई तो वहीं से ही है ना, सिलेंडर से ही है, तो इस चीज का उसका तरीका भी होता है, वो हम अभी आपको रेडियो पे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके कुछ मॉक ड्रिल्स हम लोग करवाते हैं जिससे कि महिला को ये चीज पता चल जाती है कि इसको हमें कैसे बचत करना, सुरक्षित रखना है।
1: आशा जी, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश एलपीजी संरक्षण और सुरक्षा को लेकर।
0: जी देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा अपने देश के लिए, लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सोचते तो हैं बहुत ज्यादा हम, तो आज ये वो मौका है हमारे पास में एलपीजी के रूप में, कि अगर आप इसको संरक्षित करते हैं तो कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको बहुत धन्यवाद देगी और आपका एक रिश्ता जो है उनके साथ बहुत अच्छा होगा, तो देश, समाज और परिवार तीनों के लिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे हम एलपीजी की बचत कर सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित भी बना सकते हैं। धन्यवाद आशा जी, इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं।
1: दोस्तों, याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और बचत ही समझदारी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय संयोग सतीश बौथम, मैं था दानिश। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आमने सामने।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वाकर्थ। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सविता भार्गव का कविता पाठ।

0: सबसे पहले आपसे मुखातिब हैं पल्लवी त्रिवेदी।
1: मेरी पहली कविता संगीत से ही शुरू करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है राग अरण्य। जंगल में जो संगीत होता है, मुझे लगता है चाहे तानसेन जी ने बनाए हों जितने भी राग या कहीं पे भी, हम प्रकृति के संगीत से ही उपजे होंगे सारे संगीत, जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा। सो मेरा पहली कविता है राग अरण्य। पतझर की एक सांझ घिर रही है, सतपुड़ा का जंगल आज राग अरण्य की एक नई सिम्फनी रच रहा है। पपीहे और मोर ने षडज से धैवत तक का दीर्घ आलाप उठाया है। अबाबील और फुल चुक्कियाँ साध रही हैं द्रुत लय की ताने। कटफोड़वा और ठठेरा बसंता ने सागौन पर झपताल का ठेका दिया है। और सहसा कहीं दूर एक बाघ खरज का पंचम लगा बैठता है। गुणवंत साजिंदे, झींगुर और टिड्डे तानपुरा साधे बैठे हैं। नदी की लहरें बजाती है मंजीरा मगन अपने तट पर, और सूखी पत्तियों पर छनक उठते हैं किसी खरगोश की पदचाप के घुंघरू। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर कांप रहा है कोमल गांधार, कांप रहा है कोमल गांधार। थैंक यू, शुक्रिया। अगली कविता है पिता। ओ पिता, तुम हमेशा एक नाराज बच्चे थे, अपने ही अतीत के बंधक, अपने ही मन के कुएं में औंधे पड़े। तुम चट्टान बनने को अभिशप्त थे, जबकि तुम बालू की तरह झर रहे थे। किसी रोज तुम मुंह फुलाकर अकेले बैठ जाना चाहते थे। किसी रोज तुम्हारे अश्रु नर्मदा बन जाना चाहते थे। तुम पैर पटक कर कहना चाहते थे उस दिन, आज सिर्फ मुझे लाड़ करो। पर तुम्हारे भीतर का बच्चा बाहर के पिता से हार गया। तुम्हें किसी ने भी नहीं मनाया, किसी ने भी तो नहीं कहा रो लो जी भर कर, ढह जाओ इस कांधे पर। जिन हाथों को तुम्हें अंक में भर लेना था, वे हाथ ट्यूशन फीस की फरमाइश के लिए आगे बढ़े। जिन आँखों को तुम्हारी पीड़ा देख लेनी थी, उन आँखों में तुम्हारे ज़िद्दी स्वभाव के लिए सैकड़ों शिकायतें उमड़ती रहीं। जिन होठों को तुम्हारा माथा चूम लेना था, वे तुम्हारी पीठ पीछे भुनभुनाते रहे। एक बच्चा बचपन से बचपन को तरसता रहा। एक बच्चा 51 साल जिया और अपने ही मन के कुएं में डूब गया। ओ पिता, मुझे क्षमा कर देना, मैंने कुएं की मुंडेर तक आने में देर कर दी। प्रेम कविता, शीर्षक है प्यार का फूल। दूरियों का क्षोभ मत करो तुम, दूरियों का क्षोभ मत करो तुम। मुलाकातों के सिलसिले के खत्म होने को होने से मन को अवसाद में ना भरो। मंदिर की घंटियों की तरह सारा दिन तुम्हारे कानों में बजती वह आवाज़ अब मौन हो गई है, तो जी उदास न करो। तुम्हारी देह को उसकी देह के स्पर्श का आश्वासन अब नहीं, तो तनिक भी न घबराओ। प्यार का फूल पौधे पर ज़्यादा देर नहीं टिकता। तुम्हारी प्रिय किताब के सबसे प्रिय पन्ने पर ही इसे अब उम्र बितानी है। अगर अब स्वप्न में भी उसकी आमद विरले ही होने लगी है, तो अपनी नींदों से झगड़ा मत करो। तुम्हारी स्मृति से अगर उसके साथ के सुंदर वाकये लुप्त होने लगे हैं तो दिमाग पर कतई जोर न डालो। मत सोचो कि उसे स्मरण कर कितने महीनों से तुम्हारे नेत्र नहीं छलछलाए हैं। उस कसम को ना निभा सकने के लिए खुद को मत कोसो जो तुमने उसका हाथ थामकर उठाई थी। क्षण भर को भी तुझे भूलूं तो पाप की भागी बनूं। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है और उस कंपन से हृदय तल पर जो घटता है वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी। वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी।

0: और यह है रचना पाठ संगीता गुंदेचा का।
1: ये जो दो कविताओं का जोड़ा है इसका नाम है फ्रिदा कहलो। फ्रिदा कहलो मेक्सिको की चित्रकार थी और एक कविताओं का जोड़ा है फ्रिदा कहलो। एक फ्रिदा कहलो का जीवन बहुत कष्टमय था लेकिन उसके बिना भी वो चित्र बनाती रही। और आप कभी फिल्म देखेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चले। मैं कविताएं सुना देती हूँ, दो छोटी कविताएं। फ्रिदा कहलो एक। शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा कहलो मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मरा कैसे जाता है। जो चीज़ हमें मारती है वही जिंदा रखती है। फ्रिदा कहलो दो। आह शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा कहलो मैं जीना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता जिया कैसे जाता है। जो चीज़ हमें जिंदा रखती है वही मारती है। आत्ममुक्त। क्या फर्क पड़ता है दुनिया को, तुम तोड़ो पहाड़, तुम मंगल ग्रह के एकांत में पीछा करो चम्मच का, सघन पीड़ाओं से अलंकृत तुम्हारा मन, शब्दों और अर्थों का अंतर्द्वंद, तुम्हारे उत्सर्गों और प्रेम का अविरल छंद, यही सब बनाता है उसे जो तुम हो। इसलिए एक लेखक का आत्ममुग्ध होना नहीं शोभता प्रिय, एक लेखक का आत्ममुग्ध होना बिल्कुल नहीं शोभता।

0: और ये हैं सविता भार्गव।
1: दरवाजे के बाहर बैठकर जब तक खोलो नहीं कपाट, म्याऊ म्याऊ करती रहती है। कटोरी में दूध उसके सामने रखती हूँ, पीते हुए जरा भी चपर चपर नहीं करती। पेट की खिदमत करने के बाद वो चुपचाप पेड़ के नीचे बिखरी पत्तियों पर बैठकर धूप सेकने लगती है और अपनी देह को ऐसी आकृति देती है जैसे वो पृथ्वी की रीढ़ हो। रात में वो जरूर डरावनी लगती है, आंखें उसकी ऐसी चमकती हैं अंधेरे में, भर जाती है देह में झुरझुरी। चांद की रोशनी में उसकी रेंगती हुई छाया में प्रेत का भ्रम होता है। पता नहीं क्यों सुबह जब वो दरवाजे पर बैठ जाती है, भुला देती हूँ उसका डरावना रूप और पुचकारती हूँ उसे, मन में हो जैसे खास जगह। अचरज होता है कैसे संभाले हैं उसने अपने दो रूप। दो रूपों की वो अनूठी मिसाल है, पालतू बनने के लिए रहती है व्यग्र, लेकिन समझती है अपने को मालकिन। अविराम घूमती पृथ्वी की तरह, एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा। एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा, एक पूरा वाक्य आधी स्त्री और आधे पुरुष के योग से बना। एक शब्द स्त्री की व्यथा की तरह, एक वाक्यांश पुरुष की समर गाथा की तरह, एक पूरा वाक्य अविराम घूमती पृथ्वी की तरह। दाम्पत्य और कविता। कविताएं मेरे पास आए उसके पहले मैं रसोई तक पहुंच गई होंगी, बिस्तर झाड़ते संवारते घर इतनी सहज साधारण दिख रही होंगी कि शब्द उछलकर अलमारी की किताबों में दुबक गए होंगे। मानती हूँ शब्द का जीवन से रिश्ता है, लेकिन शब्द मानते नहीं। उनकी एक ही रट है, एकांत में दुबको या उड़ो। उन्हें नहीं चाहिए मेरा सुकून, उदासी चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए ओढ़ी हुई उदासी। जीवन जो पहचान में आए नया, उसी में देखते हैं शब्द अपनी पहचान। अब आप बताएं, दाम्पत्य सवारूं कि कविता करूं? प्रेम कविता। भरोसा। मैं अंधेरे पर भरोसा करती हूं जो मुझे सहलाता है अज्ञात पंख से, और मैं कांपती पलकों में सो जाती हूं। मैं उजाले पर भरोसा करती हूं जो आंखें खोलते ही खिल उठता है और मैं बहती चली जाती हूं उसकी तरफ। मैं अपने इस घर पर भरोसा करती हूं जिसमें मैं रहती हूं सालों से और जो बस गया है मेरे भीतर। मैं अपने शहर की गलियों पर भरोसा करती हूं जो आपस में जुड़कर इधर से उधर मुड़ जाती हैं, और जहां खत्म होती है कोई गली मुझे वहां मेरी धड़कन सुनाई पड़ती है। ऐ आदमी, मुस्कुराते हुए जब तुम मुझ में खो जाते हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरता है, जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरते हैं टूट पड़ते हैं दुनिया भर के कीट पतंग, जब पानी मरता है लोगों में बेचैनी बढ़ने लगती है, लेकिन स्त्री मरती है तो मर जाता है जीवन का संगीत। आखिरी कविता। माँ वापस जा रही है। माँ कुछ दिनों तक रही, अब वापस जा रही है। मेरे घर का एक छोटा सा कोना खाली हो जाएगा, फिर भी बनी रहेगी कुछ दिनों माँ की गंध। कुछ दिनों तक अकेले खाना खाने की मन में भरी रहेगी टीस। कुछ दिनों तक शायद पानी भी अच्छा ना लगे। माँ शब्द के उच्चारण से मन में कसक पैदा होने लगी है। माँ वापस जा रही है और मेरे भीतर कोहरा बैठ रहा है। धन्यवाद।

कार्यक्रम वागर्थ में आप सुन रहे थे रचना पाठ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ध्रुपद संस्थान भोपाल में। आज कार्यक्रम वागर्थ में इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे
2: हैं 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: आज है 29 मई और ये दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के सैनिक अपने पूरे तन मन से अपना सर्वस्व न्योछावर करके भारत की सीमाओं पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। हर परिस्थिति, हर मौसम का सामना करते हुए न उन्हें आग उगलती गर्मी से घबराहट है, न -50 डिग्री में खून जमा देने वाली बर्फ की कपकपी से। उनके सीने में हर वक्त धड़कता है तो सिर्फ हिंदुस्तान, और रगों में लहू बनकर दौड़ती है निश्चल राष्ट्रभक्ति। भारत का हर नागरिक इन वीरों के प्रति सदैव से ऋणी था और रहेगा। श्रोताओं, आज का दिन यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो समर्पित है उन वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने के लिए जो दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में काम करते हैं। चलिए तो आज के दिन को हम मनाते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, महत्व क्या है, संदेश क्या है, जानते हैं ये सब कुछ हमारे आज के अतिथि महोदय कर्नल अनुराग गुप्ता सर से, जो हमारे साथ आज की परिचर्चा में उपस्थित हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन।
3: धन्यवाद।
1: सर, पहला प्रश्न आपसे यही करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, इस दिन का महत्व क्या है और कैसे हम इसे मनाते हैं?
3: यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स डे आज के दिन 29 मई को
1: जी,
3: जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में के जो मिशंस हैं उसमें जो सर्विंग मिलिट्री, पुलिस और सिटीजन सिविलियन कर्मी जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वो विदेशों में बहुत दूर दूर और संघर्ष वाले क्षेत्रों में अपनी नौकरी, अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, तो उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है
1: जी।
3: इनकी वर्दियों में जो कॉमन चीज है, जिनको इनसे पहचाना जाता है, वो उनकी ब्लू हेलमेट है
1: जी।
3: और ब्लू बेरे है, तो उनका जो प्रोफेशनल स्किल है, उनका डेडिकेशन है, ये दिवस उनको मान्यता देता है। साथ ही जो शांति की खोज में अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन सैनिकों को कई बार बलिदान करना पड़ता है शांति मेंटेन करने में, तो उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है। अब इस तिथि का महत्व ऐसे है कि 29 मई को 1948 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के जो पहला, सबसे पहला शांति रक्षा मिशन था, यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन था, उसका जो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना हुई थी UNTCO की। ये था लेबनान और इजराइल के बीच जो संघर्ष था उस समय, उसके बीच उनको वहां पे शांति बहाल करने के लिए था। आज का दिन उन 4,400 से अधिक शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने सेवा करते अपनी जान गंवाई। काफी बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के जो सैनिक इसमें जाते हैं, उन्होंने जान भी गंवाई है। विश्व

0: 193 मेंबर नेशंस हैं संयुक्त राष्ट्र के,
1: जी जी।
0: तो जहाँ जहाँ पे मिशन हैं वहाँ वहाँ होते हैं।
1: हर
0: एक जगह पर हर एक वर्ष में एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसे हम थीम कहते हैं
1: जी जी।
0: इस साल की थीम क्या है
1: जी जी।
0: तो इस साल 2026 की जो थीम है ये इनकी इन्वेस्ट इन पीस
1: जी जी।
0: और इस तरीके से थीम डिसाइड की जाती है कि उनकी चुनौतियों को उजागर किया जा सके। इन्वेस्ट इन पीस मतलब शांति रक्षा इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें इन्वेस्ट करें।
1: सर दूसरा सवाल ये बनता है कि जैसे आपने एक शब्द प्रयोग किया शांति सेना, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना क्या है, इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ी? हम जानना चाहेंगे आपसे सेना के इसके चार्टर भूमिका संरचना के बारे में, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
1: जी जी
0: यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा तैनात
1: जी
0: एक बहुपक्षीय जिसे कहते हैं मल्टी फोर्स मल्टी कंट्री की जो है मल्टी मेंबर फोर्स है, एक फोर्स खड़ी करते हैं बल करते हैं
1: जी,
0: जो संघर्ष से शांति की ओर बढ़ाने में सहायता करती है। किन देशों को? जहाँ पे विवाद चल रहे हैं, जहाँ पे संघर्ष है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी चीजों के, तो सदस्य देशों के सैन्य पुलिस और नागरिक कर्मी मिलकर एक कंटिजेंट बनाते हैं और उस जोखिम वाले क्षेत्रों में नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं जैसा उनको मैंडेट किया जाता है। संघर्षग्रस्त क्षेत्र जो है उसमें शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया एक बल जिसको कह लें अंतर्राष्ट्रीय बल, ये है यूएनपी की पीस कीपिंग फोर्स। ब्लू हेलमेट जैसे मैं बता चुका हूँ, ब्लू हेलमेट और ब्लू बेरेट के नाम से इनको जाना जाता है। इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनको संचालित करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑब्जर्वेशन इनके ऊपर नजर रखते हैं और सर्वप्रथम 1948 में इसका गठन आपको जैसे बताया विशेष रूप से फिलिस्तीन में इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में और भारत में कश्मीर और कश्मीर के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के उसमें किया गया था। अब इसकी तैनाती के लिए एक बहुत ही जिसे कहते हैं एक आवश्यकताएं एक बेसिक चीजें हैं कि जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होते शांति बल वहाँ तैनात नहीं कर सकते।
1: अच्छा।
0: तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच भी सहमति बनी है तभी वहाँ पे ऑब्जर्वर ग्रुप आया, इसराइल फिलिस्तीन के बीच पहले सहमति बनी या पीस अकॉर्ड साइन हुआ होगा उसके बाद आया। शांति सैनिक निष्पक्ष रहते हैं, निष्पक्ष का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय रहते हैं
1: जी जी जी।
0: वो दोनों पक्षों से अलग हटके अपने शांति व्यवस्था को जो उनको मैंडेट दिया हुआ जो उद्देश्य दिया हुआ उसकी पूर्ति करते हैं, किसी एक का पक्ष नहीं लेते
1: जी जी।
0: ये नहीं कि किसी ए ने बी के ऊपर हमला कर दिया तो वो बी की तरफ से फायर कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो दोनों के बीच में एक विवाद को हटाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कमजोर का भी साथ दे दें या उस स्थिति में या उस स्थिति में भारी पड़ले लोगों का साथ दे दें, नहीं, बीच में जा करके उनको अलग करेंगे। इस तरीके का उनका टैक्टिक्स रहती है, उस तरीके की नीतियां रहती हैं। और तीसरा है कि बल प्रयोग ना करना
1: जी जी,
0: कि वो बल का प्रयोग आत्मरक्षा में करेंगे या जो उनको मैंडेट दिया हुआ है जो उनको उद्देश्य दिया हुआ है उसकी रक्षा में करेंगे, अदरवाइज वो बल का प्रयोग नहीं कर सकते। विशिष्ट परिस्थितियों में करते हैं जिसके लिए उन्हें मैंडेट दिया जाता है पहले से कि हाँ वो अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वे मतलब आजाद हैं कि हाँ वो फ्री हैं कि बल का प्रयोग सारे सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, पर वो बड़ी विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और जिसके लिए मैंडेट सिक्योरिटी काउंसिल ही देती है। इसका जो है चार्टर की जो आप बात कर रही थी जो भूमिकाएं हैं वो यह है कि नागरिक आबादी की रक्षा करें, मुख्यतः नागरिक आबादी की रक्षा करने के लिए ही है जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब इसको आप अपने ही देश में ले लें, कश्मीर में जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था उसके हिसाब से ले लें। शांति प्रक्रियाओं की निगरानी करना है, शांति समझौतों को लागू करना है जो समझौते हुए हैं जिसके बाद ऑब्जर्वर ग्रुप या ये मिशन या मिलिट्री ग्रुप्स आए हैं, शांति सेना वहां तैनात की गई है, तो जो समझौते हुए उनको लागू करना है, समझौतों के हिसाब से समझौतों को ना तोड़ें नहीं तो फिर वहां संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। संघर्ष या प्रकोप को बढ़ने से रोकें, मानवाधिकारों की रक्षा करें और लॉ को लॉ एनफोर्समेंट उसको मजबूत करें, और चूंकि शांति बहाल कर रहे हैं तो जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं डेमोक्रेटाइजेशन है सरकार का इलेक्शन है उसको करें और जो ह्यूमन एंगल है ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प उसमें आगे बढ़े।
1: सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी उनका उद्देश्य हमें बताया तो किस तरह का इनका संगठन होता है, इनके ऊपर कमान किसकी रहती है, नियंत्रण ढांचा कैसा रहता है इनका?
0: इनका जो संगठन है, संगठन में कह लीजिए इसमें मिलिट्री पर्सनल होते हैं
1: जी जी,
0: कानून व्यवस्था के लिए पुलिस पर्सनल होते हैं और नागरिक कर्मचारी भी होते हैं, सिटीजन्स भी होते हैं जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, जो जैसे पुल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको बहाल करना है, बाढ़ नियंत्रण,

0: में बहुत सारे इस तरीके के जो आप कह लें एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो दस्ते वो शामिल होते हैं, है ना। अब इनका नियंत्रण जो देखिए, इसका एक पदानुक्रम जो हायरार्की है वो मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ। पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक इनकी एजेंसी है वो इनको अधिकृत करती है, वो इनको मैंडेट देती है, वो इनके उद्देश्य को परिभाषित करती है और बल प्रयोग के लिए नियम जो है वो निर्धारित करती है। और ये कब करती है, अधिकृत कब करती, जब दो पक्ष राजी हो कि हाँ हमें इस सुरक्षा सैनिकों की, शांति सुरक्षा सैनिकों की जरूरत है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, फिर आ जाते हैं सेक्रेटरी जनरल, उनकी शांति रक्षा जितने भी अभियान चल रहे हैं विश्व में, 3 महाद्वीपों में है अभी, 11 मिशन्स हैं, उनके समग्र अभियान, उनका जो समग्र कमान है और नियंत्रण उनके पास होता है, वो उनके पास होते हैं। फिर शांति अभियान विभाग है, डीपीओ, डिपार्टमेंट ऑफ पीस, ये विभाग जो मिशंस हैं उनके पॉलिटिकल और जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस हैं उनको देती है। शांति अभियान के जो अवर सचिव हैं, जिसे कहते हैं महासचिव से जो नीचे का पद है, उसके मिशन के संचालन की देखरेख करते हैं। महासचिव के जो विशेष प्रतिनिधि हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिक्योरिटी, उसके मिशन प्रमुख हैं, HOM होता है अपना, हेड ऑफ मिलिट्री, जो हेड ऑफ मिलिट्री है कमांडर मेजबान देश जो होते हैं वो नियुक्त करते हैं और जनादेश को वहाँ लागू करते हैं। जो मिशन के सभी घटक हैं जैसे मिलिट्री, पुलिस और जैसे मैंने आपको बताया उनका निर्देशन करते हैं। फोर्स कमांडर है जो हेड ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट है, वो थे HOM हेड ऑफ मिशन थे, ये थे हेड ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट, इसी तरह हेड ऑफ पुलिस कंपोनेंट हो गए। मिलिट्री कंपोनेंट में ही पुलिस में भी आ जाती कई बार, है ना। फिर एक होते फोर्स कमांडर, जो वहाँ का दल जो एक्टिवली अब जो वहाँ काम कर रहा है उसके एक कमांडर होते हैं, जिनके नीचे तीनों घटक जो काम करते हैं, समन्वय में काम करते हैं, दिशा निर्देश उनको कई जगहों से मिलते हैं लेकिन वो सामंजस्य बिठा के समन्वय से कार्य करते हैं वहाँ। अब सैन्य घटक जो हैं, ये विभिन्न सदस्य देशों के टुकड़ियां शामिल होती हैं, तब ये बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई बल नहीं है,
1: अच्छा।
0: अपना कोई फोर्स नहीं है, ये जो उनके मेंबर सदस्य देश हैं वो लोग उसमें योगदान देते हैं। जैसे भारत के कुछ सैनिक वहां जाते हैं, कंटिंजेंट जाते हैं, बटालियन जाती हैं, उनको कितने सैनिक चाहिए फिर भारत देता है। कई सदस्य देश हैं जो देते हैं, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, तमाम देश हैं जिनके जाते हैं वहाँ। पुलिस घटक है, पुलिस घटक में क्या क्या जा सकते हैं, कुछ स्टेट पुलिस से भी जाते हैं सिलेक्टेड लोग, अच्छे सिलेक्टेड लोग, CRPF के कंटिंजेंट जाते हैं, इसी तरह CAPF के कई कंटिंजेंट्स में से सिलेक्टेड लोग पुलिसकर्मी भेजे जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो पुलिसिंग का काम है वो वहाँ वो करते हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उनको सलाह देते हैं कि आप इस तरीके से अब आगे बढ़े तो शांति बहाल होगी। नागरिक घटक इसमें है, पॉलिटिकल्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, लीगल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी हो गए, जो डिसर्मामेंट करेंगे, जो आपको रिलोकेट करेंगे, जो आपको पुनरेकीकरण करेंगे, है ना, इलेक्शन में जैसे सहायता करेंगे, उन कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
1: अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि अलग अलग देश जाते हैं वहाँ पर, तो ये कौन तय करता है कि शांति सेना की आवश्यकता कहाँ होगी, किन परिस्थितियों में होगी? क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी पहल पर किसी संघर्ष क्षेत्र जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर शांति सेना तैनात कर सकता है, या किस स्थिति में कैसे कब इसे हम तैनात करेंगे? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल अगर हम वर्तमान की बात करें तो दुनिया भर के कितने स्थानों पर शांति सेना भी कार्यरत है?
0: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो प्राथमिक जिम्मेदारी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है।
1: जी।
0: किसी जगह की कॉन्फ्लिक्ट इतनी फ्लेयर अप ना हो जाए कि वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले या जिसमें कई सारी देश शामिल हो जाए, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को वहीं कंटेन करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इनके हाथ भी बने, वो वहीं जा सकते हैं जहाँ वो दो लोग, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ के दोनों पक्ष राजी हों उस बात को लेकर के, है ना। अपनी तरफ से वो जबरदस्ती बल नहीं भेज सकते, उनके पास है ही नहीं, और ना वो इस तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो ये करते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे कि दोनों देशों को राजी करें कि वो शांति समझौते पर वार्ता करें और शांति सैनिकों को बुलाएं, तो उनको उनका निमंत्रण दें, उनको बुलाएं, तब ये शांति सैनिक अपने जाते हैं। तो ये कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस की जो है सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में सुरक्षा परिषद बोलते हैं, करती है। इसी तरह इनका एक प्राधिकरण है जो एक नए मिशन को आधिकारिक तौर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से अधिकृत कर देता है, है ना। इसमें उनको मैंडेट, मिशन का साइज, भाई उसमें कितने सैनिक भेजे जाएंगे
1: जी,
0: और वो क्या डिसाइड करता है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कितनी बड़ी है, क्या है और उसका स्वरूप क्या है
1: जी, जी।
0: और उसका उद्देश्य निर्धारित करता है महासभा। जनरल असेंबली जो है उसके बजट को अधिकृत करती है कि बजट क्या है, और जो मेंबर देश है के योगदान जो जा रहा है, जो उनका कंटिंजेंट जा रहा है, जो उनका इक्विपमेंट जा रहा है, जो भी उसकी परिपूर्ति वो करती है। तो तनख्वाहें हैं और जो उनका खर्चा है वो सदस्य देश देते हैं, परिपूर्ति में वो लोग भी देते हैं, है ना। अब आपने पूछा था संयुक्त राष्ट्र अपनी पहल पर क्या पीकेएफ तैनात कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया
1: जी,
0: कि नहीं वो नहीं कर सकते, आक्रमणकारी सेना की तरह किसी भी संघर्ष क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते, वो सहमति की आवश्यकता है, ये एक कंडीशन है, केवल आत्मरक्षा के लिए भी है। अब इसमें अपवाद भी है, जैसे कुछ अस्थिर परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद किसी एक मैंडेट को ऑथराइज कर देती है कि जिससे कि नागरिकों की रक्षा हो सके। अब हम विश्व में देखते हैं कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जहां हद से ज्यादा नागरिकों को नुकसान हुआ है, उनकी हत्याएं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सुरक्षा परिषद ने परिषद हिले ही नहीं। तो कई बार ये विचार आता है कि सुरक्षा परिषद का क्या रोल है, लेकिन जब हम उनके बारे में जानते हैं समझते हैं तब समझ में आता है कि वो क्या है, वहां पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है, इस तरीके से। इसके लिए एक ये सुरक्षा परिषद ने मिशन की स्थापना के लिए जैसे कहते हैं ना एक पारित करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसे, संकल्प पारित करते हैं, है ना, एक उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि उसको कितना बड़ा मिशन चाहिए, ये जैसे मैंने आपको बताया, उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसके कमांडर कौन होंगे, उसके दल कमांडर तक, मतलब एक पूरा एक सिस्टम है जिसको फॉलो करते हैं, और इसी तरीके से उनको अधिकृत कर दिया जाता है कि वो अपना सेवाएं बिना किसी लीगल हैसल के दे सकें। अभी तक जो है 11 सक्रिय शांति रक्षा अभियान तैनात हैं 3 महाद्वीपों पर, अफ्रीका में है मोनुस्को, देश बता देता हूँ ऐसे तो बताना समझना मुश्किल होगा, मध्य अफ्रीकी गणराज कांगो, यूनिस्फा, साउथ सूडान और वेस्टर्न सहारा, मिडल ईस्ट में है गोलन हाइट्स, लेबनान और जेरूसलम मध्य पूर्व, है ना, और यूरोप एशिया में है कोसोवो, साइप्रस और भारत पाकिस्तान।
1: अच्छा सर, एक और अगला सवाल ये आता है कि क्या हमारा भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अपना योगदान देता है, और देता है तो कैसे देता है और कहाँ कहाँ भारत ने योगदान दिया है?
0: संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़े और निरंतर योगदानकर्ताओं में से हमारा देश एक है
1: जी, जी।
0: आज की तारीख में 5,000 से अधिक कर्मी 9 अभियानों में तैनात हैं, 11 में से 9 अभियानों में हमारे
1: बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ,
0: हमारे कर्मी जो हैं इसमें मिलिट्री, पुलिस और मैंने क्या बताया सिटीजंस, ये भी इन्वॉल्व हैं। 1950 से लेकर के अभी तक 50 से अधिक अभियानों में 2,90,000 से अधिक कर्मियों को तैनाती दी गई है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा में, और जो प्रमुख योगदान है आज की तारीख में वो है साउथ सूडान, कांगो, अबई, लेबनान, साइप्रस। और भारत का ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत शीर्ष सैन्य योगदान देने वालों में से एक है
1: जी।
0: कई सारे देश देते हैं लेकिन भारत जो है 3-4 देश जो ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक भारत ही भेजता है, और जो अक्सर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है, और ऐतिहासिक रूप से लैंगिक रूप से संवेदनशील शांति रक्षा में हमारे यहाँ से महिलाएं भी गई हैं।
1: अच्छा,
0: लाइबेरिया में तैनात 2007 में लाइबेरिया में तैनात पूर्णता महिला गठित पुलिस इकाई गई थी
1: जी जी,
0: और चूंकि आर्मी में भी अब महिलाएं हैं, अधिकारी लेवल पर भी हैं और लोअर लेवल पर भी हैं, तो वो जाती हैं, मेडिकल हमारे दस्ते जाते हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है उसमें
1: जी जी।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये कंटिंजेंट देखते हैं, मिशंस देखते हैं, उसमें भी महिलाओं का काफी योगदान है, उसमें भी महिलाओं की नियुक्तियां होती हैं
1: जी।
0: भारत ने सेना कमांडर काफी दिए हैं कई मिशनों में, सेना कमांडर, सेना सलाहकार, पुलिस सलाहकार भारत ने दिए हैं, सीनियर पदों पर भी लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह काफी हैं। बलिदान में भी 180 भारतीय शांति सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, ये भी बड़े योगदान की बात है और बड़े गर्व की बात है कि सैनिक शांति बहाल करिए, स्वयं का बलिदान देखे।
1: सर, आपने यूमनो गिप का जिक्र किया था, तो ये क्या है और इसे कब तैनात किया गया था, हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: ये यूमनो गिप है, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान
1: जी जी।
0: ये एक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन है जिसे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा की निगरानी का कार्य सौंपा गया था। ये संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शांति रक्षा अभियानों में से, आप सोचिए 48 में इसकी स्थापना हुई थी और 48 से तब से चले आ रहा था।
1: जी जी।
0: 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर संघर्ष में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भारत ने किया।
1: जी जी।
0: साथ ही पाकिस्तान ने भी किया और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 35 के तहत औपचारिक रूप से ये अनुरोध प्रस्तुत किया था। उस स्थिति का ध्यान देने का आग्रह किया था जहां पाकिस्तानी नागरिकों और जनजातियों को आक्रमणकारी माना जाता है।
1: जी जी।
0: वो जनजाति आई थी ना, वहां के ट्राइबल्स आए थे, उन्होंने अटैक किया था और राज्य के विलय से संबंधित विभाग को हल करने का अनुरोध किया। ये उसी जगह पर हुआ, हर जगह नहीं हुआ कि जम्मू में भी ले लें, तो उसी जगह जहां पे ट्राइबल्स आए थे, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ।
1: जी जी।
0: और इस मिशन की सहमति, जैसे तीन कंडीशंस बताई नहीं, सहमति भारत ने भी दी,
1: जी जी,
0: पाकिस्तान ने भी दी और सुरक्षा परिषद ने 48 में ही कई प्रस्ताव पारित किए और उन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप इस ऑब्जर्वर ग्रुप की स्थापना हुई। और कब पहुंचा, ये पहुंचा 24 जनवरी 1949 को, ये पर्यवेक्षकों का पहला समूह जो है पहुंचा कश्मीर में। और युद्ध के बाद स्थापित युद्ध विराम की जो स्थिति बनी थी, जो सीज फायर एग्रीमेंट था, सीज फायर के बाद ही गए थे ये, तो उसके बाद जो है उसकी निगरानी की जा सके। और इसकी जो फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट, जो औपचारिक स्थापना हुई थी, 30 मार्च 1951 को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से, पहले ये ऑब्जर्वर ग्रुप गया अनौपचारिक रूप से, और जो औपचारिक स्थापना हुई 1951 में हो गई।
1: अच्छा।
0: 1951 में हुई और युनमो गिप इसको नाम दिया
1: गया। जी।
0: तो जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम रेखा,
1: जी जी,
0: जो युद्ध विराम रेखा सीज फायर के टाइम पे जो बनी गई थी, उसकी निगरानी के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
1: अच्छा सर, हाल ही के अतीत तक पाकिस्तान के साथ चलते इतने सारे संघर्षों को हम देखते हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो युमनो गिप है, ये हमारी मदद किस प्रकार से करता है? क्या ये मिशन कभी प्रासंगिक रहा है, या आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज ये प्रासंगिक है?
0: देखिए, अतीत की बात करते हैं तो जब ये मिशन स्थापित हुआ था तो युद्ध विराम के जो नियंत्रण रेखा थी उसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया काफी, उस पर काफी नियंत्रण रेखा को पे जो है मिलिट्री कार्रवाई काफी हद तक रोकी गई थी इनके ऑब्जर्वेशन से।
1: जी।
0: बाद के युद्धों में स्पेशली शिमला एग्रीमेंट 1972 का जो हुआ, उसके बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई।
1: अच्छा।
0: क्योंकि शिमला समझौता जो हुआ था वो द्विपक्षीय एक समझौता था, तो जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और ये माना कि हम इस स्थिति को अब हम यथास्थिति बना के रखेंगे, नियंत्रण रेखा को ही यथास्थिति बना लेंगे, मान लेंगे एक, है ना, और उसको हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। तो जब ये बात मान ली गई तो ये अप्रासंगिक सा ही हो गया। तो ये इनका एक हेडक्वार्टर था जो नवम्बर से अप्रैल तक इस्लामाबाद में रहता था और अप्रैल से अक्टूबर में ये श्रीनगर हो जाते, कर्मचारी दोनों जगह रहते थे लेकिन हेडक्वार्टर के जो घटक थे वो दोनों देशों के बीच में रहा करते थे। फिर इनको विस्थापित करके दिल्ली में भेजा गया और सन 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ कश्मीर को, तो फिर हमारा ही हिस्सा हो गया, फिर वो विवादास्पद स्थिति तो रही नहीं। जब विवादास्पद स्थिति रही नहीं तो भारत ने कहा भाई अब ये हमारा विवाद की हमारी कोई स्थिति है ही नहीं, ये हिस्सा हमारा है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, देर इज नो विवाद ऑन दिस, तो आप कृपया जाएं। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी थी कि मिशन को क्लोज कर दिया गया। क्लोज हुआ नहीं। अब इसकी जो स्थिति वो ये है कि भारत कहता है कि ये अब प्रासंगिक है, हमारे बीच में विवाद नहीं है। पाकिस्तान अभी भी अपनी शिकायतें दर्ज कराता रहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि ये हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, अपने आप खत्म नहीं होगा जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास नहीं होगा।
1: जी जी।
0: तो ये मामला यहाँ पे ऐसे अटका हुआ है।
1: अच्छा।
0: तो बड़ा विचित्र सा ये एक अभियान है कि अब ये चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है।
1: हमारे जो शांति सैनिक है उनका चयन कैसे होता है और इनकी नियुक्ति कैसे होती है, हम आपसे ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे।
0: इनका चयन आजकल जैसे हमारे आर्मी में है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ मेरिट के हिसाब से होता है, जिसमें बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं उनके पुराने ऑपरेशंस के जो अनुभव हैं उनको देखते हुए सेलेक्ट करते, एक कमेटी होती जो सेलेक्ट करती है। इसी तरह जो ऑब्जर्वर्स जाते हैं, मिलिट्री अधिकारी जाते हैं, पुलिस अधिकारी जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है उनके सर्विस कार्ड के ऊपर, उनके अनुभवों के ऊपर, उनके सर्विस एक्सपीरियंस के ऊपर, और एक चयन प्रक्रिया होती है जिससे उनको चयनित करके भेजा जाता है। भारत में बहुत सम्मान की बात है यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स में किसी भी तरीके से, किसी भी पद पे, नॉट तरीके से, किसी भी पद पे अपनी सेवाएं देना, ऑब्जर्वर ग्रुप हो या कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप में, किसी भी रूप में अपनी सेवाएं देना काफी गर्व का विषय माना जाता है।
1: वास्तव में सर, यहाँ आंकड़े तो बहुत कम हैं और किस्से बहुत ज्यादा हैं। हमारे युवा श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो आर्मी में जाना चाहते हैं या यूएन में जाकर शांति के लिए काम करना चाहते हैं?
0: आर्मी में जो भी आते हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, महिलाएं भी हैं जवान या अधिकारी के पद पर, सबका एक ये रहता है, एक मन में रहता है कि हम एक यूनाइटेड नेशंस मिशन में हम अपनी सेवाएं दें। मैंने आपको बताया नहीं, हमारे देश में, हमारी सेनाओं में ये बड़े गर्व की बात है, और ये चीज़ पुलिस में भी है, सिटीजन्स का भी है कि भाई उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर के वहाँ पे नई तरीके से वहाँ की अवसंरचना, दो संरचनाओं में विकास दिया, तो ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन की बात रहती है, लोग जाना चाहते हैं। और युवाओं को भी मैं संदेश देता हूँ कि अगर वो जा रहे हैं तो जाएं, और अगर बाहर से भी एज अ नागरिक सिटीजन की तरह से उनको मौका मिलता है तो उसको भी देखें। अगर वो आर्मी में नहीं है, पुलिस में नहीं है, सिटीजन्स में हैं और उनकी अपनी एक अलग प्रतिभा है, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो मौका देखें, ढूंढें। यूनाइटेड नेशन से काफ़ी सारे वैकेंसीज आती रहती हैं उनकी वेबसाइट पर, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से भी नहीं जाते, कई बार तो यूएन डायरेक्टली भी बुलाते हैं, अलग से भी नियुक्तियाँ हो जाती हैं।
1: जी जी सर, शांति सैनिकों का आज जिक्र हो रहा है, क्या संदेश देते हैं ये शांति सैनिक दुनिया को?
0: इन्वेस्ट इन पीस जो थीम है, शांति बनाए रखें, संघर्ष में ना रहें। संघर्ष जो है काफी नकारात्मक लाता है, आपको पीछे ले जाता है, शांति बनने से ही आपकी तरक्की संभव है, आपको उत्थान है, उसी में ही भलाई है,
1: यही संदेश का कल्याण है। बिल्कुल सर, अगले 10 सालों में आप यूएन के मिशन के जो बदलाव है उसे कैसे देखते हैं? अगले 10 सालों में हम क्या कुछ और नया अचीव करने वाले हैं?
0: अगले 10 सालों में यूएन मिशन धीरे धीरे अपनी सार्थकता को बढ़ा रहा है। 55 मेंबरों से शुरू हुआ ये यूएन, यूनाइटेड नेशंस, आज 193 मेंबर हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सदस्य देशों की संख्या बढ़ रही है, इनका दायरा बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इनका जाने का, जो ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स ये भेजते हैं, जो भी मिलिट्री ग्रुप्स भेजते हैं, वो भी बढ़ रहा है, इनका दायरा भी बढ़ रहा है। लेकिन जो जिन जगहों पर ये नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और दोनों दलों में से किसी ने नहीं बुलाया, या किसी एक ने बुलाया दूसरे ने नहीं बुलाया, वहाँ पर हस्तक्षेप करने की ये अपनी क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी, ये शायद बढ़ाएंगे, अपनी क्षमताएं बढ़ाएंगे, अपने को मैंडेट इस तरीके से करेंगे कि वहां पर भी हस्तक्षेप कर सकें। क्योंकि कई जगह तो बहुत अन्यायपूर्वक, जिसे कहते हैं ना, अत्याचार हुए हैं बहुत, जैसे सीरिया में हुए हैं, आईसिस के एक्शंस हुए हैं, याजिदीज का हुआ है, पूरा जेनोसाइड हुए, तो उसमें किसी ने, मतलब इनको ना न्योता दिया नहीं गए, तो ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने की ये क्षमता कैसे बढ़ाते हैं, ये भी इनके लिए चुनौती भरा काम है, उसमें भी आगे बढ़ेंगे जहां तक है मुझे लगता है बढ़ना चाहिए।
1: सर, आम नागरिकों की अगर हम बात करें, समाज की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो आम नागरिक या हमारा समाज इन शांति सैनिकों के सम्मान में क्या कर सकते हैं?
0: बलिदान जिन्होंने दिया हुआ है शांति सैनिकों के बलिदान में, जो नागरिकों का जिन्होंने, जिनकी क्षति हुई है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जगह जगह जैसे बताया कि पदक अलंकरण समारोह होते हैं, श्रद्धांजलियां होती हैं, और इसी तरह चर्चाएं हो सकती हैं, इनकी जागरूकता की, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी एग्जिस्टेंस, कई लोगों को इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं पता कि संयुक्त राष्ट्र बल है क्या, इनके बारे में पता लगे, जागरूकता बढ़ेगी तो युवा भी आगे आएंगे, वो भी इसमें कैसे जाएं वो सब पता लगे, जन जागरण अभियान हो। आज के दिन को जैसे हम अन्य दिवसों को समर्पित करते हैं राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, उसको समर्पित किया जाए, और कई सारे इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए जाएं जहाँ पे इस शांति सुरक्षा बल को और अधिक बल मिले, बढ़ोतरी मिले।
1: तो साथियों, आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। वास्तव में शांति सैनिक बनना आसान नहीं है, जाता भी वही है जिसके पास हिम्मत हो और दिल में दुनिया के लिए दर्द हो। हर किसी का दिल इतना बड़ा तो नहीं होता ना। भारत, हमारा देश भी शांति सैनिक इसीलिए भेजता है ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की उक्ति को चरितार्थ कर सके, दुनिया में युद्ध कम हो, शांति बनी रहे, और इसीलिए भारत का यहाँ तीसरा स्थान है। खैर, स्थान से ज्यादा महत्व है योगदान का, और भारत ने यथासंभव सौहार्द शांति और भाईचारे के लिए हमेशा से ही यथासंभव अपना योगदान दिया है। श्रोताओं, शांति सैनिक भेजने में भारत का दुनिया में भले तीसरा स्थान हो, लेकिन बलिदान और अनुभव में पहला स्थान है। हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उन तमाम सैनिकों के लिए जो शांति मिशन में डटे हुए हैं। हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, और जो हमारे लिए अभी भी सेवाओं में हैं उनके लिए हम सदैव ये कामना करेंगे कि आप सदा सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज की परिचर्चा में उपस्थित थे हमारे साथ हमारे अतिथि महोदय कर्नल अनुराग गुप्ता सर। सर, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी दी और बहुत बड़ा संदेश भी दिया। धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शांति सैनिकों के जो बलिदानी है उनको श्रद्धांजलि देते हुए सभी शांति सैनिकों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शांति के मार्ग में प्रशस्त होते रहे।
1: धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 MHz पर।

और अब वक्त है परिक्रमा का, आइए सुनते हैं कुछ खास खबरें। माह का प्रादर्श मानव संग्रहालय में आज सुबह 11 बजे से होगा। जनजातीय संग्रहालय में सुबह 11 बजे से शलाका चित्र प्रदर्शनी आप देखने जा सकते हैं। चंदेरी उत्सव का आनंद लीजिएगा मृगनयनी जीटीबी कॉम्प्लेक्स में, समय सुबह 11 बजे से। CUET UG की एंट्रेंस टेस्ट की संशोधित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। अब यह परीक्षा 31 मई और 6 और 7 जून को होगी। रीजनल साइंस सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय कोड एंड क्रिएट इनोवेशन कार्यशाला में बच्चों को तकनीक और नवाचार की दुनिया से रूबरू कराया।

भोपाल में आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन 2 जून से 7 जून तक किया जा रहा है। भागदौड़ भरी जीवन शैली के कारण लोगों में तनाव, चिंता, अनिद्रा, क्रोध और मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये कार्यक्रम लोगों को प्रसन्न और संतुलित जीवन जीने के तरीके सिखाएगा।

12वीं के बाद करियर और एडमिशन को लेकर स्टूडेंट्स की दुविधा दूर करने के लिए दैनिक भास्कर ने 29 से 31 मई तक नेक्स्ट जेन एडमिशन फेयर का आयोजन कर रहा है।

आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हिंदी पत्रिका के 200 वर्ष पूरे होने पर 30 और 31 मई को राष्ट्रीय द्विशताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही हिंदी पत्रकारिता 200 साल की महागाथा स्मारक ग्रंथ का विमोचन भी किया जाएगा।

उर्दू अदब की दुनिया में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मशहूर शायर बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं है। वे सिर्फ एक बड़े शायर नहीं बल्कि रिश्तों और मोहब्बत को जोड़ने वाली पूरी तहजीब थे। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। ये थी आज की परिक्रमा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: आजाद हिंद फौज का विश्व इतिहास में विशेष महत्व है। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। किसी भी राष्ट्र में किसी सेनानी या जन नेता द्वारा आजादी के लिए साहसी लोगों की इस तरह की सेना तैयार करने के उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। इस फौज की स्थापना भारत से विदेशी शासकों को निकालने की खातिर की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा मलाया और सिंगापुर के भारतीय सैनिकों को एकत्र करके बनाई गई आजाद हिंद फौज का कार्य 4 जून 1943 को सिंगापुर में शुरू हो गया था, जहां स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार भी बनाई गई थी। नेताजी के साथ हजारों भारतीयों ने देश को स्वतंत्र करने का प्रण लिया था। हिंद की सेनाओं ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश फौजों से लड़ाई की। इस सेना की कार्यशैली ने लाखों लाख लोगों को प्रेरणा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आजाद हिंद फौज की बदौलत नए अर्थ मिले थे। आजाद हिंद सरकार को संसार की 3 बड़ी ताकतों जर्मनी, जापान और इटली के साथ 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। मन में नए भारत के निर्माण का सपना लिए आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस भारत की गौरवमयी शख्सियत के रूप में विश्व का अविस्मरणीय इतिहास बन गए।
2: अरे राजू, क्या कर रहा है?
3: समोसे का मसाला बना रहा हूँ काका।
2: अच्छा, नमक मिर्च जरा कम डालना समोसे में। 2 दिन में कम से कम 10 ग्राहक ज्यादा मिर्ची की शिकायत कर चुके हैं।
3: अरे काका, ये मुकेश रोज बातों में उलझा रहता है, मैं क्या करूं? ना तो खुद काम करता है, ना मुझे करने देता है।
2: अरे क्यों बेचारे उस गरीब को दोष देता है? ये क्यों नहीं कहता कि रेडियो के इन ऊल जलूल गानों पर ध्यान ज्यादा रहता है तेरा?
4: राम राम काका।
2: नमस्कार बेटा, नमस्कार।
5: चाय पिलवा दीजिए काका जल्दी से।
2: हाँ बेटा, अभी लगवाता हूँ। अरे राजू, 2 बढ़िया सी चाय बना दे। और बताओ कैसे हो तुम लोग? अरे बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम लोगों का।
4: हाँ काका, आजकल थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में लगे।
2: अरे वो तुम्हारा साथी वही क्यों खड़ा है?
5: अरे वो, उसको तो काका दिन रात कान में हेडफोन लगा के एफएम रेडियो सुनने की आदत लग गई है। पढ़ाई भी करता है तो गाने सुनते सुनते।
4: हाँ काका, और इसलिए हमने उसका नाम राकेश रंजन से राकेश रेडियो रंजन रख दिया है।
2: जिसको देखो रेडियो, जहाँ देखो रेडियो, ये भी कोई बात है भला?
5: बात तो है काका, रेडियो ने तो जैसे आजकल क्रांति ला दी है।
2: अरे रेडियो से तो क्रांति तब आई थी जब आजाद हिंद रेडियो से नेताजी बोलते थे।
4: आजाद हिंद रेडियो?
2: हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चलाया रेडियो, जिस पर उनके जोशीले भाषण प्रसारित होते थे और उनसे जैसे पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ जाती थी।
5: अच्छा,
4: लीजिए भाई चाय।
2: हाँ लो चाय, आ गई चाय, पियो तुम लोग। मैं जरा भट्टी देख कर आता हूँ।
4: अरे नहीं।

0: दो खेमों में बंट गए, एक वो जो इंग्लैंड का समर्थन करना चाहते थे और एक वो जो मौका देखकर अंग्रेजों पर वार करना चाहते थे। और नेताजी उन्हीं दूसरे लोगों में से थे।
1: तो क्या नेताजी के इस रवैये पर किसी को कोई एतराज नहीं था?
0: बिल्कुल था, और इसीलिए पार्टी से वो अलग भी हो गए थे। लेकिन ये उनकी लोकप्रियता का ही असर था कि पार्टी से बाहर होने के बावजूद उन्हें उस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया गया।
2: आप लोग समझते क्यों नहीं, यही सही समय है अंग्रेजों पर वार करने का।
3: देखो, तुम स्वतंत्रता प्राप्ति का जो मार्ग अपनाना चाहते हो उसका कोई छोर नहीं है। आजादी का मार्ग अहिंसा से ही प्रशस्त हो सकता है।
2: महानुभाव क्षमा कीजिए, मैं भी कोई हिंसा का अनुगामी नहीं, लेकिन देश हित के लिए शस्त्र उठाना कोई गलत बात भी नहीं। और फिर
4: क्या सुभाष बाबू, अंग्रेज पहले ही जर्मनों से घिरे हैं, यही ना। पर आप ये क्यों नहीं समझते कि हम हिंदुस्तानी तब भी उनसे लड़कर मुकाबला नहीं कर सकते?
2: क्यों नहीं कर सकते? देखिए ना, इस समय जर्मनी का हिटलर इंग्लैंड पर लगातार हमले कर रहा है। वो एक तरफ से बुरी तरह घिरे हुए हैं और इस दूसरी तरफ से हम उन्हें घेर कर ज्यादा मुसीबत में डाल सकते हैं।
3: नहीं नहीं, ऐसे में तो हम स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरा विचार तो यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में यदि हम अंग्रेजों का साथ दें, उनका संबल बने, तो हमें अवश्य ही कुछ प्रतिसाद मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है?
2: यदि आप सब ऐसा ही सोचते हैं तब भी मैं आपके साथ नहीं हूं। अब हमारे मार्ग अलग होंगे। आप अपनी तरफ से स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश करें और मैं अपने मार्ग पर चलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।
5: क्यों भाई, पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष बाबू तो अलग ही पड़ गए।
1: वो अलग पड़ने वालों में नहीं है भाई।
6: मैंने सुना है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है
1: और अब तो उनसे लोग जुड़ने भी शुरू हो गए हैं।
4: सुना आपने, सुभाष अब खुद ही नेताजी हो गए हैं। उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है और अब तो उनकी बातों का असर जनता पर भी होने लगा है।
3: लेकिन कितने लोगों पर होगा? मुट्ठी भर लोगों का साथ पाकर भला अंग्रेजों का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। आप तो ये बताइए कि 20 मार्च को होने वाले अधिवेशन की क्या तैयारी है?
4: उस अधिवेशन का सारा कार्य मौलाना अबुल साहब को सौंप दिया गया है। वे ही उस दिन जनता को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि इस समय अंग्रेजों का साथ देने में ही हमारा हित है।
3: कौन है भाई?
7: जी पत्र है,
3: लाइए।
4: क्या बात है?
3: लिखा है कि हमारे अधिवेशन के ही दिन सुभाष बाबू भी रामगढ़ में जनता को संबोधित करने वाले हैं और उनका यह उद्बोधन समझौता विरोधी होगा। पता नहीं अब क्या होगा।
4: अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, उनके अपने विचार हैं, वो जब चाहे व्यक्त करें। चलिए देखते हैं क्या होगा 20 तारीख को।
8: शांत हो जाइए सब लोग। आप लोग बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें। सभा को अब हमारे नेताजी संबोधित करेंगे।
2: यहां उपस्थित भारत माता के वीर सैनिकों, आप सब जानते हैं कि हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम अंग्रेजों का साथ देने की नीति का विरोध करते हैं। अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भीख मांगने से स्वाधीनता कभी नहीं मिलेगी। स्वाधीनता प्राप्त करने का एक ही हथियार है और वो है युद्ध। अब यूरोप की हर एक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की भारत में पकड़ ढीली होती जाएगी। इस समय भारतवासियों को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय

0: नेताजी को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल ही गया?
1: नहीं, उनके साथ कार्यकर्ता तो बहुत जुड़ गए थे, पर बाकी कहीं से भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा था। ऊपर से उस वक्त उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।
2: तब तो सारा आंदोलन ठप पड़ गया होगा।
0: और काका, वो रेडियो वाली बात का क्या हुआ?
1: हाँ, बताता हूँ भाई। असल में नेताजी ने तो जेल में ये कहकर भूख हड़ताल शुरू कर दी कि या तो रिहाई दो या मौत। बहुत मनाने पर भी वो नहीं माने। ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। नेताजी तो नेताजी थे, कड़े पहरे के बावजूद वो अपने घर से ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक रूप से हिंदुस्तान से गायब हो गए और सीधे जर्मनी पहुंचे। और यहीं से शुरू हुआ आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद रेडियो का सफर।
3: सर, आपसे कोई इंडियन मिलने आया है।
4: इंडियन?
3: हाँ, कहता है जरूरी काम है।
4: ठीक है, भेजो।
3: जी,
4: आइए आइए, कहिए।
5: जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं एक भारतीय हूं। अंग्रेजों से अपने देश को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और इसी संबंध में आपसे कुछ मदद चाहता हूं।
4: मुझसे मदद? कैसी मदद चाहते हैं?
5: देखिए, आपकी जर्मन जेलों में जो भारतीय कैदी हैं, आप उन्हें रिहा कर दीजिए।
4: क्या?
5: जी, मैं उन बंदियों का इस्तेमाल ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष में करूंगा।
4: लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं?
5: आप कृपया मेरी बात को समझें। देखिए, एक तरफ आपके देश की सेना ने अंग्रेजों को पहले से ही घेर रखा है, दूसरी तरफ मैं अगर इन साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करूं तो अंग्रेज काफी कमजोर हो जाएंगे।
4: तो आपका मतलब है कि ये हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ेंगे?
5: जी बिल्कुल।
4: ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा।
5: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: सारे भारतीय बंदियों को आज और अभी रिहा किया जाता है, जाइए, आप लोग जा सकते हैं।
7: अरे ये अचानक जर्मन सरकार को हम भारतीयों पर इतनी दया कैसे आ गई?
8: कोई बात तो जरूर है।
9: हाँ, एकदम से उन्होंने हमें क्यों रिहा किया जबकि हमारी सजा तो अभी पूरी नहीं हुई?
7: लगता है इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई उद्देश्य होगा।
10: चाल नजर आती है।
9: नहीं, कोई कारण तो जरूर
11: छोड़ेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रही
9: जरूर होगी हमें छोड़ने की।
6: आइए आइए, आप सबका स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया। आप सबको रिहा कराने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और
3: आप भारत से आए हैं। आपको कौन भारतीय नहीं जानता सुभाष बाबू। स्वतंत्रता प्राप्ति की आपकी कोशिशों के बारे में हम सब ने सुन रखा है, लेकिन हम आपके किस काम आ सकते हैं?
6: भाइयों, आप लोग एक काम करें, इतने समय बाद आजाद हुए हैं तो आज आराम कर लें, कल सभी एक जगह इकट्ठा होकर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, इतना तो मैंने कल आप सबको बता ही दिया था कि एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको रिहा कराया गया है। मैं अब चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर भारत माता को स्वतंत्र कराने में मेरी मदद करें। हम सब मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे।
12: लेकिन हम तो केवल 30-35 लोग हैं।
13: और हाँ भाई, फिर इतनी दूर जर्मनी से हम भला भारत को कैसे आजाद करा सकते हैं?
6: साथियों, जहां चाह है वहां राह है। देखिए, बात यदि संख्या की ही है तो आपकी ही तरह हमारे हजारों साथी इटली और यूरोप के देशों में बंदी हैं। हम उन्हें भी किसी ना किसी तरह छुड़ा लेंगे। और रही बात दूरी की, तो हौसला होने पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। कहिए, क्या कहते हैं आप लोग, देंगे मेरा साथ? बताइए, क्या आप अपनी मातृभूमि का ऋण अदा नहीं करेंगे? तो ठीक है साथियों, आज से हम सब एक हैं, हमारा उद्देश्य भी एक है। हम सब जब भी मिलेंगे तो नमस्ते नहीं कहेंगे, जय हिंद बोलेंगे और हमारा नारा होगा, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद
14: जिंदाबाद,
6: आजाद हिंद
14: जिंदाबाद।
3: और हम सब आपको नेताजी कहेंगे, हमारे नेताजी। नेताजी
8: जिंदाबाद,
3: नेताजी
8: जिंदाबाद,
3: नेताजी
8: जिंदाबाद।
13: पर नेताजी, हमारे संगठन का पहला उद्देश्य तो और साथियों को जोड़ना ही तो होगा ना?
6: नहीं, हमें सबसे पहले अपनी आवाज हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे तक पहुंचानी होगी, ताकि दूसरे हजारों हिंदुस्तानी भाई भी आजादी की राह पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें।
13: नेताजी, लेकिन ये सब जर्मनी में रहकर कैसे संभव है?
6: हम अपनी बातों को अपने देश तक पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करेंगे।
3: रेडियो का? रेडियो का इस्तेमाल?
6: हाँ साथियों, हमारे रेडियो का नाम होगा आजाद हिंद रेडियो, जिससे कहीं हमारी हर बात आजादी का एक नया द्वार खोलेगी और सात समंदर पार होते हुए भी हर एक हिंदुस्तानी को झकझोरेगी। आजाद हिंद
8: जिंदाबाद,
6: आजाद हिंद
8: जिंदाबाद।
10: नमस्कार, हम आजाद हिंद रेडियो बर्लिन से बोल रहे हैं और अब आपसे मुखातिब होंगे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्यारे भारतवासियों, अब वो समय आ गया है जब हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। देश को आजाद कराने का मार्ग हमें स्वयं बनाना होगा। अब ये समय अनुनय विनय का नहीं, गोरों को मौन की भाषा समझ नहीं आती। हमें अपनी चुप्पी तोड़ना ही होगी और मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना ही होगा। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण, जिसमें नेताजी ने बताया कि भारतवासियों के लिए
3: कौन है?
5: अरे भाई, मैं हूँ, मैं बनवारी।
3: अच्छा तू है, रुक जा खोलता हूँ।
5: हाँ क्यों, क्या हुआ? अच्छा, लगता है तू चुपके चुपके आजाद हिंद रेडियो सुन रहा था।
3: हाँ भैया, छुपके ही सुनना पड़ता है, कहीं अंग्रेजों ने सुन लिया तो
5: क्या कर लेंगे। अब तो हम ही नहीं, आजाद होने की चाहत में पूरा हिंदुस्तान आज नेताजी का आजाद हिंद रेडियो सुनता है।
3: हाँ सो तो है, देखना नेताजी देश को जरूर आजाद करा के रहेंगे।
6: जी नेताजी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। आप क्या कह रहे थे
3: नेताजी? खबर मिली है कि हमारे प्रसारण का असर हिंदुस्तान में अब दिखने लगा है।
13: जी, एक तरफ जहां आज हिंदुस्तानी हमारी बातों से प्रेरित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की नींद उड़ गई है।
6: ये सब तो ठीक है, याद रखें यह हमारे उद्देश्य का पहला चरण है। हमारा प्रसारण नियमित अंतराल पर होता रहेगा। अब हमारा अगला काम है अपने साथ और भी साथियों को जोड़ना, और इसके लिए हमें परदेश में ही दूसरे हिंदुस्तानी भाइयों को ढूंढ निकालना होगा।
3: नेताजी, एक जानकारी के मुताबिक हमारे 10,000 हिंदुस्तानी भाई जर्मनी के ही एनाबर्ग कैदखाने में कैद हैं।
13: जी, और इसी तरह इटली की जेलों में भी कई भारतीय बंदी हैं। यदि ये सब हमारे साथ मिल जाए तो हमारा संगठन बेहद मजबूत हो जाएगा।
6: बहुत अच्छे, तो फिर मैं जल्दी ही इसके लिए इटली और जर्मनी सरकार से बात करता हूँ। आजाद हिंद
8: जिंदाबाद,
6: आजाद हिंद
8: जिंदाबाद।
3: आइए नेताजी, कहिए कैसे आना हुआ?
6: बस फिर एक बार आप लोगों को मदद करनी होगी।
3: किस तरह की मदद चाहते हैं आप?
6: जिस तरह आपने पहले हमारी मदद की थी।
3: तो ये मतलब कोई कैदी बचे नहीं?
6: मैं आपकी जेल में बंद कैदी हूँ। जैसे आप कहीं कैद खाना है ना, बंद
10: बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। समस्त हिंदुस्तानियों को यह जानकर हर्ष होगा कि आजाद हिंद फौज का विस्तार हो चुका है। जर्मनी और इटली की जेलों में बंद हजारों भारतीय बंदी अब नेताजी के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाएंगे और भारत को आजादी का सूरज दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
6: आजाद हिंद फौज में आए नए सैनिकों का स्वागत है। आइए हम सब प्रण लें कि हम अपनी आखिरी सांसों तक मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हम अपना जीवन स्वतंत्रता पथ पर न्यौछावर कर देंगे। आप सबका नेता होने के नाते मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम आजाद होकर ही रहेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद
8: जिंदाबाद,
6: आजाद हिंद
8: जिंदाबाद।
3: नेताजी
8: जिंदाबाद,
3: नेताजी
8: जिंदाबाद।
6: ये सही है कि अब हमारा संगठन काफी बड़ा हो गया है, लेकिन हम सबको यह याद रखना होगा कि बिना तैयारी के इम्तिहान नहीं दिया जाता। युद्ध के पहले हम सबको कठिन प्रशिक्षण के दौर से गुजरना होगा, और मैंने इसके लिए जर्मन सैन्य अधिकारियों से बात भी कर ली है। मैं यह भी जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग सेना में या फिर कहीं दूसरे स्थान में बड़े पदों पर आसीन रहे होंगे, लेकिन यहां हम सबको एक सैनिक की तरह काम करना होगा। हम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा, हम सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आजादी है, और इससे परे हमें कोई सरोकार नहीं।
8: आजाद हिंद जिंदाबाद,
14: आजाद हिंद जिंदाबाद,
15: नेताजी
14: जिंदाबाद,
15: नेताजी
14: जिंदाबाद।
16: नेताजी किस सोच में पड़े? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी?
6: नहीं नहीं, मैं श्री राज बिहारी बोस के बारे में सोच रहा था।
16: वो कौमी वीर राज बिहारी बोस जी?
6: हाँ, वो पिछले काफी समय से जापान में रहकर हमारी तरह ही भारत माता को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम उनसे मिल जाएं, तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी।
16: और हम यहाँ जर्मनी में और वो जापान में।
17: नेताजी सुबह पत्र आया था आपके लिए।
6: देखो तो जरा किसका पत्र है।
16: अरे नेताजी, ये उन्हीं राज बिहारी बोस जी का पत्र है जापान से।
6: क्या?
16: हाँ, लिखते हैं कि आप ही की तरह उन्होंने भी जापान में एक बड़ी फौज तैयार की है।
6: अच्छा।
16: और अब बुजुर्गियत के चलते वो इसकी कमान आपको सौंपना चाहते हैं, और इसीलिए आपको जापान बुलाया है।
6: और आगे पढ़ो।
16: आगे लिखते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीय तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं, आओ और मुझे मुक्ति दो।
6: मैं सोचता हूं यही ठीक भी रहेगा, क्योंकि जापान से भारत की गतिविधियों पर नजर भी आसानी से रखी जा सकती है। हम जल्द से जल्द अब जापान जाएंगे।
16: लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? विश्व युद्ध के चलते आपकी यात्रा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
6: वैसे भी प्राणों के संरक्षण के बाद त्याग ही होता है, तो फिर त्याग से बचाव कैसा? जर्मन सरकार को लिख दो कि हम अपनी जिम्मेदारी पर जापान जाने के लिए तैयार हैं, हमारी यात्रा का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाए।
16: जैसा आप कहें।
6: आजाद हिंद फौज की ताकत बढ़ाने और एशिया के देशों का समर्थन हासिल करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा। और फिर अब मैं मातृभूमि के और भी पास हो जाऊंगा।
18: आज की ताजा खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे।
19: जापान जाते वक्त नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो
20: रहा है। अरे ना दिखाना, दिखाना।
21: अच्छा, विमान

0: नमस्कार, ये आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। अब आप सुनिए स्वयं नेताजी को। मैं सुभाष बोल रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश संवाददाता ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया है कि मैं टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में मारा गया हूं। मैं मर जाऊं इस बात की उन्हें खुशी होगी और वे यही चाहते भी हैं, परंतु उनका दुर्भाग्य है कि मैं आज भी जिंदा हूं।
1: अरे वाह, अरे अरे
2: मतलब वो खबर अंग्रेजों की एक चाल थी।
3: हाँ भाई हाँ,
4: यानी कि नेताजी सुरक्षित जापान पहुंच गए थे।
3: हाँ, न सिर्फ वो जापान पहुंचे बल्कि उन्होंने जल्द ही वहां पर काम करना शुरू भी कर दिया। एक सम्मेलन में राजबिहारी बोस ने संपूर्ण आंदोलन की बागडोर नेताजी के हाथों में सौंप दी।
5: मित्रों, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए आज तक सेना की कमी थी, आपने वो कमी पूरी कर दी। स्वाधीनता की लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई आजाद हिंद फौज की ही होगी। हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली चलो का नारा लगाते अब हमें तब तक चलते जाना है जब तक कि हमारा राष्ट्रीय झंडा नई दिल्ली के वॉइसराय भवन पर नहीं फहराने लगे और आजाद हिंद फौज पुराने लाल किले के अंदर विजय परेड ना करे।
6: भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजाद हिंद।

0: जल्द ही आजाद हिंद फौज ने ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अरे हाँ, उसके पहले नेताजी की बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि उनकी कोशिशों के चलते आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद सरकार घोषित कर दिया गया। फौज को सबसे पहले जापान ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दी। उसके बाद चीन, इटली, आयरलैंड और सिंगापुर ने भी आजाद हिंद सरकार को अपनी मान्यता दी।
1: अरे वाह, मतलब देश की आजादी के पहले सरकार भी बन गई और दूसरे देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया।
2: तो फिर क्या हुआ काका?
0: और उसके बाद भी कई लड़ाइयां लड़ी नेताजी ने और उनकी आजाद हिंद फौज ने, और लगातार कोशिश करते रहे आजादी के लिए। पर उसके बाद नेताजी का क्या हुआ, ये तो आज तक भी एक रहस्य ही बना हुआ है।
1: मतलब
0: भाई, कोई कहता है कुछ घटना दुर्घटना हो गई, तो कोई उनके गुमशुदा होने की बात कहता है।
1: सच काका, देश प्रेम की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी जहां एक अकेले आदमी ने न सिर्फ अपने दम पर देश की सरहदों को पार किया बल्कि लाखों लोगों को देश प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी किया।
0: हाँ, तो असली रेडियो का मतलब अब समझ में आ गया होगा, क्यों भाई रेडियो रंजन?
3: चलिए काका, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई।
0: अरे बेटा, तुम जैसे नौजवानों को ये सब बताना तो मेरा फर्ज है।
1: तो फिर काका, अगली बार भी फर्ज निभाने के लिए तैयार रहिएगा, हम जल्दी आएंगे।
0: जरूर आना। नमस्कार, जरूर। नमस्कार, नमस्कार।
4: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
0: 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओं, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खम्बे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी महर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हाड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूँ। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से दो सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थीं। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नर्तकी पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधियां में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसी में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे श्रोताओं।
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण, ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालीदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी सांस पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और इनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
0: नमस्कार।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: 9 दिसंबर रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई। स्वामी जी मठ के कार्य प्रणाली से खुश थे। एक दिन स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली के द्वारा घेरे हुए शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे। इसी समय साधु नाग महाशय उनके दर्शन के लिए मठ में पधारे। श्री रामकृष्ण देव की इन दो सृष्टियों का बहुत दिनों बाद आनंद सम्मेलन हुआ। एक शिष्य सन्यास का चरम आदर्श है और दूसरा है मूर्तिमान गार्हस्थ धर्म।
1: स्वामी जी ने प्रणाम करके पूछा,
2: प्रणाम महाशय, आप अच्छे तो हैं ना?
3: आपका दर्शन करने आया हूं। जय शंकर, जय शंकर, साक्षात शिव दर्शन हुए।
0: नाग महाशय सब कुछ भूलकर तन्मय होकर स्वामी जी को देखे जा रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें प्रसाद देकर उपस्थित जनों से कहा,
2: देख रहे हो, नाग महाशय को देखो, आप गृहस्थ हैं परंतु जगत है या नहीं ये भी नहीं जानते, सदा तन्मय रहते हैं। इन सब ब्रह्मचारियों और हम लोगों को श्री रामकृष्ण देव की कुछ बातें सुनाइए।
3: ये आप क्या कहते हैं, भला मैं क्या कहूंगा। मैं आपको देखने आया हूँ, श्री रामकृष्ण देव की लीला के सहायक महावीर जी का दर्शन करने आया हूँ। श्री रामकृष्ण देव की बात अब लोग समझेंगे। जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण।
2: आप ही ने वास्तव में श्री रामकृष्ण देव को पहचाना है, हम तो केवल भटकते रह गए।
3: ठीक ठीक ठीक ठीक, ये कैसी बात आप कहते हैं। आप श्री रामकृष्ण देव की छाया हैं, सीधा बाजू और उल्टा बाजू, जिसकी आंख हो देख ले।
2: ये सब जो मठ आदि हो रहा है वो क्या ठीक है?
3: मैं क्षुद्र जीव हूँ, क्या समझता हूँ। आप जो कुछ करते हैं निश्चित जानता हूँ, उससे जगत का कल्याण होगा, मंगल होगा।
2: मैं एक बार आपके घर आऊंगा।
3: हाँ, क्या ऐसा दिन आएगा, मेरा घर काशी बन जाएगा, क्या ऐसा मेरा भाग्य होगा?
2: मेरी तो इच्छा है, पर जब मां ले जाए तब तो हो।
3: आपको कौन समझेगा, दिव्य दृष्टि खोले बिना आपको पहचानने का उपाय नहीं है। एकमात्र श्री रामकृष्ण देव ने ही आपको पहचाना था, शेष सभी लोग केवल उनकी बात पर विश्वास करते हैं। आपको कोई समझ ना सका। हाँ,
2: मेरी इस समय एकमात्र इच्छा है देश को जगा दूं। मानो महावीर अपनी शक्ति पर विश्वास खोकर सो रही हैं, चूं तक नहीं करते। सनातन धर्म के भाव को देशवासियों में किसी प्रकार यदि भर सकूं तो समझूंगा कि श्री रामकृष्ण देव और हम लोगों का आना सार्थक हुआ। केवल यही इच्छा है, मुक्ति फुक्ति सब तुच्छ लगती हैं। आप आशीर्वाद दीजिए, हमें सफलता प्राप्त हो।
3: श्री रामकृष्ण देव का आशीर्वाद है, आपकी इच्छा की गति को कोई पलट सके ऐसा कोई देखने में तो नहीं आता। आप जो चाहेंगे वही होगा।
2: कहां, कुछ भी तो नहीं होता, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता।
3: उनकी इच्छा और आपकी इच्छा एक हो गई है। आपकी जो इच्छा वही श्री रामकृष्ण देव की इच्छा है। जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण, जय राम।
2: नाग महाशय, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ कुछ समझ नहीं आता। एक एक समय एक एक बात की ओर प्रबल झुकाव आ जाता है, उसी के अनुसार काम किए जा रहा हूँ। इससे भला हो रहा है या बुरा कुछ समझ नहीं आ सकता।
3: श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा था कि आप संदूक में बंद हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं। समझने के साथ ही लीला समाप्त हो जाएगी। हाँ, लीला समाप्त हो जाएगी।
0: नाग महाशय के साथ स्वामी जी की तुलना करते हुए नट सम्राट गिरीश बाबू ने कहा था,
4: महामाया दो व्यक्तियों से हार मान गई है। स्वामी जी को महामाया जितना ही बांधने जाती है स्वामी जी उतने ही बड़े बन जाते हैं। माया की रस्सी उन्हें बांध नहीं पाती और नाग महाशय इतने छोटे बन जाते हैं कि रस्सी की गांठ के भीतर से फिसल जाते हैं।
1: एक दिन हितवादी

0: करने के लिए, पूरा करने के लिए प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व है और इस उद्देश्य से प्राणपण चेष्टा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।
1: राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं के प्रधान प्रधान विषयों का वर्णन स्वामी जी ओजस्वी भाषा में करने लगे। काफी देर तक वार्तालाप के बाद पंडित जी ने विदा ली। इसी समय उनके साथी पंजाबी मित्र ने स्वामी जी से कहा,
2: जी स्वामी जी, आपसे धर्मोपदेश सुनने के लिए हम बड़ी दूर से बड़ी आशा करके आए थे, परंतु दुर्भाग्य से अति साधारण विषयों पर चर्चा हुई। ओ जी, आज का दिन बड़ा ही व्यर्थ गया स्वामी जी।
1: स्वामी जी का मुखमंडल व्यथित करुणा से गंभीर हो उठा। वे धीर भाव से बोले,
0: सज्जन, जब तक मेरी जन्मभूमि का एक कुत्ता भी भूखा रहेगा तब तक उसे रोटी देना ही मेरा धर्म है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है अधर्म है।
3: स्वामी जी के देहत्याग के वर्षों बाद इस बात का उल्लेख कर पंडित देउस्कर जी ने कहा था कि स्वामी जी का वो गंभीर समवेदनापूर्ण कथन उनके दिल में सदा जागृत रहा है। उसी दिन से उन्होंने समझा है कि वास्तव में देश प्रेम किसे कहते।
1: हमने पहले उल्लेख किया है कि इससे पूर्व 16 दिसंबर को ही स्वामी जी ने दूसरी बार इंग्लैंड और अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की थी। इस समय ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में समुद्र यात्रा से संभवतः उनके स्वास्थ्य को लाभ होगा। इसी आशा से उनके मित्र व चिकित्सक गण उन्हें यात्रा के लिए अनुरोध करने लगे। अंत में 10 जून स्वामी जी का इंग्लैंड यात्रा का दिन नियत हुआ। स्वामी जी के साग्रह अनुरोध से स्वामी तुरियानंद जी ने उनका साथी बनना स्वीकार किया। बालिका विद्यालय के आवश्यक कार्य के लिए भगिनी निवेदिता ने भी इंग्लैंड जाने की इच्छा प्रकट की।
3: 31 जुलाई को स्वामी जी लंदन पहुंचे। टिलबरी डॉक में उतरकर अपने अंग्रेज शिष्य और शिष्याओं के बीच दो अमेरिकन शिष्याओं को स्वागत के लिए आए देख स्वामी जी कुछ विस्मित व आनंदित हुए। वे दोनों समाचार पत्रों द्वारा स्वामी जी के इंग्लैंड आगमन का संवाद पढ़कर गुरु दर्शन की तीव्र इच्छा से डेट्रॉयट से लंदन आई थी। स्वामी जी लंदन से कुछ दूरी पर विंबलडन नामक स्थान में निवास करने लगे। इस बार स्वामी जी ने दर्शनार्थी जिज्ञासुओं के साथ धर्मालोचना करने के अतिरिक्त जनता के लिए कोई भाषण नहीं दिया।
1: अंत में अमेरिका से बार बार बुलाए जाने पर 16 अगस्त को गुरु भाई तुरियानंद तथा दोनों अमेरिकन शिष्याओं के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क की ओर यात्रा की। इस समुद्री यात्रा के संबंध में स्वामी जी की शिष्या श्रीमती फंकी ने लिखा है,
4: समुद्र पर व्यतीत किए हुए 10 दिनों की स्मृति कभी भूलने की नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल गीता का पाठ व व्याख्या होती थी और कभी कभी हम लोग संस्कृत कविता और कहानियों की आवृत्ति तथा अनुवाद सुनते थे। कभी प्राचीन वैदिक प्रार्थना मंत्रों का पाठ होता था। समुद्र शांत था, मनोहर चांदनी से रात्रि चमक रही थी। एक दिन गुरुदेव डेक पर टहलते हुए प्राकृतिक सौंदर्य के संबंध में हमें समझा रहे थे। उज्जवल चांदनी में उनका विशाल सुंदर शरीर बड़ा ही मनोहर लग रहा था। इसी समय एकाएक खड़े होकर वे कह उठे,
0: माया राज्य के दृश्य जब इतने सुंदर हैं, तो सोचो इसके पीछे विद्यमान वे कितने सत्य स्वरूप ईश्वर स्वयं सुंदर होंगे।
3: न्यूयॉर्क पहुंचकर आचार्य देव को श्रीमान और श्रीमती लिगेट ने बड़े आदर पूर्वक अपना अतिथि बनाया। उनके साथ थोड़े दिन रहकर उनके अनुरोध से फिर उसी दिन तीसरे प्रहर गुरु भाई तुरियानंद के साथ न्यूयॉर्क से 150 मील दूर स्थित उनके गांव के मकान रिजले मैनर में रहने के लिए वे चल दिए। स्वामी जी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य देखकर सहृदय लिगेट दंपत्ति ने एकदम उन्हें प्रचार का कार्य प्रारंभ करने नहीं दिया, इस भय से कि उनका बिगड़ा स्वास्थ्य अधिक परिश्रम से कहीं और न बिगड़ जाए, उन्होंने स्वामी जी की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी।
1: एक माह के बाद निवेदिता इंग्लैंड से वहां आ गईं। इधर स्वामी अभेदानंद जी प्रचार कार्य के लिए किसी दूसरे स्थान पर थे, इसलिए न्यूयॉर्क में स्वामी जी से उनका साक्षात्कार नहीं हो सका। कुछ दिन बाद वे भी वहां पर आए। स्वामी जी उनसे वेदांत प्रचार कार्य की सफलता का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि न्यूयॉर्क में वेदांत समिति के लिए एक स्थायी भवन की व्यवस्था हो रही है, बहुत ही आनंदित हुए और गुरु भाइयों की निस्वार्थ चेष्टा के लिए उन्हें धन्यवाद देने लगे। अभेदानंद जी एक दिन बाद ही वेदांत समिति संबंधी कार्य के लिए न्यूयॉर्क लौट गए।
3: अनेक शिक्षित नर नारी जो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें तथा भाषण आदि पढ़कर उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, इस समय उनके अमेरिका में आने का समाचार पाकर उनके दर्शन की इच्छा से न्यूयॉर्क आने लगे। स्वामी जी भी बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को आदर के साथ स्वागत करते हुए उनकी धर्म संबंधी समस्याओं को दूर कर दिया करते थे।
1: पुराने मित्र शिष्य और शिष्याओं के आग्रह पूर्वक निमंत्रण पर वे न्यूयॉर्क के आसपास बोस्टन, ब्रुकलिन आदि कई स्थानों में गए। इस प्रकार अंतरंग भक्त और मित्र मंडली के साथ दो सप्ताह सानंद बिताकर स्वामी जी ने कैलिफोर्निया की ओर यात्रा की।
3: कैलिफोर्निया के रास्ते में स्वामी जी को बाध्य होकर शिकागो में उतरना पड़ा। मित्र व भक्त मंडली के आग्रह की वे उपेक्षा न कर सके। शिकागो निवासियों ने स्वामी जी के सम्मान के लिए अभ्यर्थना की तैयारी में कोई कसर नहीं रखी। स्वामी जी ने शिकागो में कुछ दिन रहकर नए व पुराने भक्तों की आकांक्षा को पूर्ण किया। अंत में उनसे विदा लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में वे कैलिफोर्निया आ पहुंचे। सन 1900 के जून मास से लगातार 7 महीने तक उन्होंने इस प्रांत में निवास किया।
1: कैलिफोर्निया की प्रथम नगरी लॉस एंजलिस में पदार्पण करने के साथ ही स्वामी जी को श्रीमती ब्लोजेट ने अपने घर में आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। उनकी शिष्या कुमारी मैकलियॉड भी वहां पर पहले से ही निवास कर रही थी। स्वामी जी के आगमन के थोड़े ही दिन बाद प्रतिदिन बहुसंख्यक नर नारी उनके दर्शनों के लिए आने लगे। स्वामी जी की पुस्तकों का अध्ययन कर अनेक व्यक्ति ऐसे मुक्त हुए थे कि ये जानकर कि वे आजकल लॉस एंजलिस में पधारे हैं, दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल व तीसरे प्रहर नियमित रूप से प्रश्नोत्तर सभा होने लगी। अंत में जनता के आग्रहपूर्ण अनुरोध से उन्होंने फिर भाषण देना स्वीकार किया।
3: इन भाषणों के बारे में श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था,
5: इस अप्रतिद्वंदी प्राच्य प्रचारक के अतुलनीय आध्यात्मिक संदेश की महिमा की चर्चा कैलिफोर्निया प्रांत के नगर नगर गांव गांव में होने लगी। ऑकलैंड से स्वामी जी फरवरी मास के अंत में कैलिफोर्निया की राजधानी सैन फ्रांसिस्को में पधारे। आने वाले उनके दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात की ओर ध्यान रखते हुए स्थानीय मान्य तथा शिक्षित व्यक्तियों ने टकर स्ट्रीट में एक विशाल भवन का प्रबंध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद ही स्वामी जी ने स्थानीय गोल्डन गेट हॉल में हजारों श्रोताओं के सम्मुख अपना प्रथम तथा प्रसिद्ध सार्वजनीन धर्म का आदर्श नामक शीर्षक भाषण दिया। मंत्रमुग्ध जैसी जनता ने एकाग्रचित होकर श्रद्धा के साथ लगभग 2 घंटे तक खड़े रहकर उनके श्रीमुख से निकली हुई अमृत मधुर सत्य की वाणी का श्रवण किया। भाषण के बाद स्वामी जी के आसन ग्रहण करने पर जनता उच्च कंठ से उन्हें धन्यवाद देने लगी।
1: कर्म के इस प्रवाह के बीच में भी समय समय पर उनका पवित्र मन एक अज्ञात भाव राज्य में डूब जाता था। इस प्रकार उच्च भाव से अभिभूत होकर स्वामी जी ने अपनी शिष्या कुमारी मैकलाउड को 18 अप्रैल 1900 को लिखा था,
0: कर्म करना सभी समय कठिन है। मेरे लिए प्रार्थना करो कि हमेशा के लिए मेरा काम करना बंद हो जाए और मेरा समग्र मन प्राण श्री मां की सत्ता में एकाकार हो जाए। उनका कार्य वे ही जाने। मैं अच्छा हूं। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। शरीर की बजाय मन की शांति व स्वच्छंदता का ही बहुत अधिक अनुभव कर रहा हूं। युद्ध में हार जीत दोनों ही हुई। अब बोरा बिस्तर बांधकर उस महान मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में बैठा हूं। अब शिव पार करो मेरी नैया। हे शिव मेरी नैया पार लगा दो प्रभु। मैं पैदा हुआ था इससे खुश हूं। इतना जो दुख भोगा है उस पर भी खुश हूं। जीवन में कभी कभी बड़ी बड़ी भूलें की हैं, इस पर भी खुश हूं। फिर अब जो निर्वाण के शांत समुद्र में डुबकी लगाने जा रहा हूं इसमें भी खुश हूं। मेरे लिए संसार में फिर लौटना होगा। मैं किसी को किसी बंधन में छोड़कर नहीं जा रहा हूं, अथवा इस प्रकार का बंधन मैं किसी से लेकर भी नहीं जा रहा हूं। देह जाने के बाद मुझे मुक्ति हो अथवा देह रहते ही मुक्त हो जाऊं पता नहीं, परंतु वो पुराना विवेकानंद चला गया है, हमेशा के लिए चला गया है और नहीं लौटेगा। शिक्षादाता, गुरु, नेता, आचार्य चला गया। पड़ा हुआ है केवल पहले वाला वही बालक, प्रभु का वही चिर शिष्य, चिर पदाश्रित दास।
3: स्वामी जी के कैलिफोर्निया छोड़ने के कुछ दिन पूर्व कुमारी मिन्नी सी बुक नामक उनकी एक भक्तिमती शिष्या ने एक स्थायी मठ की स्थापना के उद्देश्य से 160 एकड़ के लगभग एक बड़े भूमिखंड का दान दिया। स्वामी जी ने आनंद के साथ इस दान को ग्रहण किया। बाद में स्वामी तुरीयानंद ने जाकर वहां पर एक आश्रम की स्थापना की। यद्यपि स्वामी जी के जीवन काल में ही उस स्थान पर शांति आश्रम की स्थापना हुई थी, किंतु वे आगे उसे पूरा होते देख न सके।
1: मई मास के अंत में स्वामी जी को लंदन से लिगेट दंपति का पत्र प्राप्त हुआ कि वे जुलाई मास में पेरिस जाएंगे, और उन्होंने प्रार्थना की कि स्वामी जी भी वहां पहुंच जाएं। इधर पेरिस प्रदर्शनी की धर्म इतिहास सभा के विदेशी प्रतिनिधियों के लिए गठित स्वागत समिति की ओर से स्वामी जी को इस सभा में भाषण देने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ। इन दो कारणों से वे कैलिफोर्निया के शिष्य व भक्तों से विदा लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे। रास्ते में अवश्य ही अपने पुराने मित्र और शिष्यों से भेंट करने के लिए उन्हें शिकागो व डेट्रॉइट में उतरना पड़ा था।
3: अंतरंग भक्त व मित्रों के साथ एक सप्ताह बिताकर स्वामी जी 10 जुलाई को न्यूयॉर्क लौट आए। अंत में कुछ दिन विश्राम करके 20 जुलाई को उन्होंने पेरिस की यात्रा की।
1: पेरिस पहुंचकर स्वामी जी ने लिगेट दंपत्ति का आतिथ्य स्वीकार किया। इस समय श्रीमती ओली बुल डिटानी प्रांत के लानियोन नामक स्थान में निवास कर रही थी। उनके आमंत्रण पर स्वामी जी थोड़े दिनों के लिए वहां पधारे। श्रीमती बुल के निवास स्थान पर फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक व लेखक मां जूल बोआ के साथ स्वामी जी का परिचय हुआ। इनके साथ हमेशा दर्शन, साहित्य और ऐतिहासिक गवेषणा के संबंध में चर्चा होती थी, जिससे स्वामी जी को फ्रांसीसी भाषा सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था।
3: लिगेट दंपत्ति अपने श्रद्धेय अतिथि की सब प्रकार की सुख सुविधाओं के प्रति लक्ष्य रखते हुए मुक्त हस्त से व्यय करने लगे। प्रतिदिन विख्यात दार्शनिक, साहित्यकार, चित्रकार, भास्कर यानी संगतराश, धर्माचार्य व वैज्ञानिक गण उनके भवन में आमंत्रित होते थे। पेरिस की विराट प्रदर्शनी व धर्म सभा के उपलक्ष्य में अनेक पंडित गण संसार की सर्वश्रेष्ठ नगरी में एकत्रित हुए थे। स्वामी जी ने लिखा है,
0: कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, समाज सेवक, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, चित्रकार, शिल्पकार, संगतराश, वादक आदि नाना प्रकार के व्यक्तियों का आगमन श्री लिगेट के घर में होता था। उनके घर में होने वाला विराम वार्तालाप, नाना प्रकार के विचारों का विकास, मनमोहक संगीत, विद्वानों की गंभीर चर्चाएं सभी उपस्थित जनों को मुग्ध बना देती थी।
1: लगभग 3 मास पेरिस में बिताकर स्वामी जी 24 अक्टूबर की रात को अपने साथियों के साथ वियना की ओर रवाना हुए। वियना नगरी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों को देखकर हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बल्गेरिया होकर उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल में प्रवेश किया। कॉन्स्टेंटिनोपल नगर को बहुत कुछ प्राच्य भावापन्न देख स्वामी जी प्रसन्न हुए और दूसरे ही दिन अपनी शिष्या कुमारी मैकलियॉट के साथ नगर देखने गए। तोप निर्माता मैक्सिम साहब के दिए हुए परिचय पत्र की सहायता से स्वामी जी का स्थानीय अनेक विख्यात व्यक्तियों से परिचय हुआ।
3: इस प्रकार कुछ दिन आनंद पूर्वक बिताकर स्वामी जी प्राचीन ग्रीक सभ्यता की समाधि भूमि एथेंस में पधारे। एथेंस नगरी का दर्शन कर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिस्र देश की ओर यात्रा की। कायरो शहर पहुंचकर स्वामी जी म्यूजियम में रखी हुई प्राचीन सामग्रियों को उत्सुकता से देखने लगे और अपने साथियों को मिस्र के अतीत इतिहास से फैरो राजवंश का विवरण सुनाने लगे। पिरामिड, स्फिंक्स आदि को देखकर उनके संबंध में विशेष बातें स्वामी जी अपने साथियों को बताने लगे। साथियों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी प्राचीन मिस्र के संबंध में इतनी अधिक बातें जानते हैं कि मानो वे जीवन भर वहाँ के प्राचीन तत्वों की ही चर्चा करते रहे हों।
1: मिस्र में पहुँचने के बाद ही भारत में लौटने के लिए उनका मन अत्यंत आकुल हो उठा। इस बीच समाचार आया, मायावती मठ के संस्थापक श्री सेवियर बहुत बीमार हैं। इस समाचार को पाते ही स्वामी जी ने भारत में लौट आने का निश्चय कर लिया। बंबई बंदरगाह में उतरकर वे कलकत्ते की ओर चले। इस बार अभिनंदन, भाषण, लोक शिक्षा, प्रचार कार्य इत्यादि की ओर उनकी तनिक भी इच्छा न थी और इसीलिए अत्यंत गुप्त रूप से गाड़ी पर चढ़े।
3: सन 1900 ईस्वी के 9 दिसंबर की रात को स्वामी जी अचानक बेलूर मठ में उपस्थित हुए। मठ के सन्यासी और ब्रह्मचारी गण रात के भोजन के लिए बैठे थे। इतने में वहां का माली दौड़ते हुए आया और कहा,
6: बाबा जी, एक साहब आए हैं, अंदर आना चाहते हैं, पर फाटक में तो ताला लगा है। उन्होंने कहा है कि चाबी लेकर आओ और फाटक खोलो जल्दी।
7: अरे वो टंगी तो है वहाँ, ले जाओ।
6: कहाँ पर बाबा जी?
7: वो देखो सामने।
6: हाँ, इस वक्त कौन साहब आए होंगे?
7: अब पता नहीं बाबा जी, अभी देख कर आते हैं।
6: साहब जी कहाँ गए? गाड़ी तो खाली है, साहब है ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ गए, देखता हूँ, बाबा जी को बोलता हूँ।
7: बाबा जी, फाटक तो खोल दिया है पर गाड़ी तो खाली है, साहब उसमें नहीं है।
6: नहीं है तो फिर कहाँ गए?
0: मैं यहाँ हूँ। अरे देख क्या रहे हो, मुझे पहचाना नहीं? अरे कोट पैंट पहना हूँ तो क्या इतना बदल गया हूँ कि तुम लोग पहचान नहीं पा रहे?
7: अरे स्वामी जी आप हैं?
8: वाह, बिल्कुल साहब जैसे लग रहे हैं।
6: पर फाटक तो बंद था, आप अंदर कैसे आए?
0: दीवार फांद कर, बाहर से खाने की घंटी सुनकर लगा अगर जल्दी अंदर ना आऊं तो खाना नहीं मिलेगा। बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। ओ, खिचड़ी पकी है। जल्दी लाओ भाई, जल्दी।
7: आइए, आप ही के लिए है।
1: श्रीयुत सेवियर से मिलने की इच्छा से स्वामी जी यथा शीघ्र भारत लौट आए, परंतु उनसे मिल नहीं सके। बेलूर मठ में पहुंचते ही उन्हें पता चला कि सेवियर 28 अक्टूबर 1900 को ही देह त्याग कर चुके हैं। श्रीमती सेवियर ने उनके पेरिस के पते पर पत्र लिखकर उन्हें यह संवाद भेजा था, परंतु स्वामी जी उस समय पूर्व यूरोप तथा मिस्र का भ्रमण कर रहे थे। पत्र भी उनके पीछे घूमता हुआ 2 माह बाद बेलूर पहुंचा। सेवियर के निधन पर स्वामी जी अत्यंत दुखी हुए थे। ये उनके कई पत्रों से ज्ञात होता है। श्रीमती सेवियर का पत्र मिलने के पूर्व 11 दिसंबर को उन्होंने कुमारी मैकलाउड को लिखा था,
0: परसों रात को मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ, परंतु खेद है कि इतनी शीघ्रता में लौटकर भी कोई लाभ नहीं हुआ। बेचारे कैप्टन सेवियर कुछ दिनों पूर्व ही परलोक गमन कर चुके हैं। इस प्रकार दो महाप्राण अंग्रेजों ने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए आत्मोत्सर्ग किया है। यदि कोई शहीद हो तो यही है।
1: ओली बुल को उन्होंने 15 दिसंबर के पत्र में लिखा,
0: श्री सेवियर अब नहीं रहे, ये सचमुच मेरे लिए एक बड़ा आघात है। न जाने हिमालय के कार्य का भविष्य अब क्या होगा। श्रीमती सेवियर अब भी वहीं हैं और मैं प्रतिदिन उनके पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
3: स्वामी जी ने निश्चय किया था कि वे श्रीमती सेवियर को सांत्वना देने मायावती जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिमालय की गोद में स्थित मायावती के अद्वैत आश्रम का भविष्य क्या होगा, इसका निर्धारण करना भी आवश्यक था। सेवियर दंपत्ति के अर्थ व उत्साह और स्वामी जी के शिष्यों के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो आश्रम पहले अल्मोड़ा में प्रारंभ हुआ और फिर मायावती में स्थानांतरित होकर पिछले 2 वर्षों से भी अधिक काल से सुचारू रूप से चल रहा था तथा जिसका प्रभाव क्रमशः दूर दूर तक फैल रहा था, वो क्या अपनी शैशवावस्था में ही विनष्ट हो जाएगा, या फिर श्रीमती सेवियर अपने पति द्वारा किए गए कर्म को पत्नी का कर्तव्य समझकर पूर्ववत ही चलाती रहेंगी। इसी विचार ने स्वामी जी के मन में एक समस्या का रूप धारण कर लिया था। बाद में श्रीमती सेवियर का पत्र मिलने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी शंका निराधार थी। श्रीमती सेवियर ने अपने पति के वियोग को एक धर्म प्राण सती के समान ही सहन किया था और मायावती का कार्य बंद करने की बात उन्होंने कल्पना तक नहीं की।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। दिन के 12 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है, लेकिन हमारा ये प्रसारण जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज अदब की दुनिया का एक चमकता सितारा हमसे दूर हो गया है। मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके अल्फाज, उनकी गजलें और उनकी संवेदनाएं हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। आज हम नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं। आइए अब आपको बता देते हैं हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे सुनिएगा कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 5:10 से। शरद जोशी पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा 6 बजे से। LPG गैस की बचत और इसका संरक्षण कैसे करें, ये जानकारी सुनिएगा कार्यक्रम आमने सामने में 6:30 पर। सविता भार्गव का कविता पाठ सुनिएगा वागार्थ के अंतर्गत 7 बजे से। 7:30 पर सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम। हिंदुस्तान हमारा ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 8:30 से। उस्ताद अली अकबर खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी सुनिएगा 9 बजे से। और रात्रि 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं तराने आजादी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा के गाए कुछ भजन।

ईश्वर तक जो पहुंचने का मार्ग है वो कितना सहज, कितना सरल और किन किन चीजों की आवश्यकता है इस भजन के माध्यम से।

कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। इस भजन में एक नया भाव है, एक नया विचार है।

जाना था गंगा पार प्रभु, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े जाना था गंगा पार।

तो भगवान राम ने केवट को कुछ देना चाहा, तो केवट को उसे लेने से मना कर दिया। भगवान राम ने केवट से कहा, केवट ले लो, ये तो तुम्हारी मजदूरी है और मजदूरी लेने में कोई शर्म नहीं की जाती। तो केवट ने कहा, प्रभु ये शर्म की नहीं है, तो नियम की बात है। भगवान राम ने कहा, कौन सा नियम? तो केवट ने कहा, प्रभु

को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने केवट से पूछा कि मेरा और तुम्हारा काम एक कैसे। केवट ने कहा प्रभु है, और बोला

भगवान नाम लिखा ही तो नाई और धोबी का मामला है, मेरा और तुम्हारा काम एक कैसे हो गया? केवट ने कहा प्रभु है और बोला

शास्त्रों और पुराणों में यह कहा गया कि भजन सुनना जितना पुण्य का काम है उसे कहीं ज्यादा भजन गाना है। इतने देर से ये गाने वाला पुण्य अकेले मैं कमा रहा हूं, इतने थोड़े से पुण्य के लिए आप लोग क्यों वंचित रह जाए। और वैसे भी आपको ये भजन अच्छा लगा, एक पंक्ति मैं गाऊंगा उसे आप लोग दोहराएंगे तो गाने वाला पुण्य आप लोगों को मिलेगा और सुनने वाला हम लोगों को।

0: क्या बात, आप लोग इतना अच्छा गा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि महिलाएं अच्छा गा रही है पुरुष। अभी फैसला कर लेते हैं, पहले मैं गाऊंगा फिर महिलाएं। तैयार हो जाए महिलाएं।
1: दुनिया चले न श्रीराम के बिना,
0: थोड़ा जोर से।
1: दुनिया चले न श्रीराम के बिना,
0: ये बात।
1: राम जी चले न हनुमान के बिना,
0: क्या बात। कुछ महिलाएं तो गा रही हैं, कुछ अपने पड़ोसी को देख रही हैं कि वो गा रही है। अब पुरुषों की बारी।

0: मीरा बनो तो।
1: ये भजन अभी तक आप लोगों ने कुछ इस तरीके से सुना होगा।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा के गाए कुछ भजन सुने। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी कौशल।

पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वो सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्क शास्त्र की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के आठ आठ आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है, मूर्खों का। बेचारी माया तर्कशास्त्र नहीं पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे, अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। पत्नी जी की कटुकतियां सुननी मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक रही थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है, आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई, बस एक ऐसा ही हार मुझे बनवा दो। दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार बनवाना ही पड़ेगा, ऊपर से बदनामी भी हो। मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है, फिर वही जिद, जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? अरे सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी, सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे, अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपए के 1000 रुपए हो जाएंगे, लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख, ये हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहकर पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहां कहां, दौड़ो दौड़ो, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। लालटेन लाओ भगवान, जरा मेरी लकड़ी उठा देना, मुझसे तो डर के मारे उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहां है पंडित जी, कोई सेंग पड़ी है क्या? नहीं नहीं, खपरेल से उतरे हैं, मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ही ले गया, पहने पहने सो गई थी, मुंह ने गले से निकाल लिया। तुमने हार उतार क्यों ना दिया था? मैं क्या जानती थी कि आज ये मुसीबत गिरने वाली है, हे भगवान। अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो इसलिए कहा करता था, सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात, देखो और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे, घर में कोना कोना देखा, करिया देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, चोर का पता ना था। एक पड़ोसी ने कहा, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा बोला, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। अच्छा और कुछ तो नहीं ले गया? नहीं और कुछ नहीं ले गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं, निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी, भगवान उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। अब गहने का मजा मिल गया ना, हे भगवान, ये अब जस बदा था। कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी, नहीं मानी तो ना मानी, बात की बात में 600 रुपए निकल गए, अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। अब आगे मेरे घर का एक एक तिनका चुनकर ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता, अभी बेचारी ने नया बनवाया था, खूब मालूम है 20 तोले का था। हाँ 20 तोले का ही तो कहती थी, बधिया बैठ गई और क्या। अच्छा कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी, अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी करने जाएगा।
तुम्हारे घर से गई चीज तुम्हें देनी पड़ेगी। इससे उन्हें क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर ले गया, विश्वास करेंगे ही नहीं। तो इतने रुपए कहां से आएंगे? अब कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर की तुमने बहुत बड़ी भूल, भगवान से मंगनी की चीज भी ना देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। अच्छा, पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होके बैठो, पड़ोसन से कह देना घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारी चीज ना लौटा देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किस तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांड कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना, दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा ब्राह्मण के खुले हुए 100 व्यवसायों में उस सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय तक एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियां वर्षफल आदि बनाया करते, प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यावसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि मैंने कहां से विपत्ति सर पर ले ली, कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देख उसे अभी चिंता व्यथित करने लगी। यहां तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वो दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक कर बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी, मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी का हो या ना खुशी का। ये ऋण नहीं है, और क्या है, बदला सही। बदला भी नहीं है फिर क्या? तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब वो हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। सच? हां सच कहती हूं, मेरी कसम, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं। तो तुमने मुझसे कौशल किया था? हां। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? क्या 600 रुपए से ऊपर? बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य को बलिदान करना पड़ा।

0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार रसिक जनों, मैं शाहिर अनंत फंदी। लगभग 270 साल पहले महाराष्ट्र के संगमनेर में जन्मा एक फकीर मंदी से कविता के बहाने दोस्ती हुई, कुछ सीखा, लिखा। लावणी, पौवाड़े, पद कटाव, फटका सब लिखा और गाया। जीवन में कितने फंदे हैं, माया, मोह, धन संपत्ति और क्या क्या, कि सब मुझे झकझोरते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या अजर अमर हूं? ना ना ना, मेरी आत्मा आबसी है सूत्रधार में। जब मुझे पता लगा कि प्रातः स्मरणीय अहिल्याबाई पर नाटक होना है तो मन नहीं माना। मेरी शब्द विलास में डूबी कलम में कीर्तन का रंग उन्होंने ही भरा था। नाच गाने रस रंग से दूर भक्ति के भाव में डुबाया था मुझे महेश्वर में। जीवन में जब कठिनाई हो सरल सत्य पथ नहीं छोड़ना, जीवन में जब कठिनाई हो सरल सत्य पथ नहीं छोड़ना, भटक भटक कर दुख मत पाना, दुनिया से मुख नहीं मोड़ना।
2: साधु साधु, कविता में ऐसा फटका तो बस अनंत फंदी तुम्हारी कलम का जादू है।
1: प्रणाम स्वीकार करें मेरा, अहो भाग्य हमारा। अहिल्याबाई के दरबार के संस्कृत विद्वान और महान वक्ता हमारे बीच हैं, खुशाली राम जी।
2: मालवा की संस्कृति में सुदूर महाराष्ट्र की खुशबू का मिलन सोने में सुहागा मिलने जैसा है।
1: खुशाली राम जी, आपका आना जैसे कि प्राण वायु का झोंका है।
2: अरे इतना महिमा गान भी ठीक नहीं, अगर महिमा गानी है तो देवी अहिल्याबाई का यशगान करो।
1: उनका जीवन ही तो हमारे आज के नाटक की भावभूमि है। इतना लंबा समय काल, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें।
2: उनका बचपन रोमांच से भरपूर था, वहीं से शुरू करें।
1: हाँ, नाम अहिल्या था कन्या का, पुण्य समय अवतरित हुई। नाम अहिल्या था कन्या का, पुण्य समय अवतरित हुई, भक्ति भाव में मन था डूबा, गाथा इनकी कही गई।
2: अरे कविराज जरा रुको, थोड़ा परिचय दे दूं। महाराष्ट्र के जामखेड़ के पास एक गांव है चौढ़ी। यहां मनकोजी शिंदे के यहां 31 मई 1725 को एक कन्या ने जन्म लिया।
1: माता सुशीला ने सोच विचार कर उसका नाम रखा अहिल्या।
2: अहिल्या का अर्थ होता है प्रथम।
1: हाँ, हर काम में सबसे आगे, सारा जीवन वे हर काम में आगे रहीं।
2: घर में संतों की वाणी, अभंग गाए जाते, उसी से अहिल्या के मन में एक कल्याण की भावना ने घर कर लिया।

0: सुनो बेटी, इस गांव के पाटिल मनको जी का घर कहाँ है?
1: जी कहिए, मैं हूँ उनकी बेटी अहिल्या।
0: हम तीर्थयात्री पास के राजवाड़ी गांव के हैं, पालकी लेकर पंढरपुर जा रहे हैं।

0: आपका भोजन, मैं कुछ धानी मुरमुरे भिजवा देता हूँ।
1: वो सब तो साथ में है।
0: तो फिर मैं नींबू की शिकंजी और छाछ का प्रबंध करवाता हूँ।
1: जैसी आपकी इच्छा।
0: और ये चांदी के 11 रुपए हमारे गांव की ओर से विट्ठल देव के मंदिर में अर्पण कर देना। इच्छा तो मेरी भी थी पंडरपुर जाने की, पर खेती में बहुत काम है, क्या करूं। अहिल्या
2: जी। बाबा।
0: अपनी माँ से कहो 1 घड़ा छाछ मंदिर में भिजवा दे।
2: जी, अभी जाती हूँ।
1: आपकी कन्या बहुत गुणवंती है।
0: हाँ, दया भाव बहुत है उसमें, गांव में सबसे लाडली है।
1: झूठ नहीं कहूंगा, तीर्थयात्री हूँ, विट्ठल का भक्त।
0: कहना क्या चाहते हैं आप?
1: मैं कुछ देवीय शक्ति देख रहा हूँ इसमें।
0: अरे आपकी उदारता है, अभी तो 8 वर्ष पूरे किए हैं उसने।
1: जीवन के गुण धर्म उम्र से नहीं आके जाते।
0: तो फिर?
1: ये तो ईश्वर की देन है, जो विधाता ने उसकी झोली में भर दिए है।
0: ये तो मेरा सौभाग्य है।
1: आपकी पुत्री राजरानी होगी।
0: हरी इच्छा शाहू जी, कहां हम साधारण किसान और कहां वो।
2: लीजिए।
1: तुम्हारा भविष्य में देख रहा हूं, माउली हो तुम, माउली
2: जी।
0: आपकी वाणी सच हो।
3: जय भवानी।
4: जय भवानी।
3: मालवा के सुबेदार मल्लार राव जी होलकर पूना की यात्रा पर विश्राम के लिए।
0: अहो भाग्य, अहो भाग्य, चंडिका मंदिर में बहुत स्थान है।
3: आप व्यवस्था करें, मैं सूचना देता हूँ।
5: जय भवानी।
4: जय भवानी।
0: जय भवानी। मैं मनकोजी शिंदे, चौड़ी गांव का पाटिल, प्रणाम और स्वागत करता हूँ आपका।
1: मैं राजवाड़ी गांव का मुखिया डिंडी हूँ, पंढरपुर जा रहे हैं, प्रणाम।
5: क्या नाम है बेटी तुम्हारा?
2: जी, अहिल्या।
5: आशीर्वाद। ये मंदिर में क्या कर रही हो?
2: बहुत से तीर्थयात्री है ना, सेवा कर रही हूँ।
5: सेवा करना अच्छा लगता है तुम्हें?
2: अच्छा, मुझे बहुत आनंद आता है।
5: क्यों?
2: माँ कहती है

0: आप कहाँ हम मैं
1: आप ऐसी शीलवान कन्या के पिता हैं, मैं आपका जीवन धन आपसे मांग रहा हूँ।
0: अहिल्या हमारे परिवार की जीवन ज्योति है।
1: अब वो उसका दिव्य प्रकाश इंदौर के राजमहल को भी आलोकित करेगा।
0: स्वीकार है महाराज, स्वीकार है।
1: अब हम जाना चाहेंगे। ऐसा लगता है इस शुभ कार्य के लिए ही विधाता ने मुझे इस रास्ते भेजा।
0: आपने बड़ी कृपा की महाराज, मैं तो धन्य हो गया।
2: राजा जी, आपने मेरे बाबा को क्यों रुलाया?
1: ये खुशी के आंसू हैं बेटी, तुम हमारे

0: बहू बनकर आओगी। मन को जी आप चिंता ना करें।
1: बेटी के विवाह की चिंता तो होगी ही महाराज।
0: अभी हम पूना जाकर सारी व्यवस्था कर देंगे। आपका घर धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। पेशवा से आपकी मनसबदारी भी तय करवा देंगे। चलें। जय भवानी।
2: जय भवानी।
1: आपकी वाणी सच हो गई महाराज, आपकी वाणी सच हो गई।
3: ये तो होना ही था, बिटिया बड़ी भाग्यशाली है।
1: जी महाराज।
4: देखा खुशाली राम जी, सेवा और विनय भाव से
5: आप संसार जीत सकते हैं।
4: हाँ, इसीलिए कहता हूं सबको, इसीलिए कहता हूं सबको, प्रेम भाव से जीना है। अच्छे जहां विचार मिले उसको मन में पीना है। निंदा निंदा नहीं किसी की करना, निंदा नहीं किसी की करना, बस चोरी से डरना है। सत्कर्मों की छाया में जीवन अच्छा करना है।
5: वाह कविराज वाह, आपने जीवन का सूत्र बता दिया।
4: हमारे वेद पुराण भी यही कहते हैं। अब नाटक आगे बढ़ाएं।
5: बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या हुआ अहिल्या का?
4: होना क्या था, धूमधाम से विवाह हुआ। राजे महाराजे आए और राजसी ठाट से नन्ही अहिल्या पालकी में सवार हो इंदौर आ गई।

0: रानी साहिबा, कैसी लगी हमारी पसंद?
1: बड़ी परख है आपको, कितनी दूर से गुणवंती ढूंढ लाए।
0: सब गणेश जी की कृपा है। अब उसको राजमहल के संस्कार, शिक्षा दीक्षा।
1: कल अहिल्या से बात की, उसकी माँ ने काफी पढ़ाया है घर में, मराठी, संस्कृत, गणित।
0: ये तो अच्छी बात है, पर उसे मोड़ी लिपि सिखाना भी ठीक रहेगा।
1: क्यों, वो क्या राजकाज करेगी?
0: समय किसने देखा है। अरे पेशवा से सारी चिट्ठी पत्री मोड़ी लिपि में होने से सब गुप्त रहता है।
1: मोड़ी की चार लिपि है, अलग अलग।
0: मेरे विचार से रानाड़ी लिपि ठीक रहेगी।
1: ठीक है, कल से उसके लिए अलग पढ़ाने वाले की जरूरत होगी, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी।
2: समय अपनी गति से चलता रहा। अपनी सासू माँ के मार्गदर्शन में अहिल्या की शिक्षा जारी रही।
3: केवल शिक्षा नहीं, राज दरबार के दांव पेंच, राजनीति के सूत्र और सैन्य संचालन के रहस्य भी धीरे धीरे उनकी पकड़ में आने लगे।
2: मल्हार राव कुशल सेना नायक थे और मराठा गुरिल्ला युद्ध के साहसी खिलाड़ी।
3: उनके पुत्र खांडे राव ने भी शस्त्र शिक्षा अपने पिता से पाई।
2: और एकांत में खांडे राव अपनी पत्नी अहिल्याबाई को शस्त्र चलाना सिखाते थे।
3: जामखेड़ के जंगलों में घूमने वाली अहिल्या जल्दी ही सब सीख गई। उसका बचपन अब कहीं दूर जा चुका था और अब वो तैयार थी हर विपत्ति का सामना करने के लिए।
0: कहो सेनापति जी, क्या समाचार है?
4: हुना से बाजीराव जी पेशवा का संदेश आया है। पत्र के अनुसार मालवा का अधिकांश भाग अब आपको दे दिया गया है। सेना रखने का खर्च भी अब आपका 4 गुना बढ़ा दिया गया है।
0: इसका मतलब अब हजारों की सेना हमारे नीचे रहेगी, यानी और अधिक लड़ाइयां, युद्ध।
4: हमारी सेना को पुर्तगालियों से लड़ने वसई जाना होगा।
0: पश्चिम में समुद्र किनारे?
4: जी ठीक कहा। इसके अलावा पत्र में उत्तर भारत की तरफ सैन्य अभियान के कूट संकेत भी हैं।
0: पेशवा को हमारी सेना की बहादुरी पर विश्वास है। अच्छा है, खांडे राव जी भी इन सभी अभियानों में साथ रहेंगे।
4: जी, उन्हें सूचना भेज दी जाएगी।
0: सेना में बहादुर साहसी युवकों की भर्ती की मुनादी करवा दें, आवश्यक व्यवस्था करें।
4: जैसी आज्ञा।
5: अहिल्या, कुछ सुना तुमने?
6: हाँ, सासू माँ कह रही थी उधर राजस्थान, दिल्ली और आगे लाहौर तक जाना।
5: हाँ, रोहिल्या के साथ और मुगलों के साथ भी।
6: कौन कौन जाएंगे आपके साथ?
5: जयप्पा शिंदे, गंगाधर तात्या, तुकोजी राव तो हैं ही, सेना भी बड़ी होगी।
6: कब जाना है?
5: शायद 15 दिन बाद, गणेश चतुर्थी के दिन।
6: महल के गणेश मंदिर में अखंड दीप जलता रहेगा आपके विजय के लिए।
5: और मेरे मन में तुम्हारी याद का दीपक।
2: ये सैन्य अभियान काफी लंबा चला। फतेहगढ़ की लड़ाई में रोहिल्ला और बंगश पराजित हुए। 1752 में सफदरजंग मराठा सेना के साथ आए अहमद शाह अब्दाली से संधि हुई। इसी समय पेशवा का संदेश आया, पूना जाओ, पूना पर आक्रमण हुआ है।
3: वहां से मराठा सेना फिर लौटी और राजस्थान के कुम्हेर किले पर घेरा डाल दिया।
2: पेशवा के छोटे भाई राधोबा, होलकर और सिंधिया की सेना की मदद से राजा सूरजमल को हराना चाहते थे,
3: पर 4 महीने की घेरेबंदी के बाद भी किला जीत ना सके।
2: विधाता कुछ और संकेत दे रहा था। 24 मार्च 1754 को किले से दागे गए तोप के गोले ने

0: अकेले कैसे महाराज? कहाँ है मेरा लाल?
1: हम क्षत्रिय हैं रानी साहिबा, राजकुमार रण में खेत रहे।
0: आपने रक्षा नहीं की उसकी, आप तो समर्थ थे ना।
1: रक्षा तो की, 4 महीने कुम्हेर दुर्ग को घेर करके रखा।
0: ये तो घेरा था, युद्ध तो नहीं?
1: हाँ, हम डेरा डाले हुए थे, पर एक दिन शत्रु ने तोप का गोला दागा जो सीधा खांडे राव के तंबू पर गिरा और
0: वो कर्तव्य की बलि वेदी पर
1: अपना जीवन होम कर बैठा।
0: वीर था मेरा पुत्र, पिछले 10 वर्षों में कितने युद्ध में आपके साथ रहा, हमेशा जीत कर ही आया,
1: और होलकर सेना का ध्वज कभी झुकने नहीं दिया।
2: क्षमा करें महाराज, वंश परंपरा के अनुसार संस्कार की तैयारी हो चुकी है।
1: जी, राजकीय सम्मान का भी ध्यान रखें।
2: जैसी आज्ञा, वैसा ही होगा।
3: महाराज क्षमा करें, कुछ विनय करना है।
1: बोलो बेटी, वैसे तो मैं तुम्हारा अपराधी हूं, अपने बेटे को वापस ना ला सका।
3: आपका कोई दोष नहीं, ये सब विधाता ने रचा है।
1: विधाता का माध्यम हम ही तो है ना।
3: अब मेरा संसार तो उजड़ चुका है।
1: ऐसा ना कहो बेटी।
3: मैं अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा चाहती हूँ।
0: क्या? सती होना चाहती हो?
3: जी महाराज।
0: ऐसा कैसे संभव है? नहीं, ये उचित नहीं।
1: पति के प्रति तुम्हारा अनुराग, इतना प्रेम वंदनीय है, पर सती? नहीं नहीं नहीं।
0: अपने बच्चे मालेराव और मुक्ताबाई के बारे में नहीं सोचा? वे भविष्य है होलकर वंश के।
3: सोचा तो, पर पति के बगैर एक स्त्री का क्या जीवन है?
1: जीवन ईश्वर का अंश है, वो केवल तुम्हारा नहीं, उसके साथ दूसरों का जीवन और कल्याण भी जुड़ा है।
3: कैसे?
1: भूल गई? अपने गांव में कितने प्रेम और सेवा भाव से लोगों की सेवा करती थी।
3: तब मैं अकेली थी।
1: ना ना ना, प्रेम और सेवा भाव तुम्हारे मन से गया नहीं। अब तुम प्रजा के कल्याण की सोचो, तुम्हारे पास साधन है, शक्ति है, अधिकार है।
3: हाँ है तो, पर जीवन में अब आनंद कहाँ?
1: हाँ, विलास अब नहीं है, पर समर्पण का आनंद है।
3: किसे किसे करूं समर्पण? इस व्याकुल मन को?
1: अपनी व्याकुलता इन्हें अर्पित करो, ये शिव हैं। शिव का अर्थ ही है सुंदर और कल्याणकारी, अमंगल का नाश और मंगल का उदय।
3: यदि शिव ही मंगल का मूल है तो मेरा अमंगल क्यों?
1: चित को शांत करो, यह प्रश्न जो तुम्हें दुख दे रहा है स्वाभाविक है, ये तुम्हारी सांसारिक दृष्टि है। मन में झांक कर देखो तो पाओगे कि इस जन्म में जन जन के कल्याण के लिए जो तुम्हारी भूमिका है, ये उसके उदय का संधिकाल है।
3: यानी? मैं समझी नहीं।
1: समझो इसे, जन्म और मृत्यु है क्या? सर्व शिवमय जगतः, इस असार संसार में सब शिवमय है। ये संसार शिवत्व का ही प्रकटीकरण है। शिव इस सृष्टि का शाश्वत तत्व है, सब तत्वों का सार और मूल।
3: अर्थात यहीं से जन्म और इसी में विलय। सर्वम शिवमय जगता, सर्वम शिवमय जगता।
1: संतुलन साधना ही शिवत्व है, लय और प्रलय दोनों शिव के अधीन है। शिव सौम्य भी हैं और रुद्र भी, ये अर्धनारीश्वर हैं, पुरुष और स्त्री का सम्मिलित रूप। वे गृहस्थ भी हैं और वीतरागी भी, ये संतुलन ही कल्याणकारी शिवत्व है।
3: ओम नमः शिवाय चैतन्याय चिदंबराय।
1: ये जीवन ये साम्राज्य शिव को अर्पित करो और उनकी ओर से इस राज्य पर कल्याणकारी शासन करो।
3: जैसी आज्ञा पिताजी। ओम नमः शिवाय।
4: अहिल्या को ढाढ़स बधाकर मल्हार राव पुत्र के अंतिम संस्कार में चले जाते हैं। धीरे धीरे दुख की छाया कम होने लगती है, राजकाज चलने लगता है।
5: अहिल्या सत्संग और भक्ति में अपने दिन काटने लगती है।
4: 20 मई 1766 को आलमपुर में मल्हार राव होलकर का निधन हो जाता है।
5: भालेराव होलकर को सत्ता मिलती है पर अहिल्या बाई की देखरेख में।
4: पर क्रूर काल को यह भी मंजूर नहीं था। बीमार भालेराव भी सत्ता सुख नहीं भोग पाता, उसका देहांत हो जाता है।
5: एक वर्ष के भीतर ही ससुर और पुत्र को खोने के बाद अहिल्या बाई धीरज से राजकाज संभाल लेती है। यही वो परिवर्तन बिंदु है जहां से मालवा की प्रजा अपना उत्कर्ष देखती है।
3: सभी प्रजाजन और गुरुजनों को प्रणाम।
6: रानी माँ, राज्याभिषेक के बाद आपका दरबार में स्वागत है।
3: मैंने अपने पूज्य महाराज मल्हार राव जी को वचन दिया था कि उनके अधूरे काम मैं पूरा करूंगी।
6: ऐसा ही होगा, हम सेवा में आज्ञा करें।
3: महाराज जी ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, अब हम यहाँ अमन चैन चाहते हैं।
7: आसपास के राज्य तो सब शांत है, हाँ पाताल पानी और उधर जंगलों में डाकू गांव के लोगों को तंग कर रहे हैं।
3: आप घोषणा करवा दें, जो वीर उन डकैतों को पकड़ेगा हम अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह उससे करेंगे। पुरोहित जी, हम महेश्वर को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है?
6: शुभ विचार है, नर्मदा का पावन तट और घने जंगल पहाड़ सुरक्षित जगह रहेगी।
7: उधर के आदिवासी भील भिलाले हमारे साथी और मित्र हैं।
3: राजकोष से पैसे की व्यवस्था करें। हाँ, हमारा महल सादगी से बनेगा, वहां से माँ नर्मदा के दर्शन हो ये ध्यान रखें।
4: बहादुर युवा यशवंत राव ने डकैतों को पराजित किया और उसका विवाह मुक्ताबाई से संपन्न हुआ।
5: महेश्वर में अहिल्या बाई ने भगवान शिव का विशाल मंदिर भी बनवाया।
4: विरोधियों ने खूब हल्ला मचाया पर सेना तुकोजी राव के नेतृत्व में रानी के साथ थी। शिव की पूजा शिव का अर्चन, शिव की पूजा शिव का अर्चन और नर्मदा का पावन जल, जनहित में कल्याणी बनकर बनी अहिल्या मात सकल।

0: आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। प्रजाजन अपनी तकलीफ हमें बता सकते हैं।
1: दरबार में मराठी कवि मोरोपंत, शायर अनंतराम भंदी, संस्कृत विद्वान खुशाली राम भी मौजूद हैं।
0: हम महेश्वर को विद्या और संस्कृति का केंद्र बनाना चाहते हैं। आप सभी सहयोग करें।
2: यहाँ की जलवायु वस्त्र साड़ी आदि बनाने के लिए अच्छी है।
0: ठीक है, हम सूरत से कारीगर लाकर यहाँ बसाएंगे, उन्हें उचित आवास और धन देंगे।
3: जी, सैकड़ों परिवारों को काम मिलेगा।
4: संस्कृति विद्यालय और शिक्षण का काम मैं संभालूंगा।
2: रानी माँ, हमारे समाज में माँ बहनों के लिए कोई पाठशाला नहीं है।
0: ये उचित नहीं है। खुशाली राम जी, आप इसकी योजना बनाएं। कहाँ कहाँ महिलाओं लड़कियों के लिए पाठशाला खोल सकते हैं, हम व्यवस्था करेंगे।
5: रानी माँ, जैसे कि हम पंचायतों को अपने क्षेत्र में शासन और व्यवस्था के लिए सुविधा दे रहे हैं, शिक्षा का जिम्मा भी उन्हें ही दे दें।
0: उचित सुझाव है। पंचायतों की सहयोग राशि और आय के लिए जमीन दी जा सकती है।
5: बंदोबस्त अधिकारी इस सारे काम के लिए लगाए जा सकते हैं।
0: मेरे पास लगान और दूसरे करों के बारे में काफी सूचना आई है।
5: असल में आसपास के छोटे राजा जमींदार अपने फालतू खर्चों के लिए हर कभी किसानों पर, व्यापारियों पर, दुकानदारों पर कर लगा देते हैं।
0: ये अत्याचार सब बंद करिए। किसानों व्यापारियों से बात करके लगान और कर की सीमा तय करें, उनका भी इतना हो।

0: राज वैद्य जी, आप योग्य शिष्य भी तैयार करें ताकि उन्हें हम गांव भेज सकें। राशि हम देंगे। मंत्री जी, मजदूरों की मजदूरी के नियम तय करें, कोई बेगार नहीं करेगा, और भूखों के लिए अनाज राज्य के भंडार से दिया जाए।
1: पेशवा का पूना से पत्र आया था अंग्रेजों के बारे में।
0: पेशवा को पत्र में साफ साफ लिख दें, आप बाघ शेर तेंदुओं को तो लड़ाई में मार सकते हैं, पर ये अंग्रेज रीच के समान हैं। जब तक सिर में इनके मर्म स्थल पर ना मारा जाए, ये मरेंगे नहीं। पेशवा अंग्रेजों से दूर ही रहें तो अच्छा।
2: रानी माँ, आज श्रावण सोमवार है, आपके मंदिर जाने की तैयारी कर दूं?
0: हाँ, आज हजारों पार्थिव शिवलिंग बनेंगे।
2: सब व्यवस्था हो गई है?
0: सबको कह दो कि हर पार्थिव शिवलिंग में चावल के 8-10 दाने जरूर रखें,
2: ताकि नर्मदा मैया के जीवों को भोजन मिल सके, यही ना?
0: सभी तत्व शिव में है, उनको पालना है, हम तो केवल साधन हैं।
3: अपना सारा जीवन परोपकार में लगाने वाली पुण्य श्लोका अहिल्याबाई ने सारे देश में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया।
4: आलमपुर में उन्होंने मल्हार राव और कुम्भेर में पति खांडे राव के स्मृति चिन्ह बनवाए।
3: बद्रीनाथ, वाराणसी, अयोध्या, द्वारका, अमरकंटक, बेलूर, चित्रकूट, गंगोत्री, गया, गोकर्ण, हरिद्वार और केदारनाथ आदि अनेक स्थानों पर बने मंदिर उनकी कीर्ति गाथा आज भी सुना रहे हैं।
4: अपनी निजी संपत्ति से बनाए गए ये सभी स्थान उस काल की स्थापत्य कला के भी सुंदर नमूने हैं।
3: मात्र 70 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1795 को लोकमाता अहिल्या शिवलोक को चली गईं।
4: क्या कहें, कितनी कहें उस कल्याणी की यश गाथा। मन थक जाता है, कलम रुक जाती है।
3: 250 वर्ष पुरानी इस कथा में आपको आनंद जरूर मिला होगा। हमें आज्ञा दें, आज करें गुणगान सभी मिले, ऐसी जीवन गाथा का अपने दुख की छाया में उपकार उसी को आता था। जगह जगह पर बने शिवालय, जगह जगह पर बने शिवालय, मंदिर चमके गौरव से, जन जन को सुख चैन मिला, बचे युद्ध के रौरव से, सबके जीवन में मंगल हो, मन में इच्छा दमक रही, मात अहिल्या नारी गौरव ध्रुव तारे सी चमक रही, मात अहिल्या नारी गौरव ध्रुव तारे सी चमक रही।
5: अहिल्या माता की
6: जय हो,
5: अहिल्या माता की
6: जय हो,
5: अहिल्या माता की
6: जय हो।
7: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, मैं हूं कंचन
8: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का नाम है संस्कृति संवाद, और संस्कृति संवाद में आज हम बात करेंगे गाय की महिमा की।

0: क्या याद आता है, एक बच्चे से एग्जाम में गाय पर निबंध लिखने को कहा गया। अब उस बिचारे ने बड़ी मासूमियत से लिख दिया अपनी कॉपी में कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। पर परीक्षक महोदय इतने रहमदिल नहीं थे, उन्होंने भी कॉपी पर नंबर देने के बजाय एक टीप लगा दी कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। खैर, ये तो हुई केवल हास परिहास की बात।
1: श्रोताओं, गाय के अलावा कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भारतीय धर्म, दर्शन, भाषा शास्त्र और अर्थव्यवस्था से इतनी गहराई से जुड़ा हो। ऋग्वेद से ही हम इसके बारे में सुनने लगते हैं और लगातार सुनते चले आते हैं। यहाँ तक आधुनिक काल में भी हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास गोदान गाय पर ही आधारित है।
0: हाँ, इस उपन्यास का नायक हौरी एक स्थान पर कहता है, गौ से ही द्वार की शोभा है, सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। वास्तव में हौरी की आवाज नहीं, यह आवाज तो हर एक भारतीय की है, भले ही वह मजबूरी वश गाय न पाल पाए।
1: आज हम चलते चलते बहुत दूर निकल आए हैं, हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। अब हम गोदान नहीं पढ़ते, हैरी पॉटर पढ़ते हैं। अपने बगीचे के खुशबूदार फूलों को भूलकर प्लास्टिक के फूलों के पीछे भाग रहे हैं। आपको बता दें कि गोदान का अनुवाद विश्व की असंख्य भाषाओं में हो चुका है और देश विदेश के कितने पुरस्कार इसे मिले हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। काश हमारी नई पीढ़ी इसे पढ़े और अपनी जड़ों को समझे।
0: तो चलिए एक बार फिर अपनी जड़ों में झांकते हैं। आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है, सत्तत्व सिंधु क्षेत्र में ऋग्वेद की रचनाएं लिखी जा रही थी। हमारे पूर्वजों के घर में गाय थी और मन में ईश्वर। गाय उनका पेट भी पालती थी और उन्हें ईश्वर से भी जोड़ती थी, इसलिए उनके अधिकतर शब्द गाय से शुरू होते थे। लोग बेटी को दुहिता कहते थे क्योंकि गाय दुहने का काम बेटी ही करती थी।
1: झरोके को गवाक्ष कहते क्योंकि वो उन्हें गाय की आंख जैसा दिखता था। जब किसी चीज की छानबीन और विश्लेषण करना होता तो उसे गवेषणा कहते। गाय का दूध अमृत माना जाता था, इसलिए अमृत का एक पर्यायवाची बना गौरस। जब दो राजा आपस में लड़ते तो उसे गविष्ठी कहा जाता, जिसका मतलब होता गायों की खोज। वजह ये थी कि उस दौर में युद्ध गायों के कारण ही लड़े जाते थे।
0: श्रोताओं, गेहूं का आटा आज हम सब लोग खाते हैं, पर अनाज हमारे भोजन की थाली का इतना अभिन्न अंग है कि इसके बिना हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम। जी हाँ, हमारे पूर्वज इस अनाज को गोधूम कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है गाय का धुआं।
1: इसी तरह जिस गोबर की खाद को आज भी हमारे वैज्ञानिक जमीन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद मानते हैं, वो भी ऋग्वैदिक काल से ही उपयोग में लाई जा रही है। पूरा का पूरा ऋग्वेद गाय की महिमा से भरा पड़ा है। यहाँ तक इस ग्रंथ में एक पूरा का पूरा सूक्त ही गाय को समर्पित है। इसमें एक ऋषि कहते हैं, गौवे सब ऐश्वर्य का मूल है, मेरे लिए गौवे ही इंद्र हैं, गौओं का दूध ही अमृत की पहली घूंट है। हे गौ, तुम निर्बल व्यक्ति को बलवान बना देती हो और श्रीविहीन व्यक्ति को सुंदर। तुम्हारी वाणी कल्याणकारी है, तुमसे हमारा घर कल्याणकारी हो जाता है।
0: दुनिया के सबसे पुराने इस ग्रंथ में तो गाय को देवी कहा गया है और इसकी तुलना अदिति से की गई है, जो देवताओं की माता थी। कई ग्रंथों में इसे लक्ष्मी कहकर भी संबोधित किया गया है, जो सभी प्रकार के धन धान्य को देने वाली है।
1: सचमुच गाय धन और धान्य दोनों ही देती हैं। खेती के लिए अपना बछड़ा और अपने गोबर की खाद देकर वे धान्य देती थीं और धन तो वे स्वयं थीं, बिल्कुल अलाइव करेंसी।
0: जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी उसे उतना ही धनी माना जाता था। आपको तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास कितनी गाय हुआ करती थी, और गाय चराने पर भी उनकी इज्जत कम नहीं होती थी। गाय जब संध्या बेला को जंगल से चरकर वापस आती थी तो उसके खुरों से धूल उड़ती थी जो आसमान में छा जाती थी। और इसलिए संध्या बेला को गोधूलि बेला कहा जाता था।
1: श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने गायों को जितनी इज्जत बख्शी उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। अवतार होकर भी वे गायों को चराने के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते। इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए जिस पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया, दुनिया उसे श्री कृष्ण पर्वत के नाम से नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत के नाम से जानती है।
0: उन्होंने अपना बचपन गोकुल में बिताया, गोप गोपियों के साथ पले बढ़े, खुद भी वे गोपाल कहलाए। यहाँ तक कि मानव तन त्यागने के पश्चात स्वर्ग में भी गाय के नाम से ही उन्होंने अपना लोक बसाया और उसे नाम दिया गोलोक।
1: भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की बात करें तो भगवान शिव का वाहन नंदी कौन है? गाय का बेटा ही तो है। आप किसी भी शिव पार्वती जी के मंदिर में चले जाइए, द्वार पर नंदी जी को प्रणाम करके ही आपको अंदर जाना पड़ेगा।
0: तो श्रोताओं, आप समझ ही सकते हैं कि गाय की जड़ें हमारे जीवन में कितनी गहरी हैं। गोबर व गोमूत्र के बिना कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं होने वाला। चरणामृत में गाय का दूध, घी व दही पड़ना आज अनिवार्य है। यहाँ तक कहा गया है कि गाय के शरीर में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आपने गाय को पूज लिया तो सभी देवी देवताओं को पूज लिया।
1: श्रोताओं, वैसे तो कन्यादान को श्रेष्ठ दान माना जाता है, पर हमारे यहाँ गाय का दान इससे भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो दहेज में उसे गाय देता है। पुरोहित को भी दक्षिणा गाय के रूप में ही दी जाती है।
0: श्रोताओं, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति ने 10,000 गायें दान में दे दी। आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्याओं में गाय दान दी जाती थी, यह भी आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में हमारे देश में दूध व दही की नदियां बहा करती थीं।
1: परलोक में भी गाय ही इंसान को ताड़ती थी, इसीलिए मृत्यु के वक्त गोदान करना अनिवार्य माना जाता था। जिसके पास गाय खरीदने के लिए पैसा न होता वो प्रतीकात्मक गोदान करता। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से ये कुछ पंक्तियां हम आपको सुनवा रहे हैं।
0: हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो और गोदान करा दो। दादा चले, और भी कई आवाज आई। हाँ हाँ, गोदान करा दो, यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी 20 आने लाई थी और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में गाय नहीं है, ना बच्चिया है, ना पैसे हैं। ये पैसे हैं और यही इनका गोदान है।
1: चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से लौटते हैं ऋषि मुनियों की दुनिया में। जब खेती का आधार गाय, सेहत का आधार गाय, पूजा का आधार भी गाय, करेंसी तो वो भी गाय, संपत्ति गाय, इस दुनिया में गाय और उस दुनिया में भी गाय। नतीजा ये हुआ कि गाय को अघन्या कहा गया, अर्थात इस प्राणी की हत्या करने की मनाही है।
0: आधुनिक काल की बात करें तो महात्मा गांधी ने गौ संस्कृति की जबरदस्त वकालत की है। वे कहते हैं, मैं गाय की पूजा करता हूँ, इसकी पूजा के लिए अगर पूरे संसार से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। गाय धरती से भी अधिक महान है, यह करोड़ों भारतीयों की माँ है।
1: लेकिन जैसे जैसे कृषि का यंत्रीकरण हुआ, गाय का महत्व कम होता गया। लोग बैलों की जगह ट्रैक्टर और मशीनें इस्तेमाल करने लगे, दूध के लिए भैंसे पाली जाने लगी और किसान गोबर की खाद को भूल कर केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ झुकने लगे।
0: शुरू शुरू में यह ग्रीन रेवोल्यूशन सबको बड़ी अच्छी लगी। पैदावार बढ़ने लगी, किसानों की आमदनी बढ़ने लगी, अनाज के भंडार भरते चले गए। लेकिन आज इसने हमारे माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने मिट्टी को बर्बाद करके रख दिया है। कीड़े मकोड़े व बीमारियों से फसलों को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे की तरफ उतरता जा रहा है।
1: वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि अगर यही दौर चलता रहा तो एक दिन हम खेती से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया जा रहा है, एवरग्रीन फार्मिंग। इसमें खास बात यह है कि जानवर और खेती का रिश्ता फिर से बहाल करना होगा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, और आज हम चर्चा कर रहे हैं गाय की महिमा की, और अब हम बात करेंगे भारत में गौ हत्या पर कानून के बारे में। श्रोताओं, भारत में गौ हत्या हमेशा से ही बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। अगर 1857 की क्रांति को आप याद करें तो सिपाहियों की बगावत का एक प्रमुख कारण यही था कि राइफल की कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।
1: आज के वक्त की बात करें तो हमारे यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश सहित 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है।
0: इतिहास की बात करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुगल शासक जो कि मुसलमान थे, उन्होंने भी गोवध को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा था। इसी तरह मैसूर के सुल्तान हैदर अली व टीपू ने भी अपने राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी लगा रखी थी। यहाँ तक कि जो लोग गाय मारते थे या गाय का मांस खाते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे।
1: श्रोताओं, ये तो भारत की बात हो रही है, भारत के बाहर की तस्वीर कुछ अलग ही है। आप ये सोचने की भूल ना करें कि दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है जो गाय की रक्षा को लेकर सजग है, बल्कि नेपाल तो हमसे भी एक कदम आगे है। इस देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी है।
0: पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर गाय का मांस खाना पाप माना जाता है। खास करके यहाँ के बौद्ध लोग तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, 1961 में इस देश में कानून बनाकर गौ हत्या को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
1: ज़ोरास्टर लोगों में कहा जाता है कि धरती की आत्मा गाय के भीतर होती है और किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं है कि इसके साथ बुरा बर्ताव करे। श्रोताओं, जिस तरह हमारे यहाँ वेद पवित्र हैं, वैसे ही पारसियों में अवेस्ता। इस ग्रंथ में कहा गया है कि गौमूत्र सभी चीजों को शुद्ध कर देता है, सभी तरह की बीमारियों के लिए ये रामबाण है।
0: चीन के लोगों की बात करें तो वहाँ कहा जाता है कि यहाँ के लोग सब कुछ खा सकते हैं, यहाँ तक कि सांप, छछुंदर, कुत्ते, बिल्ली भी। पर आपको अचरज होगा कि पुराने जमाने में चीन में गाय को मारना सर्वथा वर्जित था। इस संबंध में यहाँ का जनमत इतना प्रबल था कि राजा लोग भी गाय का मांस खाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे।
1: जापान की बात करें तो पुराने जापान में भी गाय का मांस खाने की मनाही थी।
0: श्रोता, गो संस्कृति प्राचीन मिस्र का भी अंग रही है। वजह यह थी कि इसे हाथोर देवी का पवित्र प्रतीक माना जाता था।
1: श्रोताओं, आपने कई बार सुना होगा कि एक वृक्ष को काटने से उतना फायदा नहीं होता जितना उसके लगे रहने से होता है। ये बात वास्तव में गाय के संदर्भ में भी अक्षरशः सत्य है।
0: श्रोताओं, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब व्यक्ति का स्वभाव काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि वह क्या खाता है। शराब पीने वाला तामसिक हो जाता है और वह तमाम तरह के बुरे काम में लग जाता है। लेकिन गाय के दूध की विशेषता यह होती है कि वह सात्विक प्रवृत्ति प्रदान करता है, और यही कारण है कि गाय के दूध से बनी चीजों के वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होते हैं।
1: श्रोताओं, कहावत मिलती है कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर जाए, गाय ही उसकी माता होती है। मतलब जिस तरह एक माँ अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही गाय भी उसे पालती है, क्योंकि भैंस का दूध ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे का नाजुक डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ठीक से पचा नहीं पाता।
0: श्रोताओं, गाय के दूध के संबंध में एक बात ध्यान में आती है, वह यह कि इसका दूध हल्का सा पीलापन लिए होता है, और यहाँ तक कि घी भी। इसके विपरीत भैंस का दूध घी सफेद होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है क्रोटीन, वही क्रोटीन जो गाजर में मिलता है। श्रोताओं, कहते हैं कि गाय का दूध बल, बुद्धि व स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है, जबकि भैंस का दूध मोटापा व सुस्ती। ज्यादा कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन दोनों जानवरों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। अरे भाई, जैसा जानवर होगा वैसा ही तो दूध होगा। आप गाय को जरा आवाज देकर देखिए, फौरन उसका सिर ऊंचा नीचा होने लगेगा यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। लेकिन भैंस को बुलाइए, पहले तो वह हिलेगी नहीं, और किसी तरह से हिल भी गई तो रिएक्शन इतना स्लो होगा आप खींच उठेंगे। तभी तो वही पुराना मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी गुर्राए। गाय की ही तरह इसका बछड़ा भी बेहद फुर्तीला होता है, पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता है, पर भैंस का पाड़ा आप खुद जानते हैं कितना सुस्त होता है।
1: श्रोताओं, यूं तो किसी भी प्राणी के मलमूत्र को खाद में बदला जा सकता है और उससे मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गाय का गोबर इस मायने में सबसे अलग है कि इसमें कीटाणुनाशी शक्ति होती है। इसलिए पुराने जमाने से ही गाय के गोबर से घर लीपने की परिपाटी रही है।
0: गाय का गोबर जब जलाया जाता है तो इससे उठने वाला धुआं वातावरण में फैले जर्म्स को मार डालता है। कहा जाता है कि गाय का गोबर एंटी रेडियो एक्टिविटी, एंटीसेप्टिक व एंटी थर्मल प्रॉपर्टीज वाला होता है। इसलिए जब घर की फर्श दीवारें से लीपी जाती हैं, तो उस घर में रहने वाले लोगों की न केवल बीमारियों से रक्षा होती है बल्कि घर का वातावरण भी शीतल बना रहता है।
1: एक नई खोज में बताया गया है कि 1984 में जब भोपाल गैस कांड हुआ था तो जो लोग गाय के गोबर से लिपे घरों में रहते थे वे बच गए थे। सुनने में तो ये भी आया है कि भारत और रूस में आज भी एटॉमिक पावर सेंटर्स को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की शील्डिंग की जाती है।
0: रूस के आसपास के इलाके के लोग तो इस मामले में इतने जागरूक हैं कि किसी परमाणु दुर्घटना के समय रेडिएशन से अपनी हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए वे अपने घरों को गाय के गोबर से रेडिएशन प्रूफ बना लेते हैं। यहाँ तक कि नासा के मानव युक्त स्पेस कैप्सूल को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की एक पतली कोटिंग की जाती है।
1: गाय के गोबर में रक्षा करने का जो गुण पाया जाता है उसने इसे धार्मिक महत्व का बना दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों में भी अगर यज्ञ वेदिका बनानी हो तो पहले उस जगह को गोबर से लीप कर पवित्र बनाया जाता है। श्रोताओं, यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, गोबर से लीप कर पवित्र बनाया जाता है, तो क्या बात होगी उस प्राणी की जिसका मल तक इतना पवित्र हो।
0: एक वाक्य सुनाते हैं आप। बनारस के पास रामनगर की एक पुरानी रियासत थी। एक बार राजा के कोई संतान न हुई। प्रश्न यह उठा कि उत्तराधिकार किसे दिया जाए। अंत में सोचा गया कि इसके लिए लोगों की परीक्षा ली जाए। कुछ लोगों को भोजन पर बुलाया गया। भोजन के बाद हाथ धोने की जगह पर एक टोकरी में साबुन और दूसरी टोकरी में गोबर रख दिया गया। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा निकला जिसने गोबर से हाथ धोए। आप समझ गए होंगे कि गद्दी उसे ही मिली थी।
1: गोबर गैस प्लांट हमारे किसानों के लिए कितने फायदेमंद है ये तो आप जानते ही हैं। ये उनके घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं और खेतों में सोना उगाते हैं। इस संबंध में हाल ही में एक आईटी कंपनी द्वारा एक शोध कराया गया। इस शोध में पाया गया कि 10,000 गायों की क्षमता वाली डेयरी में हर साल 2,00,000 मीट्रिक टन खाद पैदा की जा सकती है और हर दिन 3 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है।
0: गाय के एक अन्य प्रोजेक्ट गोमूत्र की बात करें तो यह हर तरह की बीमारियों के लिए कितना फायदेमंद होता है हम बार बार सुनते आ रहे हैं। कहते तो यहाँ तक हैं कि अगर टीबी का मरीज एक निश्चित समय तक गाय की बच्चे के मूत्र का सेवन करे तो उसकी टीबी जड़ से उखड़ जाती है। अहमदाबाद के पास एक रिसर्च लैब में तो गोबर व गोमूत्र का इस्तेमाल करके सीरीज ऑफ मेडिसिन बनाई जा रही है। इस लैब का दावा है कि सांसों की दुर्गंध से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां इन दवाओं से ठीक हो सकती हैं। यहां काऊ प्रोडक्ट के रूप में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मॉस्किटो क्वाइल से लेकर के अनगिनत आइटम्स बनाए जा रहे हैं।
1: इस लैब के कुछ शोध नतीजे हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। गाय के ताजे गोबर पर नंगे पांव चलें, ये बैक्टीरिया मारता है और घाव भरता है। गाय का सूखा गोबर त्वचा पर मलने से डेड स्किन निकल जाती है और रक्त संचार तेज हो जाता है। एक 42 वर्षीय गृहिणी अपने ब्लॉग में लिखती हैं, मेरा विश्वास कीजिए, अपने लीवर की बीमारी में मैंने एलोपैथ आजमाया, होम्योपैथ आजमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, पर आज गौमूत्र के कारण मैं स्वस्थ हूँ।
0: कहते हैं जो लोग गाय दोहने का काम नियमित रूप से करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। कारण यह है कि गोमूत्र के वेपर उनकी सांसों के माध्यम से शरीर में पहुंचते रहते हैं।
1: प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि गाय की पीठ पर सूर्य केतु नामक एक नाड़ी पाई जाती है जो नेगेटिव रेडिएशंस को सोख लेती है और वातावरण को स्वच्छ रखती है। मतलब ये कि जितनी अधिक गाय उतना स्वच्छ वातावरण।
0: गाय के घी की भी बड़ी महिमा मिलती है। आपने भी सुना होगा कि तमाम तरह की बीमारियों में गाय का पुराना घी इस्तेमाल होता है। कहते हैं जब हवन में गाय के घी की आहुति दी जाती है तो इससे उठने वाला धुआं धरती के ओजोन परत को मजबूत करता है। श्रोताओं, आप सुनते होंगे कि इस समय ओजोन परत को हो रहे नुकसान से हमारे साइंटिस्ट कितने चिंतित हैं।
1: हाल ही में मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से हुई कि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। हालांकि किसी सर्टिफाइड लैब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, पर अगर ऐसा है तो ये बहुत ही विलक्षण बात है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद।
0: श्रोताओं, आज तो हमने ठान ही लिया है कि गाय से पूरा परिचय आपका कराकर ही छोड़ेंगे। तो लीजिए हाजिर है गाय के संबंध में कुछ और ऐसी जानकारियां जो शायद आपने अभी तक न सुनी हो।
1: गाय सीढ़ी चढ़ तो सकती है पर उतर नहीं सकती, और इसकी वजह यह होती है कि उसके घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते। दूसरी जानकारी, गायों में सूंघने की क्षमता जबरदस्त होती है। वे लगभग 10 किलोमीटर दूर तक की चीजों को सूंघ लेती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर दूध की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध होलस्टीन नस्ल की गाय ही देती है। वैसे भी दुनिया में 90% दूध गायों से ही प्राप्त किया जाता है।
0: एक गाय साल भर में औसतन 10,000 टन गोबर की खाद प्रदान करती है। कहा जाता है कि अगर गाय न रहती तो आज जंगल देखने को न मिलते। आप अचरज में पड़ गए ना। दरअसल जलाऊ ईंधन की भारी पूर्ति गोबर के उपलों से हो रही है, नहीं तो लोग जलाऊ लकड़ी के लिए अब पूरे के पूरे जंगल साफ कर चुके होते। गाय औसतन 25 साल जिंदा रहती हैं, लेकिन शर्त यह है कि लोग उन्हें जीने दें। श्रोताओं, वैसे तो हर देशभक्त को अपना देश दुनिया में सबसे न्यारा लगता है, पर भारत के संदर्भ में यह एक सच्चाई है। लोग कहते हैं कि बरसात होने पर भारत की मिट्टी में जो सौंधी सौंधी खुशबू उठती है वैसी विदेशों में नहीं उठती।
1: गायों की बात करें तो दुनिया में दुधारू गायें एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन उन्हें देखकर एक सुस्ती का एहसास होता है। इसके उलट भारत की गायें काफी फुर्तीली होती हैं। उनके देखने, समझने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बड़ी ही जबरदस्त होती है। शायद इसीलिए कहावत है कि भैंस का दूध वजन बढ़ाता है जबकि गाय का दूध दिमाग।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद, और आज हम चर्चा कर रहे थे गाय की महिमा की। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
0: अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
0: अगले सप्ताह कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओ, आइए आपको तानसेन समारोह 2013 में इमदत खानी घराने के उस्ताद इमरत खां के बेटे निशाद खां का सितार वादन सुनवाते हैं। इनकी संगत की है फारुकाबाद घराने के उस्ताद करामतुल्ला खान के सुपुत्र उस्ताद साबिर खान ने।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने सेट पे ट्यून इन रेडियो आजाद हिंद को देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओ आइए आपको तानसेन समारोह 2013 में इमदत खानी घराने के उस्ताद इमरत खां के बेटे निशाद खां

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, आइए आपको तानसेन समारोह 2013 में इमदत खानी घराने के उस्ताद इमरत खान के बेटे निशाद खान का सितार वादन सुनवाते हैं। इनकी संगत की है फारुखाबाद घराने के उस्ताद करामतुल्ला।

अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। श्रोताओं, हमारी दोपहर कालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। शाम के ठीक पांच बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं अग्नि, छंद है अत्यष्टि और अतिध्रति।
4: सूक्त 127। अग्निम होतारम मन्ये दासवंतम वसुम सूनुम सहसो जातवेदसम विप्रम न जातवेदसम य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा घृतस्य विभ्राष्टिमनुवष्टि शोचिषा जुह्वनस्य सर्पिषः। दैवी गुणों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म के संपादक जो अग्निदेव देवताओं के समीप जाने वाली ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से प्रदीप्त और विस्तार युक्त होकर अनवरत घृतपान की अभिलाषा करते हैं, उन देव आवाहन करता दान करता सबके आश्रय भूत अरणि मंथन से उत्पन्न शक्ति के पुत्र सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के सदृश अग्निदेव को हम स्वीकार करते हैं। यजिष्ठम त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठ मंगिरसाम विप्र मन्मभिर विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः परिज्मानमिव द्याम होतारम चर्षणीनाम शोचिष्केशम वृषणम यमिमा विषः प्रावन्तु जूतये विषः। हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्निदेव, हम यजमान उत्तम विचारकों के लिए मननीय मंत्रों द्वारा यज्ञ में आपका आवाहन करते हैं। ये प्रजाएं अपनी रक्षा के लिए श्रेष्ठतम तेजस्वी सूर्य के सदृश गतिमान यज्ञ निर्वाहक एवं प्रदीप्त किरणों से युक्त अग्निदेव को तुष्ट पुष्ट करती हैं। स ही पुरु चिदोजसा विरुक्मता दिद्यानो भवति द्रुहंतरः परशुर्न द्रुहंतरः वीडु चिदस्य स्मृतौ श्रुवद वनेव यत्स्थिरम् निष्हमाणो यमते नायते धन्वा सहा नायते। वे अग्निदेव तेजोमयी सामर्थ्य से अत्यंत दीप्तिमान शत्रुओं में भय का संचार करने वाले तथा फरसे के तुल्य द्रोहियों का नाश करने वाले हैं। धनुर्धारी अचल योद्धा की तरह जिनके प्रभाव से बलवान शत्रु भी पराजित हो जाते हैं एवं अनुशासन स्वीकार करते हैं, उन अग्निदेव के संयोग से अत्यंत कठोर पदार्थ भी खंड खंड हो जाते हैं। दृढ़हा चिदस्मा अनु दुर्यथा विदे तेजिष्ठा भिररणिभिर् दाष्टवसे अग्नये दाष्टवसे प्र यः पुरूणि गाहते तक्षद्वनेव शोचिषा स्थिरा चिदन्ना निरीणात्योजसा निस्थिराणि चिदोजसा। जैसे ज्ञानी पुरुषों को धन देने का विधान है, उसी प्रकार अति सुदृढ़ मनुष्यों द्वारा अपने संरक्षण के निमित्त अग्नि में हविष्यान्न देने पर अरणि मंथन से प्रकट होने वाले अग्निदेव अपनी प्रचंड ज्वाला से प्रदीप्त होकर उसे ऐश्वर्यों से परिपुष्ट करते हैं। जिस प्रकार अग्निदेव असंख्य वनों में प्रविष्ट होकर उन्हें जला डालते हैं तथा अपने तेज से अन्नों को पकाते हैं, वैसे ही वे अपनी तेजस्विता से सुदृढ़ वैरियों को भी धराशायी कर देते हैं। तमस्य वृक्षमुपरासु धीमहि नक्तम यह सुदर्शतरो दिवातरादप्रायुषे दिवातरात् आदस्यायुर्ग्रभ्रमण वद्वीरुशर्म न सूनवे भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरा अग्नयो व्यन्तो अजराह। हम अग्निदेव के निमित्त यज्ञीय हविष्यान्न अर्पित करते हैं, जो दिन की अपेक्षा रात्रि को अधिक रमणीय लगते हैं। जैसे पुत्र के लिए पिता द्वारा सुखदायक निवास दिया जाता है, वैसे ही दिन की अपेक्षा रात्रि में प्रखर तेजस्वी दिखाई देने वाले अग्निदेव के निमित्त हवियां समर्पित करें। ये अग्नि ज्वालाएं भक्त या अभक्त दोनों का भेद किए बिना प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करती हैं। हविष्यान्न ग्रहण करने वाले अग्निदेव सदा जरा रहित रहते हैं और यजमान को भी अजर अर्थात प्रखर बना देते हैं। स हि शर्धो न मारुतम तु विश्वणि रप्नस्वती शूर वराविष्ट निरार्तना स्विष्टनिः आदध्वा न्याददिर्यज्ञस्य केतुर्हणा अध स्मास्य हर्षतो हृषीवतो विश्वे जुषंत पंथाम नरह शुभे न पंथाम। पूजनीय अग्निदेव यज्ञीय कर्मों उपजाऊ क्षेत्रों और रण क्षेत्रों पर सभी जगह वेगवान वायु की तरह ही ऊंचे स्वर से गर्जना करते हैं। यज्ञ की ध्वजा रूप पूजनीय अग्निदेव हवियों को स्वीकार कर हविष्यान्न ग्रहण करते हैं। निज की प्रसन्नता के साथ दूसरों के लिए भी आनंदप्रद इन अग्निदेव के मार्ग का संपूर्ण देव उसी प्रकार कल्याण प्राप्ति हेतु अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य कल्याण की इच्छा से सन्मार्ग गामी होते हैं। द्विता यदीम कीस्तासो अभिद्यवो नमस्यन्त उपवोचन्त भृगवो मथनन्तो दाशा। भृगवः अग्निदिशे वसूनाम शुचिर्यो धरणिरेषाम प्रियाम अपि धीम वर्णिशिष्ट मेधिर आ वनिशिष्ट मेधिरह। जब भृगुवंश में उत्पन्न ऋषियों ने मंथन द्वारा इन अग्निदेव को प्रकट किया और स्तोत्रकर्ता तेजवान तथा विनयशील भृगुओं ने दो प्रकार से उनकी प्रार्थनाएं की, तब परम पावन धारण करने योग्य ज्ञानी अग्निदेव ने प्रेम पूर्वक अर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण किया। वे ज्ञानी अग्निदेव धनों पर प्रभुत्व स्थापित करते हुए निश्चित ही हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करेंगे। विश्वासाम त्वा विशाम पतिम हवामहे सर्वासाम समानम दंपतिम भुजे सत्यगिर वाहसं भुजे अतिथिम मानुषाणाम पितुर्न यस्यासया अमी च विश्वे अमृतास आवयो हव्या देवेश्वा वयः। हम संपूर्ण प्रजा के रक्षक, समदर्शी, गृहपालक, सत्यवादी, अतिथि रूप अग्निदेव को उपभोग्य सामग्री के निमित्त आवाहित करते हैं। उन अग्निदेव के निकट हविष्यान्न पाने के लिए संपूर्ण देव उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार पुत्र पिता के पास अन्न सामग्री की प्राप्ति हेतु जाते हैं। इसी भाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। त्वमग्ने सहसा सहन्तमः शुष्मिन्तमो जायसे देवता तये रैर्न देवता तये शुष्मिन्तमो हि ते मदो द्युम्निन्तम उत क्रतुः अधस्मा ते परि चरन्त्यजर सृष्टिवानो नाजर। हे अग्निदेव, आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं के पराभव करता और अति तेजस्वी रूप में ही प्रकट हुए हैं। जैसे देव यज्ञों के निमित्त धन प्रकट होता है, वैसे ही अग्निदेव यज्ञीय संरक्षण के लिए प्रादुर्भूत हुए हैं। आपकी प्रसन्नता अति बलप्रद और कर्म प्रखर तेजस्वी हैं। वे अविनाशी अग्निदेव इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण सभी मनुष्य दूत रूप में आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। वो महे हसा सहस्वत उषर्बुधे पशुषे नान्ये स्तोमो बभूत्वग्नये प्रतियदीम हविष्मान विश्वासु क्षासु जोगुवे अग्रे रेभो न जरत ऋषूणाम जूर्णिर्होत ऋषूणाम। हे साधको, शत्रु पराभव करता प्रभात वेला में जागरणशील अग्निदेव को आपके महिमामय स्तुतिगान उसी प्रकार से प्रसन्नता प्रदान करें जैसे उदार मना पशुधन आदि का दान देने वाले मनुष्य को मनुष्यों द्वारा की गई स्तुतियां प्राप्त होती हैं। यज्ञ संपादक सभी जगह इसी भाव को दृष्टिगत रखकर प्रार्थनाएं करते हैं। स्तुतिगान में कुशल होता सभी देवों में सर्वप्रथम इन अग्निदेव को उसी प्रकार प्रशंसित करते हैं जिस प्रकार चारण गण धनवानों की प्रशंसा करते हैं। स नो नेदिष्ठम ददृशान आभराग्ने देवेभिः सचनाः सुचेतुना महो रायः सुचेतुना महि शविष्ठ नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्यै महि स्तोत्रिभ्यो अघवसंतुर्वीर्यम मथिरुग्रो न शवसा। हे अग्निदेव, समीप से दीप्तिमान दिखाई देने वाले आप देवताओं द्वारा पूज्य हैं। आप कृपा पूर्वक श्रेष्ठ धन से हमें परिपूर्ण करें। हे सामर्थ्यवान अग्निदेव, आप दीर्घायुष्य के लिए उपभोग्य पदार्थों को प्रदान करके अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं का संहार करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: नब्बे दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आज आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल से सूक्त 127 का वाचन। शाम के 5:17 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

ईश्वर की शक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, जो असीम और सर्वव्यापक सत्य है। इस समय बुद्धि की प्रधानता के कारण हम ईश्वरीय प्रेम के प्रति अधिक जागरूक नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि केवल तर्क वितर्क या मूल्यांकन ही कर सकती है।

प्रेम जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अविचल शक्ति है। किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा सुखी और संतुलित जीवन बिताने के लिए प्रेम ही सबसे ज़्यादा सही माध्यम है। प्रेम ही वह माध्यम है जो भक्ति उत्पन्न करता है और प्रभु के पास भक्त को लेकर जाता है।

ईश्वर सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, अतः वह हम सब में भी विद्यमान है, क्योंकि हम भी सृष्टि का ही हिस्सा हैं। मनुष्य अपना पूरा जोर ईश्वर को अपने से बाहर खोजने में लगा देता है, इसलिए स्वाभाविक है कि अपने अंदर उसकी खोज के बारे में हम कभी विचार नहीं करते।

जिस सृष्टिकर्ता को, जिस आराध्य को हम बाहर खोजते हैं, वह कहीं बाहर नहीं मिलता। उसे हमारे शरीर के अंदर ही हमें अनुभव करना होगा।

और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। संध्या के ठीक 6 बजे हैं

श्रोताओं, उर्दू अदब के शहनशाह और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बशीर बद्र हमारे बीच नहीं रहे हैं। रेडियो आज़ाद हिंद उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो आज़ाद हिंद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदमी के पास अगर दो विकल्प हों कि या तो वो बड़ा अफसर बन जाए और खूब मजे करे, या फिर छोटा मोटा लेखक बनकर अपने मन की बात कहने की आजादी अपने पास रखे, तो भाई बहुत बड़े अफसर की तुलना में छोटा सा लेखक होना ज्यादा मायने रखता है। लेखक के पक्ष में एक बात और जाती है कि उसके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। हम कभी नहीं कहते कि स्वर्गीय कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं या स्वर्गीय प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे। लेखक सदा जीवित रहता है, ये विचार थे अपने समय के अनूठे व्यंग्यकार शरद जोशी के। और सच है कि व्यंग्य को हंसने हंसाने की हास्यास्पद कवायद नहीं, बल्कि जन पीड़ा की तार्किक अभिव्यक्ति के रूप में लोगों के समक्ष रखने वाले महान व्यंग्यकार शरद जोशी आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। उनके तीखे शब्द हमेशा लोगों को जगाते रहेंगे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी का नाम शामिल है। उनकी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों की बेबाक तस्वीर नजर आती है। अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ सटीक शब्दों में व्यक्त किया। वो भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में मंच पर गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। फिर शरद जोशी 25 सालों तक कविता के मंच से गद्य पाठ करते रहे। वो एक स्थापित व्यंग्यकार तो थे ही, इसके साथ ही उन्होंने उपन्यास लिखे, व्यंग्य नाटक लिखे, उन्होंने अनेक टीवी धारावाहिक लिखे और इसके साथ ही कई फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। उनकी भाषा शैली और प्रस्तुतीकरण का ढंग विषय के मुताबिक होता, जो सीधे उनके पाठकों या दर्शकों के मन में उतर जाता था। सामाजिक विसंगतियों को लेकर एक बेचैनी उनके मन में हमेशा रही, जो उनके पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं को आंदोलित कर देती थी।

शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास जोशी और माता जी का नाम शांति जोशी था। उनका परिवार मूलतः गुजरात का रहने वाला था, जो बाद में मालवा में आकर बस गया था। शरद जोशी के पिता रोडवेज में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। चूंकि पिता का स्थानांतरण होता रहता था, इसलिए शरद जोशी का बचपन मऊ, उज्जैन, नीमच, देवास और गुना जैसे छोटे शहरों में बीता। दौलतगंज मिडिल हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और बाद में इंदौर के होलकर महाविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा हासिल की। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। अपने शिक्षा काल से ही वो लेखन से जुड़ गए थे, यहां तक कि अपने लेखन से प्राप्त आय से ही उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। सन 1955 में शरद जोशी आकाशवाणी इंदौर में पांडुलिपि लेखक के रूप में कार्य करने लगे थे। उसके बाद वो मध्य प्रदेश सूचना एवं प्रकाशन विभाग में जनसंपर्क अधिकारी रहे। यहां रहते हुए उनकी पहचान एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार के रूप में हो चुकी थी। कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और स्वतंत्र लेखन को ही अपनी आजीविका के साधन के रूप में चुना। किसी के बंधन में बंधकर रहना उनके स्वभाव में नहीं था, इसीलिए उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर पत्रकारिता की ओर रुख किया। शरद जोशी ने अपने लेखकीय जीवन का आरंभ कहानियों से किया था। 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी रचनाएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी थीं। दरअसल शरद जोशी अपने आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस वजह से उनके अति घनिष्ठ मित्र और हितैषी भी उनसे दूर हो गए। मतभेद हुए तो अत्यंत आत्मीय संबंध भी कड़वाहट में बदल गए। लेकिन शरद जोशी ने सदा वही कहा और वही किया जो उन्हें सही लगता था। अपनी आलोचना से खिन्न होकर ही उन्होंने व्यंग्य लिखना आरंभ किया था। दुनिया के अखबारी इतिहास में ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलेंगे कि किसी लेखक के स्तंभ को पढ़ने के लिए पाठक विशेष रूप से किसी अखबार को खरीदें। ये सौभाग्य शरद जोशी के हिस्से था। उनका रोजाना स्तंभ प्रतिदिन अत्यंत लोकप्रिय था। ये कॉलम अखबार के आखिरी पन्ने पर छपता था। पाठकों को इस कॉलम का बेसब्री से इंतजार रहता। इसे पढ़ने के लिए वो विशेष रूप से अखबार खरीदते और अखबार पढ़ने की शुरुआत अंतिम पृष्ठ से करते। सन 1960 के बाद का समय हिंदी साहित्य में विरोध के स्वर की स्वीकार्यता का दौर था। इससे पहले विरोध को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी। शरद जोशी ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरी चोट की। लोगों को लगा कि जो बात वो नहीं कह पाते वो इन व्यंग्यों में कही गई है। उन्होंने राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। शरद जोशी ने लोगों को किसी भी घटना को देखने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने शालीन भाषा में भी अपनी बात बहुत बारीकी से रखी, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। शरद जोशी ने जनता की समस्याओं को जनता की भाषा में जनता के सामने अनोखे ढंग से रखा। उनकी कलम की संवेदना ने जन जन के मन को छू लिया।

शरद जोशी एक आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। तमाम रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने इरफाना सिद्दीकी से विवाह किया था। इरफाना एक पढ़ी लिखी उदार विचारों की लड़की थीं, जो उन दिनों रंगमंच और कथा साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय थीं। दोनों का ये विवाह परिवार को स्वीकार नहीं था, लेकिन दोनों ने ही इसका डटकर सामना किया। दरअसल शरद जोशी की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। उन्होंने जैसा लिखा वैसा ही जिया भी। उन्हें किताबें खरीदने और पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें खरीदने के लिए वो अपनी आय में से बड़ी राशि खर्च कर दिया करते थे। उन्होंने यशपाल, प्रेमचंद, टॉल्स्टॉय, चेखव, गोरकी, रवींद्रनाथ टैगोर, मंटो और कृष्णचंदर जैसे महान साहित्यकारों को खूब पढ़ा और उनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित भी हुए। इसीलिए उनके भीतर एक गहरी साहित्यिक समझ हमेशा नजर आती है। जितनी विविधता उनके विषयों में दिखाई देती है, उतनी ही उसके प्रस्तुतीकरण में भी झलकती है। उनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राग भोपाली, घाव करे गंभीर आदि। शरद जोशी ने दो व्यंग्य नाटक तथा उपन्यास भी लिखे थे। उनके लिखे टीवी धारावाहिक अत्यंत लोकप्रिय हुए, जिनमें प्रमुख थे ये जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और वेताल, सिंहासन बत्तीसी, दाने अनार के आदि। इसके साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। ये फिल्में थीं क्षितिज, गोधूली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सांच को आँच नहीं, दिल है कि मानता नहीं आदि। शरद जोशी ने रेडियो में वार्ता, प्रहसन और नाटक भी लिखे। उन्हें साहित्य जगत में विशेष पहचान तब मिली जब धर्मवीर भारती ने उनकी एक व्यंग्य रचना गागरिन का यात्रा भत्ता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। वो पूरे 25 साल तक कवि सम्मेलन के मंचों पर व्यंग्य पाठ के साथ उपस्थित होते रहे। हिंदी साहित्य जगत में टिकट खरीदकर व्यंग्य सुनने वाले श्रोताओं की परंपरा की शुरुआत शरद जोशी ने ही की। वो कहा करते थे कि आप सर्कस देखने जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, तो फिर किसी लेखक की रचनाएं बिना दाम चुकाए क्यों सुनना चाहते हैं। उन्होंने मंच पर खूब व्यंग्य पढ़े और खूब लोकप्रियता अर्जित की। जैसे कवि सम्मेलनों में कवि बुलाए जाते थे, वैसे ही शरद जोशी भी बुलाए जाते थे और उनका व्यंग्य पाठ अच्छे से अच्छे कवि पर भी भारी पड़ता था। शरद जोशी की व्यंग्य रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। उनकी व्यंग्य रचनाओं की विशेषता थी उनकी तात्कालिकता। देश समाज में घटित होने वाली घटनाओं पर वो तुरंत व्यंग्य लिखते थे, इसीलिए पाठक तुरंत उनसे जुड़ जाते थे। अपनी सहज और बोलचाल की भाषा में लिखी रचनाओं के द्वारा वो पाठकों के मन तक अपनी पहुंच बना लेते थे। उनका व्यंग्य लेखन मस्तिष्क को केवल झकझोरता भर नहीं था, बल्कि एक नई सोच पैदा करता था। जनता उनके लेखन के केंद्र में थी। उनकी रचनाएं आम जन में जागृति पैदा कर देती हैं। उनका व्यंग्य पाठकों की बौद्धिकता को उत्तेजित कर देता है। इसीलिए शरद जोशी आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। अपने हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलेपन से आम जन को जगाने वाले शरद जोशी ने 5 सितंबर सन 1991 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं दानिश। कार्यक्रम आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर से जुड़ा है, एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह हमारे घरों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसका मुख्य उपयोग खाना बनाने में होता है। ये गैस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने की प्रक्रिया से निकलता है। भारी दबाव डालकर इसे तरल रूप में बदला जाता है ताकि सिलेंडरों में भरा जा सके और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ आशा पाठक जी। नमस्कार मैम।
2: नमस्ते, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: मैम, सबसे पहले हम इस विषय पर आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे श्रोता भी, कि एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए।
2: बहुत ही आवश्यक एक प्रश्न है, क्योंकि एलपीजी हर घर में भोजन तो बना ही रहा है और साथ में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान कर रहा है। कहीं अगर रात में कोई मेहमान आ जाए और चूल्हा जलाना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला का मानसिक स्थिति जो है वो क्या होती है, उस समय लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक प्रकार से एलपीजी जो है परिवार में खुशियां लाता है और ये सबसे ज्यादा बोलना सुविधाजनक ईंधन है और साथ में सुरक्षित ईंधन है। तो एलपीजी का उपयोग जो है वो घर घर में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही आज जो है एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां भी हैं और एलपीजी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो एलपीजी एक प्रकार से इसीलिए ये इस्तेमाल होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक ईंधन है। इसको एक तो कन्वीनियंट है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं या तो फिर हम उसको पाइपलाइंस के जरिए हम भी ले सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है।
1: तो क्या एलपीजी एक सीमित संसाधन है और इसे बचाना क्यों जरूरी है?
2: जी हाँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि एलपीजी आपने बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम मींस वही जो पेट्रोलियम से निकला क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, तो ये कच्चे तेल का ही एक मतलब उसमें से फ्रैक्शन है। दो तरीके से वैसे तो बनाया जाता है ये, थोड़ा इसीलिए इसका उत्पादन पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हम जो कई बार जो कुएं होते हैं तेल के, उसके ऊपरी सतह पर एक गैस हमको मिलती है, उसे आप बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं पेट्रोलियम कच्चे तेल का, उसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। या तो फिर कई कुएं ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, तो उससे भी इसको बनाया जाता है। और साथ में क्रूड ऑयल के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो है हमें एक गैस मिलती है। तो यही गैस जो है उसको फिर हम लिक्विफाइड रूप में लाते हैं, मतलब तरल बनाते हैं, उसको इतना प्रेशर देते हैं कि वो, इसका एक गुण है ये कि अगर इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो ये एक तरल रूप में बन जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है इसका, उसके कारण ही हम इसे सिलेंडर में भर पाते हैं, नहीं तो 200 ग्राम गैस भी पूरे सिलेंडर को भर लेती। तो हम इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भर पाते हैं। मतलब ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, जो घरेलू हम लाल वाला जो सिलेंडर होता है, फिर उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर है या अलग अलग, फिर वो उनके मतलब वॉल्यूम्स होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो एलपीजी जो है इसकी अपने कोई गंध या कोई मतलब कलरलेस है, ये कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो अगर ये लीक होगा तो कैसे पता चलेगा आपको। तो इसीलिए इसके अंदर एक मतलब इसे तरल किया जाता है और इसके अंदर एक रसायन मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन भी बोलते हैं। ये इसी की गंध होती, ये जो आपको जब एलपीजी लीक होती है तो आपको समझ में आता है, जो कि एक संकेत होता है कि आप इसको अटेंड करिए, तो हाँ गंध जो है वो ये हमें बताती है। तो ये इस तरीके से एलपीजी जो है इसका संरक्षण हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि पेट्रोलियम से बना है, तो पेट्रोलियम तो एक प्राकृतिक ईंधन, प्राकृतिक रिसोर्स है और इसको बनने में लगभग 250-300 करोड़ साल लग जाते हैं। तो इतना लंबा समय इसको बनने में लग रहा है, फिर आप खर्च करने में तो कुछ सेकंड्स में खर्च कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो, हमने तो बहुत इस्तेमाल कर लिया। पिछले 50 साल से ही समझ लीजिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन आगे के बच्चों का क्या होगा, आगे के जनरेशन का क्या होगा, जो आगे हमारी बहुएं आएंगी उनका क्या होगा? खाना तो सबको हमेशा रोज ही चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। तो इसीलिए इसको संरक्षित करके न केवल हम अपना पैसा बचा रहे हैं, बल्कि साथ ही जो भविष्य में जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए हम कुछ
1: उनकी भी जरूरतें पूरी हो,
2: तो इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है। क्योंकि अब ये बहुत कम बचा हुआ है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में अंदर से निकाला जाता है, किसी फैक्ट्री में तो आप बना नहीं सकते। तो ये एक कारण है कि इसका संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है।
1: घर में एलपीजी की खपत कम करने के आसान तरीके क्या है?
2: बहुत ही आसान से तरीके हैं
1: जी।
2: और ये कोई तरीके ऐसे नहीं है कि एलपीजी में ही इस्तेमाल, एलपीजी में कुछ विशेष अलग भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वही सब हैं जो कि शायद मेरी दादी भी जब चूल्हा जलाती थी गाँव में तो वो इस्तेमाल करती थी कि वो जो है लकड़ी कम इस्तेमाल हो या सिगड़ी में कोयला कम इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं वही उसका एक थोड़ा दूसरा रूप एलपीजी में आता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है या कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर कि कोई नहीं कर सकता इसको। तो पहला तो क्योंकि हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिलेंडर के नीचे अगर आप एक लकड़ी का पटा रख दें है ना, लोग आजकल वो एक मतलब स्टैंड टाइप रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जगह अगर आप लकड़ी का पटा रख दें, लकड़ी क्या होती है, ये एक कुचालक है ऊष्मा की, तो आपके जो फर्श होता है वो ठंडा है और खासकर ठंड के दिनों में तो और ठंडा हो जाता है। तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सिलेंडर के, तो हमारी जो गैस जो है वो थोड़ी नीचे जम जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि गैस खत्म हो गई है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन की कुछ समय कुछ घंटे तक आप उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट चला जाएगा आपका, तो नीचे आप लकड़ी का पटा रख लीजिए, तो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए, मतलब बचत के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, कुछ घंटों का उतना भी, अगर हम ऐसे 1000 सिलेंडर देखें, 100 सिलेंडर देखें, तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। और जो दूसरे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इनका अगर आप उपयोग कर ले तो 23% तक आपका ईंधन बच जाएगा। मतलब 23% मतलब लगभग एक हफ्ता हो गया।
1: बिल्कुल,
2: एक हफ्ते का सिलेंडर अगर आप गैस की बचत कर रहे हैं, तो ऐसे आप सोचिए कितने घर, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना जो घर घर तक एलपीजी पहुंचाने की थी, तो एलपीजी हम पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे? 23% हम इसी तरीके से बचा सकते हैं। पहला तो आप देखेंगे कि दो आपके बर्नर होते हैं, छोटा एक बड़ा है, कई बार चार बर्नर भी होते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप छोटे बर्नर्स का इस्तेमाल करें, छोटे बर्नर, या तो फिर बड़ा बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसको एक बार कोई भी, जैसे अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने देखा स्टीम हो गई है उसके अंदर, काफ़ी स्टीम आ गई है, तो फिर आप जो है उसको धीमी आँच पे कर दें। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक बाकी सोचने वाला विषय है कि जब हम रसोई का काम करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं। तो हमारा प्रेशर कुकर वो करीब 8 बार विसल दे चुका होता है। अगर आप अटेंड करें, रसोई को अटेंड करें अपन, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब स्टीम बन गई है, तो आप उसको धीमा कर सकते हैं, और धीमा करके फिर थोड़ी देर में तेज कर दें, और फिर ऐसा करके आप 3 बार विसल ले लीजिए, तो आपका खाना, बल्कि 2 ही बार में आपका खाना बन जाएगा, तो जो है आपका काफी ज्यादा ईंधन बच जाएगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बर्तन का साइज क्या है, मतलब एज पर जो रिकमेंडेशन है वो ये बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर व्यास का जो बर्तन होता है वो परफेक्ट होता है। तो आप कैसे देखेंगे ये कि अगर जो लॉ जो है

0: वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा बर्तनों पे ही हम आए तो लिड का इस्तेमाल करें, उस पर ढकना है हमको। आजकल तो बर्तन बहुत अच्छे आ गए हैं, साथ में आपके ढक्कन आते हैं, तो उसी तरह के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, लेकिन एक घर में शायद तीन तीन चार चार प्रेशर कुकर हैं, वो क्यों हैं? एक बार दाल, एक बार चावल, एक में एक्स्ट्रा भी रखा रहता है, कुछ है तो मांझना ना पड़े और तीसरे में कर लिया हमने। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो बने थे उसमें सेपरेटर्स भी मिलते थे हमको, है ना? आपने देखा होगा डिब्बे, आपकी मम्मी के समय के अगर आपने देखे हो तो डिब्बे थे उसके अंदर, तो एक में दाल, एक में चावल, ऐसे करके सब्जी बघार के तीसरे में मम्मी डाल देती थी, तो एक साथ में सारा खाना हमारा बन जाता था। तो एक ही बार का उसमें तो तीन चीजें बन गई ना आपकी, तो जहां तक हो सके आप सेपरेटर्स या वो डिब्बों का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप जाके आप ले सकते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर अच्छे वाले इस्तेमाल करें आप, महंगे नहीं बोल रही हूँ मैं, ISI मार्क के अच्छे प्रेशर कुकर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपके गैस की बचत के भी गारंटी होते हैं। लोकल नया करें, वो थोड़ा आपके लिए दुर्घटना का भी कारण बन जाता है कई बार, तो आप अच्छे वाले जो प्रेशर कुकर है उन्हीं का इस्तेमाल करें। यहाँ पर अगर हम ISI की बात कर रहे हैं तो आपके जो गैस के चूल्हे हैं वो भी जो है आजकल जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो स्टार रेटिंग जो देते हैं, तो उसमें जैसे फ्रिज पे आपने देखा है 5 स्टार है 4 स्टार ऐसे आप लेते हैं, उसी तरह से गैस के चूल्हे भी आते हैं, उनको हम ग्रीन स्टोव्स भी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर 2 स्टार अगर आप लेते हैं तो आप एक लोकल वो बिना स्टार वाला लोगे तो उससे तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा ही गैस बचत हो, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है उसका, उसका बर्नर का डिज़ाइन या सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो बचत करेगा आपकी। बर्नर किस तरह से बचाता है, एक तो बर्नर जो लेके आए हैं आप तो उसमें तो वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन अब आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। देखिए गैस मैंने क्यों बोला था बड़ा कन्वीनियंट ईंधन है ये, क्योंकि ये जलता है तो ब्लू कलर में फ्लेम आती है, तो ब्लू कलर आप भी जानते हैं ये दर्शाता है कि वो ईंधन पूरी तरह जल गया। जब पूरी तरह जल गया तो पर्यावरण के लिए तो कुछ घातक कुछ बचा ही नहीं। लॉ जो है वो ऑरेंज आ रही है मान लेते हैं, इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि ये बर्नर गंदा है,
1: खराब हो गया, बर्नर
0: दाल गिर जाती है कई बार, दूध गिर जाता है तो उसमें चिपक जाता है। तो हम जो है इस चीज का ध्यान रखें कि अगर रोज नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार आप जो है उसकी सफाई करें, और सफाई में ये भी ध्यान रखें बर्नर की लाइफ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कहीं आप गरम गरम बर्नर में पानी तो नहीं डाल रहे, आप समझ सकते हैं ठंडा गरम तो वो टूटने का भी डर रहता है, ब्रेक हो जाता है, तो आप उसकी जगह क्या ठंडा हो गया बर्नर उसको आप खोल लीजिए, खोलने के बाद में एक भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप कपड़े धोने वाला सा पाउडर डालिए, उसमें थोड़ी देर भिगो दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको, और फिर उसके बाद 15-20 आधा घंटे बाद उसको निकालिए और जो पुराने टूथब्रश होते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लीजिए, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा आपका पानी कितना गंदा हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सुखा के और फिर उसको लगा दीजिए तो पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम फिर से आने लग जाएगी। तो ये तरीका होता है, और आप ये ध्यान रखिए कि उस पर गिरे नहीं कुछ भी, तो अपने आप ही वो साफ रहेगा। लेकिन आप ये मत करिए कि आपने रोटी बनाई और अब चलो किचन का काम खत्म, अब सफाई कर रहे हैं तो पानी डाल दिया, फिर एक पॉलिथिन में आपने मतलब कोई पाउडर लिया साफ करने वाला और उसको घिसा आपने, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पाउडर अंदर घुस जाएगा
1: बर्नर के जो सुराख होते हैं,
0: सुराख में अंदर चला जाएगा और वो जम जाएगा तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसकी सफाई करें। ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप जो आते हैं ना कि बर्नर साफ करा लो या ये, उनसे मत कराइए आप।
1: अच्छा,
0: आप जो एजेंसी में भी इसको आप कर सकते हैं कि हमारे बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो सर्विस चार्ज लेंगे आपसे, लेकिन वो साफ
1: घर पे आके करके जाते
0: हैं। हाँ, तो वो जो रास्ते पे घूम रहे हैं उन लोगों से ना करवाएं। इसके बाद में जो है आपका भोजन आप बना रहे हैं तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल होता है, पानी उतना ही डालें जितनी जरूरत है ना। आप जो है सिर्फ एक वीडियो देखना है या कुछ उसके चक्कर में थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल देते कि जले नहीं, लेकिन उसको उड़ाने में आप कितना ईंधन जला देते हो, तो इसीलिए हमें उतना ही पानी डालें जितनी ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगी कि भोजन वो मतलब एक जरिया है आपके घर के अंदर, माध्यम है जिससे कि घर में संस्कार आते हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: भोजन बच्चों के अंदर जा रहा है, पति के अंदर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, वही आपके विचारों को बनाता है। तो इसीलिए अगर आप उसे मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी बला टालने वाला काम करेंगे कि हाँ भोजन बनाना है हमें, तो फिर आप उसके भी असर देख रहे हैं।
1: प्रायोरिटी पर रखना है सबसे पहले।
0: जी जी, प्रायोरिटी हमारा भोजन है। आप चल किससे रहे हैं, भोजन से ही चल रहे हैं ना।
1: सेहत उसी से।
0: मैं तो आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ महिलाओं को, आप मेरे कहने से, मैं काउंसलर भी हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि विचार क्या काम करते हैं। तो उस रोटी के ऊपर सिर्फ अगर प्रेम लिख लें, उंगली से प्रेम लिख लें, या बच्चे का एग्जाम है 100% लिख लें और बच्चे को सेक के खिला दें प्यार से,
1: अरे वाह,
0: है ना, आप देखिए क्या असर होता है। क्योंकि वो विचार जाता है, वो लिखा इज ओके, लेकिन आपका विचार जा रहा है उसके अंदर। हस्बैंड से तो रोज लड़ाई होती है, लेकिन प्रेम लिख के तो देखिए आप।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: सब मिल बैठ कर एक साथ खाना खाएं, क्यों बार बार जो है रोटी बने, है ना, बार बार तवा गर्म हो,
1: बार बार चाय गर्म करते हैं।
0: बिल्कुल
1: बार बार,
0: हाँ, बिल्कुल। हम
1: बहुत
0: तो
1: सारी चीजें हम बार बार करते हैं।
0: अगर हम एक नियम बना दे घर में कि चाय सब साथ में पियेंगे, है ना, या तो एक ही बार बनेगी चाय, हाँ। जी जी, खाना साथ में खाएंगे। अगर दिन में नहीं भी पॉसिबल हो पा रहा है तो डिनर तो साथ में कर लो, रात का खाना तो कर लो साथ में। तो उससे क्या होगा कि परिवार में जो एक लिंक्स खत्म होते जा रहे हैं, भोजन एक बहुत बड़ा जरिया होता है, है ना, तो वो जो एक लिंक्स हैं वो फिर से बनेंगे, रिकनेक्ट होंगे। आप बच्चा क्या कर रहा है उसकी शक्ल से आप पहचान जाओगे। तो आप जो है डाइनिंग टेबल वो जगह है, भोजन वो जगह है, वो चीज है। तो आप जो है सब मिल बैठ के खाना खाएं, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, सब मिल बैठ के खाना खाएं, तो प्यार बढ़ेगा आपके घर के अंदर, हमारा एलपीजी बचेगा। और दूसरी चीज, भोजन बना के आप जो है ऐसे बर्तनों में रखें जिससे वो गर्म रहे।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो हम जो है हम वहां पे क्या करते हैं, तुरंत निकाला, अरे ठंडा है तो माइक्रोवेव में रख दिया हमने। अब यहाँ पर मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जो एलपीजी जैसा तो आपको कोई भी ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी पड़ती है आपको एलपीजी से, अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो।
1: रेगुलेटर जो होता है और पाइप, ये कितने समय पर चेंज करना चाहिए ताकि गैस का रिसाव भी इनमें से ही होने लगता है और हमें पता नहीं चलता है कि बाज़ वक़्त।
0: इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ संरक्षण को लेके, पहले कि जो भी आप दाल चावल वगैरह बना रहे हैं उसको थोड़ा भिगो दें पहले, भिगोने के बाद आप इस्तेमाल करें। नहीं तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मुलायम करने के लिए, अगर वो पहले से मुलायम होगा तो डायरेक्ट पकना चालू हो जाएगा
1: जल्दी,
0: है ना। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। और जहां तक रेगुलेटर की बात है, यहाँ आपके संरक्षण की भी बात आती है यहाँ पे, कि आप जितनी बार भोजन बनाए उतनी बार आप जो नॉब है उसका, आपका सिलेंडर का, उसको भी बंद करें। तो कहीं अनावश्यक अगर कहीं लीकेज हो रहा होगा तो उसको आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज ये जो आपने पूछा कि कब हमें बदलना चाहिए, तो रेगुलेटर तो बदलने की जरूरत होती नहीं है कभी भी। हाँ, अगर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप कंपनी में जाके, जो भी एजेंसी है वहीं पे जाके आप उसको बदलें। लोकल मार्केट में शायद सस्ता वाला आपको मिल सकता है, लेकिन आप वो ना लें, ये मतलब एक बहुत ही जरूरी चीज है। हो सकता है वो 300 का मिले और ये 150 का मिले, लेकिन वो कभी भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट ला सकता है। तो इसीलिए ISI मार्क का एजेंसी से ही लीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि जो पाइप जो है उसका, आजकल तो आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एजेंसी ही देती है। और जो पहले आते थे सिर्फ रबर के होते थे, वो तो वो काफी डैमेज हो जाते थे, और मतलब एक प्रकार से जो जहाँ पे चूल्हे के साथ लगते थे वो वहां पे खराब होने लग जाते थे, लोग उसे काट काट के छोटा कर देते थे।
1: तो ये रबर के रहते थे,
0: रबर के रहते
1: अभी
0: थे
1: तो
0: वो, अभी वो वायर के साथ है,
1: हाँ,
0: तो इट्स बहुत डिफिकल्ट है उसे काटना भी। लेकिन वो क्या होता है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कई लोग उसमें भी दिमाग लगा लें कि हम उसमें काट देंगे आरी से या कुछ, तो क्या होता है ये करीब 1 मीटर करीब होता है ये, है ना, तो वो एक एक्यूरेट मतलब वो लंबाई लेंथ है उसकी। नहीं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे लिक्विफाइड किया जाता है और ऊपर की सतह पर वो गैस होता है, लेकिन वो जो पाइप है वो अगर सही नहीं है, छोटा है अगर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड रूप में बीच में जम जाएगा। और आप खाना बना रहे हैं तो कई बार रोटी बना रहे हैं, 4 बार 5 बार बंद होगा वो, तो आपको सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, तो ये कारण आपका पाइप हो सकता है। अभी तो ये बहुत ही अच्छे पाइप्स हैं, तो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है, करीब आप 6-7 साल भी इसको चला सकते हैं, लेकिन बस इसे काट काट के मत यूज करें।
1: कहीं से चटक गए हैं या चूहे वगैरह ने काट लिया, तो
0: चूहा काटना भी इतना आसान नहीं है इसको, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई आप क्या बहुत डेंजरस चूहे हैं, तो आप फिर उसको बदलिए बिल्कुल, और लेकिन लेना एजेंसी से ही है।
1: बिल्कुल,
0: आप कहीं लोकल मार्केट से इसको नहीं लेंगे, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी है
1: बिल्कुल,
0: और संरक्षण तो है ही, वो बीच में परेशानी भी है आपकी कि गैस बंद हो रही है।
1: बिल्कुल आशा जी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि पीएनजी और एलपीजी में क्या फर्क।
0: जी दानिश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज जो है भोपाल में देखिए बहुत सारी जगह थिंक गैस का आपने देखा हो पाइपलाइंस, पाइप दे रहे हैं वो घरों में, मतलब डायरेक्ट सप्लाई है वो। तो पीएनजी का मतलब है पाइपलाइन नेचुरल गैस। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बताया था, तो ये क्योंकि प्राकृतिक गैस ही है तो ये एलपीजी नहीं है, एलपीजी के मुकाबले सुरक्षित है ये। एलपीजी की अगर हम स्मेल आ रही है तो क्या है कि एलपीजी जमीन पे चिपकता है, क्योंकि वो हवा से भारी गैस है, तो जमीन पे चिपक गई कोई चीज तो उसको निकालोगे कैसे आप, अनलेस अंटिल आपको ये पता हो कि झाड़ू लगाओ अब, है ना, तो कई बार पता नहीं होता, तो वो चिपकी हुई है, हम सब दरवाजे खिड़की खोल दिए फिर भी टाइम लेगी वो। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो हवा से हल्की गैस है, अगर ये लीक होती भी है तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर तो उसको बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है फैलने का, तो सुरक्षित भी है। मैं तो यही बोलूंगी कि जहां कहीं पे भी जिस भी मोहल्ले में पीएनजी की सप्लाई के लिए अभी आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है तो आप जरूर लें उसको, क्योंकि आगे पीएनजी की सप्लाई ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हो सकता है एलपीजी की कम हो जाए,
1: और फिर ये सिलेंडर भरवाने का या
0: हाँ वो सब भी खत्म हो जाता है, आपके मीटर लगा रहता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे आप अपना,
1: ये तो सुविधाजनक हो,
0: बिल्कुल बहुत सुविधाजनक है, इसका कोई वो भी नहीं
1: भारी,
0: है
1: कि भारी सिलेंडर उठा के अंदर रखना हो फिर बाहर ले जाना,
0: जी जी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसको लगा ही नहीं पाते कई लोग,
1: वो अचानक रात में भी सिलेंडर खत्म हो जाता है, बिल्कुल ये सारी दिक्कतों से
0: वेटिंग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसके अंदर। ये दोनों में अंतर है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये पाइपलाइन नेचुरल गैस है, तो ये काफी कन्वीनियंट है, उससे भी अच्छी है कहना चाहिए, तो इसको जरूर इस्तेमाल करें आप।
1: आशा जी, आजकल एलपीजी का जो सिलेंडर है वो लोग अपने कार में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफिल करवाते हैं और कार चलाते हैं उससे, तो ये क्या इस्तेमाल करना सही है?
0: देखिए एलपीजी का इस्तेमाल करना सही तब है जब आप उसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कई हमारी आजकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इस तरह का वो दे दिया है, आपके पास टैंक्स हैं कि जिनमें आप डायरेक्ट एलपीजी फिल करवा सकते हैं आप, अभी तो सीएनजी आ गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो, तो आप उसको लें तो ज्यादा अच्छा है, और भी अच्छा है। और अगर लेकिन आप एलपीजी, अगर आपकी गाड़ी है आप एलपीजी उसमें फिल करवा रहे हैं, तो आप जो है पेट्रोल पंप्स पे जहां भी अवेलेबिलिटी है इसकी वहीं से करें, खुद ट्राई ना करें। और जो आपके घर के अंदर कई लोगों ने घर में चार मतलब कुछ ज्यादा लोग हैं उनके नाम से सिलेंडर्स ले लिए हैं, फिर उनको आप वो ब्लैक वाले सिलेंडर वो जो पाइप जो रहते हैं सिलेंडर्स उसमें आप करते हैं चेंज करते हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा जोखिम भरी चीज है और इसमें आप कई घर बर्बाद हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो ये कभी ना करें। थोड़े से पैसे बच जरूर जाएंगे आपके, लेकिन जो तरीका यही है कि जो आप पेट्रोल पंप्स पे या इसके सिलेंडर जो मिलते हैं वही इस्तेमाल करें। तो आजकल तो सीएनजी का समय है तो आप सीएनजी का इस्तेमाल करें, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, अगेन नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, आप समझ सकते हैं, तो आपको वो ज्यादा सुविधाजनक है, सुरक्षित है, और दूसरी चीज ये है कि अवेलेबिलिटी ज्यादा है।
1: अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
0: पीजी अगर हो जाती है तो तुरंत जो है हमें सबसे पहले तो दरवाजे खिड़की खोलने चाहिए, क्योंकि उसे बाहर करना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए कि अगर एलपीजी जो है जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, रसोई जो है हमारा वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, पूरा बंद कमरे के अंदर आप एलपीजी मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जलेगा, और जो भी कुछ विषैली गैस बनेंगी वो आप ही के अंदर जाएंगी, क्योंकि आप वहां ज्यादा समय है, तो आपको चक्कर आने लग गया या आपको उल्टी जैसा होने लगा, तो इसका मतलब है वो बिना किसी कारण के अगर हो रहा है ऐसा, और जब आप खाना बना रही है तभी हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कारण हो। तो हम मैं ये कहूंगी तुरंत तुरंत आपको पूरे दरवाजे खिड़की खोल देने हैं, और दूसरी चीज जो सिलेंडर है उसको तुरंत निकाल लीजिए, रेगुलेटर निकाल दीजिए, उसको तुरंत बाहर करिए, उसमें सफेद कैप रहता है, सफेद कैप लगाइए और उसे बाहर करिए। कभी भी बिना सफेद कैप जो रहता है उसके बिना सिलेंडर को रखना ही नहीं है आपके घर में, अगर खाली भी सिलेंडर है तो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत तेज बदबू आ रही है तो आप जोर जोर से फर्श पे झाड़ू लगाइए, तो क्योंकि हवा से भारी गैस है जमीन पे चिपक गई है, तो झाड़ू लगाएंगे तो ये बाहर जाती है। अगर एलपीजी लीकेज हो रहा है तो ये इसका तरीका है। लेकिन अगर आग लग गई, मतलब इसके हम सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो मैं एक दो चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा रसोई होता है उसके अंदर देखा होगा आपने महिलाएं जो है वो कागज जो रहता है, पेपर जो रहता है, उसे काट काट के लगाती हैं शेल्फ्स में, तो ना करें वो, क्योंकि वो भी एक माध्यम बन जाएगा और ज्यादा फैलाने का। जहाँ सिलेंडर रखा उसके आसपास कोई ज्वलनशील चीज ना रखें। दूसरी चीज ये है कि आप गैस आपकी ऑन है, आप खाना बना रहे हैं, आपने कॉकरोच देखा और वहीं पर आपने उसे मारना चालू कर दिया हिट वगैरह से,
1: हाँ, तो वो
0: भी पेट्रोलियम ही है,
1: फ्लेमेबल, हाँ,
0: फ्लेमेबल है वो, तो आप जो है उसमें भयंकर आग लग सकती है। एक और चीज है, कई बार महिलाएं जहाँ गैस जल रही है उसी के पास मोबाइल रख के और खाना बनाती है, तो ये बहुत रिस्की है।
1: वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब
0: वीडियोस देख रहे हैं, हाँ। तो उसके अंदर जो एक स्टैटिक चार्ज है, बाय चांस आपने ध्यान नहीं दिया कहीं गैस लीक हो रही है, कई बार गैस बंद हो जाती है, आपका ध्यान ही
1: ध्यान
0: नहीं
1: है,
0: हाँ, हाँ। तो आप जो हैं इस तरह के जो रिस्क हैं वो ना लें, मोबाइल आप दूर रखें। दूसरी चीज, आपके मोबाइल के ऊपर उतने कीटाणु होते हैं जितने टॉयलेट सीट के ऊपर हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप बार बार उसको पकड़ रही हैं, फिर खाना भी बना रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसका, ये तो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आग लग जाती है, सपोज कहीं इतने बुरा हो गया कि आग ही लग गई, दुर्घटना हो गई, तो आपको जो है तुरंत सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या आप उसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो बाहर निकल लो, जान ज्यादा जरूरी है, सबको घर से बाहर कर दो, क्योंकि अगर आग लग गई है और सिलेंडर फट गया, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाएगा आग के कारण कि वो फट जाता है, अगर वो फट गया तो जो गैस जो उसमें तरल रूप में है वो पूरी दीवारों पे चिपकेगी और हर दीवार पे विद इन सेकंड आग लग जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें लाइन में आ गई वो आग, तो इलेक्ट्रिसिटी तो तुरंत बहुत आराम से पूरे घर के अंदर आग को फैला देगी। तो इसीलिए हमें तुरंत ये देखना है, और अगर आपको लग रहा है कि आप बच कर सकते हो, अभी ज्यादा नहीं फैला हुआ है, तो उसके ऊपर तुरंत कोई मोटा कपड़ा गीला कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कंबल है या कोई ऐसी मोटी दरी है तो उसके ऊपर लगा के, आपने निकाल लिया रेगुलेटर, उसके ऊपर डाला आपने और उसको जो है अच्छे से कवर कर दें, या फिर कोई भगोना है जैसे प्लास्टिक का, नहीं बोल रही हूँ, वो उसके ऊपर रख दें, ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई जो है कट कर दें, तो आग बुझ जाएगी। सप्लाई तो वहीं सही है ना, सिलेंडर सही है, तो इस चीज का उसका तरीका भी होता है, वो हम अभी आपको रेडियो पे तो नहीं बता सकते, लेकिन उसके कुछ मॉक ड्रिल्स हम लोग करवाते हैं जिससे कि महिला को ये चीज पता चल जाती है कि इसको हमें कैसे बचत करना, सुरक्षित रखना है।
1: आशा जी, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश एलपीजी संरक्षण और सुरक्षा को लेकर।
0: जी देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा अपने देश के लिए, लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सोचते तो हैं बहुत ज्यादा हम, तो आज ये वो मौका है हमारे पास में एलपीजी के रूप में, कि अगर आप इसको संरक्षित करते हैं तो कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको बहुत धन्यवाद देगी और आपका एक रिश्ता जो है उनके साथ बहुत अच्छा होगा, तो देश, समाज और परिवार तीनों के लिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे हम एलपीजी की बचत कर सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित भी बना सकते हैं। धन्यवाद आशा जी, इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं।
1: दोस्तों, याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और बचत ही समझदारी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय संयोग सतीश बौथम, मैं था दानिश। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: आमने सामने।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: सबसे पहले आपसे मुखातिब हैं पल्लवी त्रिवेदी।
1: मेरी पहली कविता संगीत से ही शुरू करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है राग अरण्य। जंगल में जो संगीत होता है, मुझे लगता है चाहे तानसेन जी ने बनाए हों जितने भी राग या कहीं पे भी, हम प्रकृति के संगीत से ही उपजे होंगे सारे संगीत, जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा। सो मेरा पहली कविता है राग अरण्य। पतझर की एक सांझ घिर रही है, सतपुड़ा का जंगल आज राग अरण्य की एक नई सिंफनी रच रहा है। पपीहे और मोर ने षडज से धैवत तक का दीर्घ आलाप उठाया है। अबाबील और फुलचुक्कियां साध रही हैं द्रुत लय की ताने। कटफोड़वा और ठठेरा बसंता ने सागौन पर झपताल का ठेका दिया है। और सहसा कहीं दूर एक बाघ खरज का पंचम लगा बैठता है। गुणवंत साजिंदे, झींगुर और टिड्डे तानपुरा साधे बैठे हैं। नदी की लहरें बजाती है मंजीरा मगन अपने तट पर। और सूखी पत्तियों पर छनक उठते हैं किसी खरगोश के पदचाप के घुंघरू। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर कांप रहा है कोमल गांधार, कांप रहा है कोमल गांधार। थैंक यू, शुक्रिया। अगली कविता है पिता। ओ पिता, तुम हमेशा एक नाराज बच्चे थे, अपने ही अतीत के बंधक, अपने ही मन के कुएं में औंधे पड़े। तुम चट्टान बनने को अभिशप्त थे, जबकि तुम बालू की तरह झर रहे थे। किसी रोज तुम मुंह फुलाकर अकेले बैठ जाना चाहते थे। किसी रोज तुम्हारे अश्रु नर्मदा बन जाना चाहते थे। तुम पैर पटक कर कहना चाहते थे उस दिन, आज सिर्फ मुझे लाड़ करो। पर तुम्हारे भीतर का बच्चा बाहर के पिता से हार गया। तुम्हें किसी ने भी नहीं मनाया, किसी ने भी तो नहीं कहा रो लो जी भर कर, ढह जाओ इस कांधे पर। जिन हाथों को तुम्हें अंक में भर लेना था, वे हाथ ट्यूशन फीस की फरमाइश के लिए आगे बढ़े। जिन आँखों को तुम्हारी पीड़ा देख लेनी थी, उन आँखों में तुम्हारे ज़िद्दी स्वभाव के लिए सैकड़ों शिकायतें उमड़ती रहीं। जिन होठों को तुम्हारा माथा चूम लेना था, वे तुम्हारी पीठ पीछे भुनभुनाते रहे। एक बच्चा बचपन से बचपन को तरसता रहा। एक बच्चा 51 साल जिया और अपने ही मन के कुएं में डूब गया। ओ पिता, मुझे क्षमा कर देना, मैंने कुएं की मुंडेर तक आने में देर कर दी। प्रेम कविता, शीर्षक है प्यार का फूल। दूरियों का क्षोभ मत करो तुम, दूरियों का क्षोभ मत करो तुम। मुलाकातों के सिलसिले के खत्म होने को होने से मन को अवसाद में ना भरो। मंदिर की घंटियों की तरह सारा दिन तुम्हारे कानों में बजती वह आवाज़ अब मौन हो गई है, तो जी उदास न करो। तुम्हारी देह को उसकी देह के स्पर्श का आश्वासन अब नहीं, तो तनिक भी न घबराओ। प्यार का फूल पौधे पर ज़्यादा देर नहीं टिकता, तुम्हारी प्रिय किताब के सबसे प्रिय पन्ने पर ही इसे अब उम्र बितानी है। अगर अब स्वप्न में भी उसकी आमद विरले ही होने लगी है, तो अपनी नींदों से झगड़ा मत करो। तुम्हारी स्मृति से अगर उसके साथ के सुंदर वाकये लुप्त होने लगे हैं तो दिमाग पर कतई जोर न डालो। मत सोचो कि उसे स्मरण कर कितने महीनों से तुम्हारे नेत्र नहीं छलछलाए हैं। उस कसम को ना निभा सकने के लिए खुद को मत कोसो जो तुमने उसका हाथ थामकर उठाई थी। क्षण भर को भी तुझे भूलूं तो पाप की भागी बनूं। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है और उस कंपन से हृदय तल पर जो घटता है वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी। वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी।

0: और ये है रचना पाठ संगीता गुंदेचा का।
1: ये जो दो कविताओं का जोड़ा है इसका नाम है फ्रिदा कहलो। फ्रिदा कहलो मेक्सिको की चित्रकार थी और एक कविताओं का जोड़ा है फ्रिदा कहलो। एक फ्रिदा कहलो का जीवन बहुत कष्टमय था लेकिन उसके बिना भी वो चित्र बनाती रही। और आप कभी फिल्म देखेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चले। मैं कविताएं सुना देती हूँ, दो छोटी कविताएं। फ्रिदा कहलो एक। शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा कहलो मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मरा कैसे जाता है। जो चीज़ हमें मारती है वही जिंदा रखती है। फ्रिदा कहलो दो। आह शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा कहलो मैं जीना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता जिया कैसे जाता है। जो चीज़ हमें जिंदा रखती है वही मारती है। आत्ममुक्त। क्या फर्क पड़ता है दुनिया को, तुम तोड़ो पहाड़, तुम मंगल ग्रह के एकांत में पीछा करो चम्मच का। सघन पीड़ाओं से अलंकृत तुम्हारा मन, शब्दों और अर्थों का अंतर्द्वंद, तुम्हारे उत्सर्गों और प्रेम का अविरल छंद, यही सब बनाता है उसे जो तुम हो। इसलिए एक लेखक का आत्ममुग्ध होना नहीं शोभता प्रिय, एक लेखक का आत्ममुग्ध होना बिल्कुल नहीं शोभता।

0: और ये हैं सविता भार्गव।
1: दरवाजे के बाहर बैठकर जब तक खोलो नहीं कपाट, म्याऊं म्याऊं करती रहती है। कटोरी में दूध उसके सामने रखती हूँ, पीते हुए जरा भी चपर चपर नहीं करती। पेट की खिदमत करने के बाद वो चुपचाप पेड़ के नीचे बिखरी पत्तियों पर बैठकर धूप सेकने लगती है और अपनी देह को ऐसी आकृति देती है जैसे वो पृथ्वी की रीढ़ हो। रात में वो जरूर डरावनी लगती है, आंखें उसकी ऐसी चमकती हैं अंधेरे में, भर जाती है देह में झुरझुरी। चांद की रोशनी में उसकी रेंगती हुई छाया में प्रेत का भ्रम होता है। पता नहीं क्यों सुबह जब वो दरवाजे पर बैठ जाती है, भुला देती हूँ उसका डरावना रूप और पुचकारती हूँ उसे, मन में हो जैसे खास जगह। अचरज होता है कैसे संभाले हैं उसने अपने दो रूप। दो रूपों की वो अनूठी मिसाल है, पालतू बनने के लिए रहती है व्यग्र, लेकिन समझती है अपने को मालकिन। अविराम घूमती पृथ्वी की तरह, एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा। एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा, एक पूरा वाक्य आधी स्त्री और आधे पुरुष के योग से बना। एक शब्द स्त्री की व्यथा की तरह, एक वाक्यांश पुरुष की समर गाथा की तरह, एक पूरा वाक्य अविराम घूमती पृथ्वी की तरह। दाम्पत्य और कविता। कविताएं मेरे पास आए उसके पहले मैं रसोई तक पहुंच गई होंगी, बिस्तर झाड़ते संवारते घर इतनी सहज साधारण दिख रही होंगी कि शब्द उछलकर अलमारी की किताबों में दुबक गए होंगे। मानती हूँ शब्द का जीवन से रिश्ता है, लेकिन शब्द मानते नहीं। उनकी एक ही रट है, एकांत में दुबको या उड़ो। उन्हें नहीं चाहिए मेरा सुकून, उदासी चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए ओढ़ी हुई उदासी। जीवन जो पहचान में आए नया, उसी में देखते हैं शब्द अपनी पहचान। अब आप बताएं, दाम्पत्य सवारूं कि कविता करूं? प्रेम कविता। भरोसा। मैं अंधेरे पर भरोसा करती हूं जो मुझे सहलाता है अज्ञात पंख से, और मैं कांपती पलकों में सो जाती हूं। मैं उजाले पर भरोसा करती हूँ जो आंखें खोलते ही खिल उठता है, और मैं बहती चली जाती हूँ उसकी तरफ। मैं अपने इस घर पर भरोसा करती हूँ जिसमें मैं रहती हूँ सालों से और जो बस गया है मेरे भीतर। मैं अपने शहर की गलियों पर भरोसा करती हूँ जो आपस में जुड़कर इधर से उधर मुड़ जाती हैं, और जहाँ ख़त्म होती है कोई गली मुझे वहाँ मेरी धड़कन सुनाई पड़ती है। ऐ आदमी, मुस्कुराते हुए जब तुम मुझ में खो जाते हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरता है, जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरते हैं टूट पड़ते हैं दुनिया भर के कीट पतंग, जब पानी मरता है लोगों में बेचैनी बढ़ने लगती है, लेकिन स्त्री मरती है तो मर जाता है जीवन का संगीत। आखिरी कविता। माँ वापस जा रही है। माँ किस दिनों तक, कुछ दिनों तक रही, अब वापस जा रही है। मेरे घर का एक छोटा सा कोना खाली हो जाएगा, फिर भी बनी रहेगी कुछ दिनों माँ की गंध। कुछ दिनों तक अकेले खाना खाने की मन में भरी रहेगी टीस। कुछ दिनों तक शायद पानी भी अच्छा ना लगे। माँ शब्द के उच्चारण से मन में कसक पैदा होने लगी है। माँ वापस जा रही है और मेरे भीतर कोहरा बैठ रहा है। धन्यवाद।

कार्यक्रम वागर्थ में आप सुन रहे थे रचना पाठ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ध्रुपद संस्थान भोपाल में। आज कार्यक्रम वागर्थ में इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज है 29 मई और ये दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के सैनिक अपने पूरे तन मन से अपना सर्वस्व न्योछावर करके भारत की सीमाओं पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, हर परिस्थिति हर मौसम का सामना करते हुए। न उन्हें आग उगलती गर्मी से घबराहट है, न -50 डिग्री में खून जमा देने वाली बर्फ की कपकपी से। उनके सीने में हर वक्त धड़कता है तो सिर्फ हिंदुस्तान, और रगों में लहू बनकर दौड़ती है निश्चल राष्ट्रभक्ति। भारत का हर नागरिक इन वीरों के प्रति सदैव से ऋणी था और रहेगा। श्रोताओं, आज का दिन यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो समर्पित है उन वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने के लिए, जो दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में काम करते हैं। चलिए तो आज के दिन को हम मनाते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, महत्व क्या है, संदेश क्या है। जानते हैं ये सब कुछ हमारे आज के अतिथि महोदय कर्नल अनुराग गुप्ता सर से, जो हमारे साथ आज की परिचर्चा में उपस्थित हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
1: सर, पहला प्रश्न आपसे यही करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, इस दिन का महत्व क्या है और कैसे हम इसे मनाते हैं?
2: यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स डे आज के दिन 29 मई को
1: जी।
2: जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में के जो मिशंस हैं उसमें जो सर्विंग मिलिट्री पुलिस और सिटीजन सिविलियन कर्मी जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है
1: जी।
2: वो विदेशों में बहुत दूर दूर और संघर्ष वाले क्षेत्रों में अपनी नौकरी अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं तो उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है
1: जी।
2: इनकी वर्दियों में जो कॉमन चीज है जिनको इनसे पहचाना जाता है वो उनकी ब्लू हेलमेट है
1: जी।
2: और ब्लू बेरे है तो उनका जो प्रोफेशनल स्किल है उनका डेडिकेशन है ये दिवस उनको मान्यता देता है। साथ ही जो शांति की खोज में अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन सैनिकों को कई बार बलिदान करना पड़ता है शांति मेंटेन करने में
1: जी,
2: तो उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है। अब इस तिथि का महत्व ऐसे है कि 29 मई को 1948 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के जो पहला सबसे पहला शांति रक्षा मिशन था यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन था उसका जो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना हुई थी UNTCO की
1: जी।
2: ये था लेबनान और इसराइल के बीच जो संघर्ष था उस समय उसके बीच उनको वहां पे शांति बहाल करने के लिए था। आज का दिन उन 4,400 से अधिक शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने सेवा करते अपनी जान गंवाई। काफी बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के जो सैनिक इसमें जाते हैं उन्होंने जान भी गंवाई है। विश्व भर में सक्रिय अभियानों में सेवारत हजारों कर्मियों के उनके योगदान को भी उजागर करता है और ये जागरूकता बढ़ाने के लिए भी है कि जो नागरिकों की रक्षा करने स्थिरता को बढ़ावा देने में जो शांति सैनिक लगे हुए हैं शांति रक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है उसके ऊपर भी प्रकाश डालता है जोर डालता है और जागरूकता बढ़ाता है। इसको मनाने के लिए इसमें पुष्पांजलि समारोह होते हैं, पदक प्रदान समारोह होते हैं, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में होते हैं और तमाम मिशन हेडक्वार्टर्स में वहाँ पर भी होते हैं
1: जी जी।
2: पूरे विश्व में इनके आयोजन होते हैं जहाँ जहाँ संयुक्त राष्ट्र मिशन है। 193 मेंबर नेशंस हैं संयुक्त राष्ट्र के
1: जी जी।
2: तो जहाँ जहाँ पे मिशन हैं वहाँ वहाँ होते हैं। हर एक जगह पर हर एक वर्ष में एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसे हम थीम कहते हैं
1: जी जी।
2: कि इस साल की थीम क्या है
1: जी जी।
2: तो इस साल 2026 की जो थीम है ये इनकी इन्वेस्ट इन पीस
1: जी जी।
2: और इस तरीके से थीम डिसाइड की जाती है कि उनकी चुनौतियों को उजागर किया जा सके। इन्वेस्ट इन पीस मतलब शांति रक्षा इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें इन्वेस्ट करें।
1: सर, दूसरा सवाल ये बनता है कि जैसे आपने एक शब्द प्रयोग किया शांति सेना, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना क्या है, इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ी? हम जानना चाहेंगे आपसे सेना के, इसके चार्टर, भूमिका, संरचना के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद,
1: जी,
2: यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके द्वारा तैनात
1: जी
2: एक बहुपक्षीय, जिसे कहते हैं मल्टी फोर्स, मल्टी कंट्री की जो है मल्टी मेंबर फोर्स है, एक फोर्स खड़ी करते हैं, बल करते हैं, जो संघर्ष से शांति की ओर बढ़ाने में सहायता करती है। किन देशों को? जहाँ पे विवाद चल रहे हैं, जहाँ पे संघर्ष है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी चीजों के, तो सदस्य देशों के सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी मिलकर एक कंटिंजेंट बनाते हैं और उस जोखिम वाले क्षेत्रों में नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, जैसा उनको मैंडेट किया जाता है। संघर्षग्रस्त क्षेत्र जो है उसमें शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया एक बल, जिसको कह लें अंतर्राष्ट्रीय बल, ये है यूएनपी की पीस कीपिंग फोर्स। ब्लू हेलमेट, जैसे मैं बता चुका हूँ, ब्लू हेलमेट और ब्लू बेरेट के नाम से इनको जाना जाता है। इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनको संचालित करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑब्जर्वेशन इनके ऊपर नजर रखते हैं और सर्वप्रथम 1948 में इसका गठन, आपको जैसे बताया, विशेष रूप से फिलिस्तीन में इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में और भारत में कश्मीर और कश्मीर के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के, हाँ, उसमें किया गया था। अब इसकी तैनाती के लिए एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक आवश्यकताएं, एक बेसिक चीजें हैं कि जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होते शांति बल वहाँ तैनात नहीं कर सकते।
1: अच्छा,
2: तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच भी सहमति बनी है तभी वहाँ पे ऑब्जर्वर ग्रुप आया, इसराइल फिलिस्तीन के बीच पहले सहमति बनी या पीस अकॉर्ड साइन हुआ होगा उसके बाद आया। शांति सैनिक निष्पक्ष रहते हैं, निष्पक्ष का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय रहते हैं, वो दोनों पक्षों से अलग हटके अपने शांति व्यवस्था को, जो उनको मैंडेट दिया हुआ, जो उद्देश्य दिया हुआ, उसकी पूर्ति करते हैं, किसी एक का पक्ष नहीं लेते। ये नहीं कि किसी ए ने बी के ऊपर हमला कर दिया तो वो बी की तरफ से फायर कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो दोनों के बीच में एक विवाद को हटाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कमजोर का भी साथ दे दें या उस स्थिति में, या उस स्थिति में भारी पड़ने लोगों का साथ दे दें, नहीं, बीच में जाकर के उनको अलग करेंगे। इस तरीके का उनका टैक्टिक्स रहती है, उस तरीके की नीतियां रहती हैं। और तीसरा है कि बल प्रयोग ना करना, कि वो बल का प्रयोग आत्मरक्षा में करेंगे या जो उनको मैंडेट दिया हुआ है, जो उनको उद्देश्य दिया हुआ है उसकी रक्षा में करेंगे, अदरवाइज वो बल का प्रयोग नहीं कर सकते। विशिष्ट परिस्थितियों में करते हैं जिसके लिए उन्हें मैंडेट दिया जाता है पहले से कि हाँ, वो अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वे मतलब आजाद हैं कि हाँ वो फ्री हैं कि बल का प्रयोग, सारे सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, पर वो बड़ी विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और जिसके लिए मैंडेट सिक्योरिटी काउंसिल ही देती है। इसका जो है चार्टर की जो आप बात कर रही थी, जो भूमिकाएं हैं वो यह है कि नागरिक आबादी की रक्षा करें, मुख्यतः नागरिक आबादी की रक्षा करने के लिए ही है, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब इसको आप अपने ही देश में ले लें, कश्मीर में जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था उसके हिसाब से ले लें। शांति प्रक्रियाओं की निगरानी करना है, शांति समझौतों को लागू करना है, जो समझौते हुए हैं जिसके बाद ऑब्जर्वर ग्रुप या ये मिशन या मिलिट्री ग्रुप्स आए हैं, शांति सेना वहां तैनात की गई है, तो जो समझौते हुए उनको लागू करना है, समझौतों के हिसाब से, समझौतों को ना तोड़े, नहीं तो फिर वहां संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। संघर्ष या प्रकोप को बढ़ने से रोकें, मानवाधिकारों की रक्षा करें और लॉ को, लॉ एनफोर्समेंट उसको मजबूत करें, और चूंकि शांति बहाल कर रहे हैं तो जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, डेमोक्रेटाइजेशन है, सरकार का इलेक्शन है, उसको करें, और जो ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प, उसमें आगे बढ़े।
1: सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी उनका उद्देश्य हमें बताया, तो किस तरह का इनका संगठन होता है, इनके ऊपर कमान किसकी रहती है, नियंत्रण ढांचा कैसा रहता है इनका?
2: इनका जो संगठन है, संगठन में कह लीजिए इसमें मिलिट्री पर्सनल होते हैं, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस पर्सनल होते हैं, और नागरिक कर्मचारी भी होते हैं, सिटीजन्स भी होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, जो जैसे पुल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको बहाल करना है, बाढ़ नियंत्रण करना है, बहुत सारे इस तरीके के जो आप कह लें एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो दस्ते वो शामिल होते हैं, है ना। अब इनका नियंत्रण जो, देखिए इसका एक पदानुक्रम जो हायरार्की है वो मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ। पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक इनकी एजेंसी है, वो इनको अधिकृत करती है, वो इनको मैंडेट देती है, वो इनके उद्देश्य को परिभाषित करती है और बल प्रयोग के लिए नियम जो है वो निर्धारित करती है। और ये कब करती है? अधिकृत कब करती, जब दो पक्ष राजी हो कि हाँ हमें इस समय सुरक्षा सैनिकों की, शांति सुरक्षा सैनिकों की जरूरत है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, फिर आ जाते हैं सेक्रेटरी जनरल, उनकी शांति रक्षा जितने भी अभियान चल रहे हैं विश्व में, 3 महाद्वीपों में है अभी, 11 मिशन्स हैं, उनके समग्र अभियान, उनका जो समग्र कमान है और नियंत्रण उनके पास होता है, वो उनके पास होते हैं। फिर शांति

0: नियुक्त करते हैं और जनादेश को वहाँ लागू करते हैं, जो मिशन के सभी घटक हैं जैसे मिलिट्री, पुलिस और जैसे मैंने आपको बताया जी, उनका जी, निर्देशन करते हैं। फोर्स कमांडर है जो हेड ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट है
1: जी,
0: वो एच ओ एम हेड ऑफ मिशन थे, ये थे हेड ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट। इसी तरह हेड ऑफ पुलिस कंपोनेंट हो गए, मिलिट्री कंपोनेंट में ही पुलिस में भी आ जाती कई बार, है ना। फिर एक होते फोर्स कमांडर, जो वहाँ का दल जो एक्टिवली अब जो वहाँ काम कर रहा है उसके एक कमांडर होते हैं, जिनके नीचे तीनों घटक जो काम करते हैं, समन्वय में काम करते हैं, दिशा निर्देश उनको कई जगहों से मिलते हैं लेकिन वो सामंजस्य बिठा के समन्वय से कार्य करते हैं वहाँ। अब सैन्य घटक जो हैं ये विभिन्न सदस्य देशों के टुकड़ियां शामिल होती हैं तब ये बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई बल नहीं है,
1: अच्छा।
0: अपना कोई फोर्स नहीं है, ये जो उनके मेंबर सदस्य देश हैं वो लोग उसमें योगदान देते हैं। जैसे भारत के कुछ सैनिक वहाँ जाते हैं, कंटिंजेंट जाते हैं, बटालियन जाती हैं, उनको कितने सैनिक चाहिए फिर भारत देता है। कई सदस्य देश हैं जो देते हैं, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, तमाम देश हैं जिनके जाते हैं वहाँ। पुलिस घटक है, पुलिस घटक में क्या क्या जा सकते हैं, कुछ स्टेट पुलिस से भी जाते हैं सिलेक्टेड लोग, अच्छे सिलेक्टेड लोग, सीआरपीएफ के कंटिंजेंट जाते हैं इसी तरह सीएपीएफ के कई कंटिंजेंट्स में से सिलेक्टेड लोग पुलिसकर्मी भेजे जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो पुलिसिंग का काम है वो वहाँ वो करते हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उनको सलाह देते हैं कि आप इस तरीके से अब आगे बढ़े तो शांति बहाल होगी। नागरिक घटक इसमें है, पॉलिटिकल्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, लीगल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी हो गए, जो डिसर्मामेंट करेंगे, जो आपको रिलोकेट करेंगे, जो आपको पुनरेकीकरण करेंगे, है ना, इलेक्शन में जैसे सहायता करेंगे, उन कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
1: अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि अलग अलग देश जाते हैं वहाँ पर, तो ये कौन तय करता है कि शांति सेना की आवश्यकता कहाँ होगी, किन परिस्थितियों में होगी? क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी पहल पर किसी संघर्ष क्षेत्र जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर शांति सेना तैनात कर सकता है, या किस स्थिति में कैसे कब इसे हम तैनात करेंगे? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल अगर हम वर्तमान की बात करें तो दुनिया भर के कितने स्थानों पर शांति सेना भी कार्यरत है?
0: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो प्राथमिक जिम्मेदारी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है
1: जी।
0: किसी जगह की कॉन्फ्लिक्ट इतनी फ्लेयर अप ना हो जाए कि वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले या जिसमें कई सारी देश शामिल हो जाए, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को वहीं कंटेन करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इनके हाथ भी बने, वो वहीं जा सकते हैं जहाँ वो दो लोग जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ के दोनों पक्ष राजी हों उस बात को लेकर के, है ना। अपनी तरफ से वो जबरदस्ती बल नहीं भेज सकते, उनके पास है ही नहीं, और ना वो इस तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो ये करते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे कि दोनों देशों को राजी करें कि वो शांति समझौते पर वार्ता करें और शांति सैनिकों को बुलाएं, तो उनको उनका निमंत्रण दें, उनको बुलाएं, तब ये शांति सैनिक अपने जाते हैं। तो ये कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस की जो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में सुरक्षा परिषद बोलते हैं, करती है। इसी तरह इनका एक प्राधिकरण है जो एक नए मिशन को आधिकारिक तौर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से अधिकृत कर देता है, है ना। इसमें उनको मैंडेट, मिशन का साइज, भाई उसमें कितने सैनिक भेजे जाएंगे, और वो क्या डिसाइड करता है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कितनी बड़ी है, क्या है और उसका स्वरूप क्या है और उसका उद्देश्य निर्धारित करता है। महासभा जनरल असेंबली जो है उसके बजट को अधिकृत करती है कि ये बजट क्या है, और जो मेंबर देश है के योगदान जो जा रहा है, जो उनका कंटिंजेंट जा रहा है, जो उनका इक्विपमेंट जा रहा है, जो भी उसकी परिपूर्ति वो करती है। तो तनख्वाहें और जो उनका खर्चा है वो सदस्य देश देते हैं, परिपूर्ति में वो लोग भी देते हैं, है ना। अब आपने पूछा था संयुक्त राष्ट्र अपनी पहल पर क्या पीकेएफ तैनात कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि नहीं, वो नहीं कर सकते। आक्रमणकारी सेना की तरह किसी भी संघर्ष क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते, वो सहमति की आवश्यकता है, ये एक कंडीशन है, केवल आत्मरक्षा के लिए भी है। अब इसमें अपवाद भी हैं, जैसे कुछ अस्थिर परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद किसी एक मैंडेट को ऑथराइज कर देती है कि जिससे कि नागरिकों की रक्षा हो सके। अब हम विश्व में देखते हैं कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जहां हद से ज्यादा नागरिकों को नुकसान हुआ है, उनकी हत्याएं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सुरक्षा परिषद ने परिषद हिले ही नहीं। तो कई बार ये विचार आता है कि सुरक्षा परिषद का क्या रोल है, लेकिन जब हम उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तब समझ में आता है कि वो क्या है, वहां पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है, इस तरीके से। इसके लिए एक ये सुरक्षा परिषद ने मिशन की स्थापना के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक पारित करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसे, संकल्प पारित करते हैं, है ना, एक उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि उसको कितना बड़ा मिशन चाहिए, ये जैसे मैंने आपको बताया, उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसके कमांडर कौन होंगे, उसके दल कमांडर तक, मतलब एक पूरा एक सिस्टम है जिसको फॉलो करते हैं, और इसी तरीके

0: से उनको अधिकृत कर दिया जाता है कि वो अपना सेवाएं बिना किसी लीगल हैसल के दे सकें। अभी तक जो है 11 सक्रिय शांति रक्षा अभियान तैनात हैं 3 महाद्वीपों पर। अफ्रीका में है मोनुस्को, देश बता देता हूँ ऐसे तो बताना समझना मुश्किल होगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, यूनिस्फा, साउथ सूडान और वेस्टर्न सहारा। मिडल ईस्ट में है गोलन हाइट्स, लेबनान और जेरूसलम मध्य पूर्व, है ना
1: जी जी।
0: और यूरोप एशिया में है कोसोवो, साइप्रस और भारत पाकिस्तान।
1: अच्छा सर, एक और अगला सवाल ये आता है कि क्या हमारा भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अपना योगदान देता है, और देता है तो कैसे देता है और कहाँ कहाँ भारत ने योगदान दिया है?
0: संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़े
1: जी।
0: और निरंतर योगदानकर्ताओं में से हमारा देश एक है
1: जी जी।
0: आज की तारीख में 5,000 से अधिक कर्मी 9 अभियानों में तैनात हैं। 11 में से 9 अभियानों में हमारे
1: बहुत बड़ा आंकड़ा
0: है। हमारे कर्मी जो है
1: जी,
0: इसमें मिलिट्री, पुलिस और मैंने क्या बताया सिटीजन्स, ये भी इन्वॉल्व हैं। 1950 से लेकर के अभी तक 50 से अधिक अभियानों में 2,90,000 से अधिक कर्मियों को तैनाती दी गई है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा में। और जो प्रमुख योगदान है आज की तारीख में वो है साउथ सूडान, कांगो, अबई, लेबनान, साइप्रस। और भारत का ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत शीर्ष सैन्य योगदान देने वालों में से एक है
1: जी।
0: कई सारे देश देते हैं लेकिन भारत जो है 3-4 देश जो ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक भारत ही भेजता है, और जो अक्सर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है। और ऐतिहासिक रूप से लैंगिक रूप से संवेदनशील शांति रक्षा में हमारे यहाँ से महिलाएं भी गई हैं।
1: अच्छा,
0: लाइबेरिया में तैनात 2007 में लाइबेरिया में तैनात पूर्णता महिला गठित पुलिस इकाई गई थी
1: जी जी।
0: और चूंकि आर्मी में भी अब महिलाएं हैं, अधिकारी लेवल पर भी हैं और लोअर लेवल पर भी हैं, तो वो जाती हैं। मेडिकल हमारे दस्ते जाते हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है उसमें
1: जी जी।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये कंटिजेंट देखते हैं, मिशंस देखते हैं, उसमें भी महिलाओं का काफी योगदान है, उसमें भी महिलाओं की नियुक्तियां होती हैं
1: जी।
0: भारत ने सेना कमांडर काफी दिए हैं कई मिशनों में, सेना कमांडर, सेना सलाहकार, पुलिस सलाहकार भारत ने दिए हैं, सीनियर पदों पर भी लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह काफी हैं। बलिदान में भी 180 भारतीय शांति सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, ये भी बड़े योगदान की बात है और बड़े गर्व की बात है कि सैनिक शांति बहाल करिए, स्वयं का बलिदान देखे।
1: सर, आपने यूमनो गिप का जिक्र किया था, तो ये क्या है और इसे कब तैनात किया गया था, हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: ये यूमनो गिप है, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान
1: जी जी।
0: ये एक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन है जिसे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा की निगरानी का कार्य सौंपा गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शांति रक्षा अभियानों में से, आप सोचिए 48 में इसकी स्थापना हुई थी और 48 से तब से चले आ रहा था
1: जी जी।
0: 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर संघर्ष में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भारत ने किया
1: जी जी।
0: साथ ही पाकिस्तान ने भी किया, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 35 के तहत औपचारिक रूप से ये अनुरोध प्रस्तुत किया था। उस स्थिति का ध्यान देने का आग्रह किया था जहां पाकिस्तानी नागरिकों और जनजातियों को आक्रमणकारी माना जाता है
1: जी जी।
0: वो जनजाति आई थी ना, वहां के ट्राइबल्स आए थे, उन्होंने अटैक किया था, और राज्य के विलय से संबंधित विभाग को हल करने का अनुरोध किया। ये उसी जगह पर हुआ, हर जगह नहीं हुआ कि जम्मू में भी ले लें, तो उसी जगह जहाँ पे ट्राइबल्स आए थे, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ
1: जी जी।
0: और इस मिशन की सहमति, जैसे 3 कंडीशंस बताई नहीं, सहमति भारत ने भी दी
1: जी जी।
0: पाकिस्तान ने भी दी, और सुरक्षा परिषद ने 48 में ही कई प्रस्ताव पारित किए, और उन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप इस ऑब्जर्वर ग्रुप की स्थापना हुई। और कब पहुंचा, ये पहुंचा 24 जनवरी 1949 को, ये पर्यवेक्षकों का पहला समूह जो है पहुंचा कश्मीर में, और युद्ध के बाद स्थापित युद्ध विराम की जो स्थिति बनी थी, जो सीज फायर एग्रीमेंट था, सीज फायर के बाद ही गए थे ये
1: जी जी।
0: तो उसके बाद जो है उसकी निगरानी की जा सके, और इसकी जो फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट, जो औपचारिक स्थापना हुई थी, 30 मार्च 1951 को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से, पहले ये ऑब्जर्वर ग्रुप गया अनौपचारिक रूप से, और जो औपचारिक स्थापना हुई 1951 में हो गई।
1: अच्छा,
0: 1951 में हुई और यूमनो गिप इसको नाम दिया
1: गया जी।
0: तो जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम रेखा
1: जी जी,
0: जो युद्ध विराम रेखा सीज फायर के टाइम पे जो बनी गई थी उसकी निगरानी के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
1: अच्छा सर, हाल ही के अतीत तक पाकिस्तान के साथ चलते इतने सारे संघर्षों को हम देखते हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो यूमनो गिप है ये हमारी मदद किस प्रकार से करता है? क्या ये मिशन कभी प्रासंगिक रहा है, या आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज ये प्रासंगिक है?
0: देखिए, अतीत की बात करते हैं तो जब ये मिशन स्थापित हुआ था तो युद्ध विराम पे जो नियंत्रण रेखा थी उसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया काफी, उस पे काफी नियंत्रण रेखा को पे जो है मिलिट्री कार्रवाई काफी हद तक रोकी गई थी इनके ऑब्जर्वेशन से। बाद के युद्धों में स्पेशली शिमला एग्रीमेंट 1972 का जो हुआ उसके बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई।
1: अच्छा।
0: क्योंकि शिमला समझौता जो हुआ था वो द्विपक्षीय एक समझौता था, तो जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और ये माना कि हम इस स्थिति को अब हम यथास्थिति बना के रखेंगे, नियंत्रण रेखा को ही यथास्थिति बना लेंगे, मान लेंगे एक
1: जी,
0: है ना, और उसको हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। तो जब ये बात मान ली गई तो ये अप्रासंगिक सा ही हो गया।
1: जी जी।
0: तो ये इनका एक हेडक्वार्टर था जो नवम्बर से अप्रैल तक इस्लामाबाद में रहता था
1: जी।
0: और अप्रैल से अक्टूबर में ये श्रीनगर हो जाते, कर्मचारी दोनों जगह रहते थे लेकिन हेडक्वार्टर के जो घटक थे वो दोनों देशों के बीच में रहा करते थे। फिर इनको विस्थापित करके दिल्ली में भेजा गया
1: जी।
0: और सन 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ
1: जी।
0: कश्मीर को, तो फिर हमारा ही हिस्सा हो गया, फिर वो विवादास्पद स्थिति तो रही नहीं। जब विवादास्पद स्थिति रही नहीं तो भारत ने कहा भाई अब ये हमारा विवाद की हमारी कोई स्थिति है ही नहीं, ये हिस्सा हमारा है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, देर इज नो विवाद ऑन दिस, तो आप कृपया जाएं। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी थी कि मिशन को क्लोज कर दिया गया। क्लोज हुआ नहीं। अब इसकी जो स्थिति वो ये है कि भारत कहता है कि ये अब प्रासंगिक है, हमारे बीच में विवाद नहीं है। पाकिस्तान अभी भी अपनी शिकायतें दर्ज कराता रहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि ये हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, अपने आप खत्म नहीं होगा जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास नहीं होगा।
1: जी जी।
0: तो ये मामला यहाँ पे ऐसे अटका हुआ है।
1: अच्छा।
0: तो बड़ा विचित्र सा ये एक अभियान है कि अब
1: जी जी।
0: ये चल भी रहा है
1: जी
0: नहीं
1: जी।
0: भी चल रहा है।
1: हमारे जो शांति सैनिक हैं उनका चयन कैसे होता है और इनकी नियुक्ति कैसे होती है, हम आपसे ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे।
0: इनका चयन आजकल जैसे हमारे आर्मी में है सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ मेरिट के हिसाब से होता है, जिसमें बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं उनके पुराने ऑपरेशंस के जो अनुभव हैं उनको देखते हुए सेलेक्ट करते, एक कमेटी होती जो सेलेक्ट करती है। इसी तरह जो ऑब्जर्वर्स जाते हैं, मिलिट्री अधिकारी जाते हैं, पुलिस अधिकारी जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है उनके सर्विस कार्ड के ऊपर, उनके अनुभवों के ऊपर, उनके सर्विस एक्सपीरियंस के ऊपर, और एक चयन प्रक्रिया होती है जिससे उनको चयनित करके भेजा जाता है। भारत में बहुत सम्मान की बात है यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स में किसी भी तरीके से, किसी भी पद पे, नॉट तरीके से, किसी भी पद पे अपनी सेवाएं देना, ऑब्जर्वर ग्रुप हो या कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप में किसी भी रूप में अपनी सेवाएं देना काफी गर्व का विषय माना जाता है।
1: वास्तव में सर यहाँ आंकड़े तो बहुत कम हैं और किस्से बहुत ज्यादा हैं। हमारी युवा श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो आर्मी में जाना चाहते हैं या यूएन में जाकर शांति के लिए काम करना चाहते हैं?
0: आर्मी में जो भी आते हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, महिलाएं भी हैं जवान या अधिकारी के पद पर, सबका एक ये रहता है, एक मन में रहता है कि हम एक यूनाइटेड नेशंस मिशन में हम अपनी सेवाएं दें। मैंने आपको बताया नहीं, हमारे देश में हमारी सेनाओं में ये बड़े गर्व की बात है, और ये चीज पुलिस में भी है, सिटीजन्स का भी है कि भाई उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर के वहां पे नई तरीके से वहां की अवसंरचना दो संरचनाओं में विकास दिया, तो ये बड़ा सेटिस्फेक्शन की बात रहती है, लोग जाना चाहते हैं। और युवाओं को भी मैं संदेश देता हूँ कि अगर वो जा रहे हैं तो जाएं, और अगर बाहर से भी एज अ नागरिक सिटीजन की तरह से उनको मौका मिलता है तो उसको भी देखें। अगर वो आर्मी में नहीं है, पुलिस में नहीं है, सिटीजन्स में है और उनकी अपनी एक अलग प्रतिभा है, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो मौका देखें, ढूंढें। यूनाइटेड नेशन से काफ़ी सारे वैकेंसीज आती रहती हैं उनकी वेबसाइट पर, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से भी नहीं जाते, कई बार तो यूएन डायरेक्टली भी बुलाते हैं, अलग से भी नियुक्तियाँ हो जाती हैं।
1: जी जी सर, शांति सैनिकों का आज जिक्र हो रहा है, क्या संदेश देते हैं ये शांति सैनिक दुनिया को?
0: इन्वेस्ट इन पीस जो थीम है, शांति बनाए रखें, संघर्ष में ना रहें। संघर्ष जो है काफी नकारात्मक लाता है, आपको पीछे ले जाता है। शांति बनने से ही आपकी तरक्की संभव है, आपको उत्थान है, उसी में ही भलाई है,
1: यही संदेश देता है। बिल्कुल सर, अगले 10 सालों में आप यूएन के मिशन के जो बदलाव है उसे कैसे देखते हैं? अगले 10 सालों में हम क्या कुछ और नया अचीव करने वाले हैं?
0: अगले 10 सालों में यूएन मिशन धीरे धीरे अपनी सार्थकता को बढ़ा रहा है
1: जी।
0: 55 मेंबरों से शुरू हुआ ये यूएन, यूनाइटेड नेशंस, आज 193 मेंबर हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है
1: जी, जी।
0: सदस्य देशों की संख्या बढ़ रही है, इनका दायरा बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इनका जाने का जो ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स ये भेजते हैं, जो भी मिलिट्री ग्रुप्स भेजते हैं, वो भी बढ़ रहा है, इनका दायरा भी बढ़ रहा है
1: जी, जी।
0: लेकिन जो जिन जगहों पर ये नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और दोनों दलों में से किसी ने नहीं बुलाया, या किसी एक ने बुलाया दूसरे ने नहीं बुलाया, वहां पर हस्तक्षेप करने की ये अपनी क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी, ये शायद बढ़ाएंगे, अपनी क्षमताएं बढ़ाएंगे, अपने को मैंडेट इस तरीके से करेंगे कि वहां पर भी हस्तक्षेप कर सकें। क्योंकि कई जगह तो बहुत अन्यायपूर्वक, जिसे कहते हैं ना अत्याचार हुए हैं बहुत, जैसे सीरिया में हुए हैं, आईसिस के एक्शंस हुए हैं, यजिदीज का हुआ है, पूरा जेनोसाइड हुए, तो उसमें किसी ने मतलब इनको ना न्योता दिया नहीं गए, तो ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने की ये क्षमता कैसे बढ़ाते हैं, ये भी इनके लिए चुनौती भरा काम है, उसमें भी आगे बढ़ेंगे जहाँ तक है मुझे लगता है
1: जी।
0: बढ़ना चाहिए
1: सर। आम नागरिकों की अगर हम बात करें, समाज की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो आम नागरिक या हमारा समाज इन शांति सैनिकों के सम्मान में क्या कर सकते हैं?
0: बलिदान जिन्होंने दिया हुआ है शांति सैनिकों के बलिदान में, जो नागरिकों का जिन्होंने जिनकी क्षति हुई है उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जगह जगह जैसे बताया कि पदक अलंकरण समारोह होते हैं, श्रद्धांजलियां होती हैं, और इसी तरह चर्चाएं हो सकती हैं इनकी जागरूकता की, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी एग्जिस्टेंस, कई लोगों को इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं पता कि संयुक्त राष्ट्र बल है क्या, इनके बारे में पता लगे, जागरूकता बढ़ेगी तो युवा भी आगे आएंगे, वो भी इसमें कैसे जाएं वो सब पता लगे, जन जागरण अभियान हो। आज के दिन को जैसे हम अन्य दिवसों को समर्पित करते हैं राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, उसको समर्पित किया जाए और कई सारे इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए जाएं, जहाँ पे इस शांति सुरक्षा बल को और अधिक बल मिले, बढ़ोतरी मिले।
1: तो साथियों, आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। वास्तव में शांति सैनिक बनना आसान नहीं है, जाता भी वही है जिसके पास हिम्मत हो और दिल में दुनिया के लिए दर्द हो। हर किसी का दिल इतना बड़ा तो नहीं होता ना। भारत, हमारा देश भी शांति सैनिक इसीलिए भेजता है ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की उक्ति को चरितार्थ कर सके, दुनिया में युद्ध कम हो, शांति बनी रहे, और इसीलिए भारत का यहाँ 3रा स्थान है। खैर, स्थान से ज्यादा महत्व है योगदान का, और भारत ने यथासंभव सौहार्द, शांति और भाईचारे के लिए हमेशा से ही यथासंभव अपना योगदान दिया है। श्रोताओं, शांति सैनिक भेजने में भारत का दुनिया में भले 3रा स्थान हो, लेकिन बलिदान और अनुभव में पहला स्थान है। हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उन तमाम सैनिकों के लिए जो शांति मिशन में डटे हुए हैं। हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, और जो हमारे लिए अभी भी सेवाओं में हैं, उनके लिए हम सदैव ये कामना करेंगे कि आप सदा सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज की परिचर्चा में उपस्थित थे हमारे साथ हमारे अतिथि महोदय कर्नल अनुराग गुप्ता सर। सर, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी दी और बहुत बड़ा संदेश भी दिया। धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शांति सैनिकों के जो बलिदानी है उनको श्रद्धांजलि देते हुए सभी शांति सैनिकों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शांति के मार्ग में प्रशस्त होते रहे।
1: धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन में, जहां सादा नीरा समागम के दूसरे दिन व्याख्यान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई।
1: ओ नदिया चले चले रे धारा,
0: शाम में बहिरंग में पानी नामा की प्रस्तुति हुई।

ये प्रस्तुति दी इंदौर के सुरांश पाठक और उनके साथियों ने, जिसमें पानी पर आधारित फिल्मी नगमों की प्रस्तुति हुई। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए सदा नीरा समागम में।

बारिश के साथ कई सारे शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, फुहार, बरखा, वर्षा, मूसलाधार वगैरह वगैरह। इन शब्दों को फिल्मी गीतों में भी आवाज मिली है, जैसे घनन घनन बदरा बरसे। तो बरसात की कई यादें अपने साथ लाती हैं ऐसे ही बहुत ही सुहाने से मंजर। जब बातें पानी के सफर की हो तो उससे जुड़ी यादें वो मुसाफिर बन जाती हैं जिसके पास वापसी का टिकट नहीं है। जैसे जिस्म ऑफिस में होता है मगर रूह स्कूल की आखिरी बेंच पर बैठी खिड़की से बारिश के नजारे देख रही होती है। जिस्म शहर में होता है मगर रूह गांव की कच्ची गलियों में बारिश में भीग रही होती है। शायद इसीलिए कभी कभी बिना वजह दिल बोझिल भी हो जाता है, क्योंकि रूह लौट कर एहसास कराती है कि हम वहां खुश थे। यादें देवियों सजनों सरहदों में कैद नहीं रहती, बल्कि हमको आजाद करती चलती हैं। वे बताती हैं कि तुमने मोहब्बत की थी, तुम महसूस करते थे, तुम जिंदा थे, और जो महसूस करना भूल जाए वो जिस्म होते हुए भी मुर्दा है। इसलिए बरसात से जुड़ा हर गीत हम यादों से जोड़ता है और हमारे जिंदा होने की गवाही देता है। जैसे लगान का ये गीत सुनकर एहसास होगा आपको।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: आजाद हिंद फौज का विश्व इतिहास में विशेष महत्व है। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। किसी भी राष्ट्र में किसी सेनानी या जन नेता द्वारा आजादी के लिए साहसी लोगों की इस तरह की सेना तैयार करने के उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। इस फौज की स्थापना भारत से विदेशी शासकों को निकालने की खातिर की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा मलाया और सिंगापुर के भारतीय सैनिकों को एकत्र करके बनाई गई आजाद हिंद फौज का कार्य 4 जून 1943 को सिंगापुर में शुरू हो गया था, जहां स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार भी बनाई गई थी। नेताजी के साथ हजारों भारतीयों ने देश को स्वतंत्र करने का प्रण लिया था। हिंद की सेनाओं ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश फौजों से लड़ाई की। इस सेना की कार्यशैली ने लाखों लाख लोगों को प्रेरणा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आजाद हिंद फौज की बदौलत नए अर्थ मिले थे। आजाद हिंद सरकार को संसार की 3 बड़ी ताकतों जर्मनी, जापान और इटली के साथ 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। मन में नए भारत के निर्माण का सपना लिए आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस भारत की गौरवमयी शख्सियत के रूप में विश्व का अविस्मरणीय इतिहास बन गए।
2: अरे राजू, क्या कर रहा है?
3: समोसे का मसाला बना रहा हूँ काका।
2: अच्छा, नमक मिर्च जरा कम डालना समोसे में। 2 दिन में कम से कम 10 ग्राहक ज्यादा मिर्ची की शिकायत कर चुके हैं।
3: अरे काका, ये मुकेश रोज बातों में उलझा रहता है, मैं क्या करूं? ना तो खुद काम करता, ना मुझे करने देता है।
2: अरे क्यों बेचारे उस गरीब को दोष देता है? ये क्यों नहीं कहता कि रेडियो के इन उल जलूल गानों पर ध्यान ज्यादा रहता है तेरा?
4: राम राम काका।
2: नमस्कार बेटा, नमस्कार।
5: चाय पिलवा दीजिए काका जल्दी से।
2: हाँ बेटा, अभी लगवाता हूँ। अरे राजू, 2 बढ़िया सी चाय बना दे। और बताओ कैसे हो तुम लोग? अरे बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम लोगों का।
4: हाँ काका, आजकल थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में लगे।
2: अरे वो तुम्हारा साथी वहीं क्यों खड़ा है?
5: अरे वो, उसको तो काका दिन रात कान में हेडफोन लगा के एफएम रेडियो सुनने की आदत लग गई है। पढ़ाई भी करता है तो गाने सुनते सुनते।
4: हाँ काका, और इसलिए हमने उसका नाम राकेश रंजन से राकेश रेडियो रंजन रख दिया है।
2: जिसको देखो रेडियो, जहाँ देखो रेडियो, ये भी कोई बात है भला?
5: बात तो है काका, रेडियो ने तो जैसे आजकल क्रांति ला दी है।
2: अरे रेडियो से तो क्रांति तब आई थी जब आजाद हिंद रेडियो से नेताजी बोलते थे।
4: आजाद हिंद रेडियो?
2: हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चलाया रेडियो, जिस पर उनके जोशीले भाषण प्रसारित होते थे और उनसे जैसे पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ जाती थी।
5: अच्छा,
4: लीजिए भाई चाय।
2: हाँ लो चाय, आ गई, चाय पियो तुम लोग। मैं जरा भट्टी देख कर आता हूँ।
4: अरे नहीं काका, अब तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी।
5: हाँ काका, आज तो हम नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज के बारे में जानकर रहेंगे।
2: ठीक है ठीक है, जरा अपने तीसरे साथी को भी बुला लो, जरा उसे भी तो पता चले उस रेडियो की महिमा।
5: अरे रंजन आ जा, ले चाय ले ले।
4: अरे भाई, ओ राकेश रंजन रेडियो।
2: बात असल में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। नेताजी तब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ही थे। उस समय इंग्लैंड युद्ध की मार झेल रहा था और ऐसे में भारतीय 2 खेमों में बंट गए, एक वो जो इंग्लैंड का समर्थन करना चाहते थे और एक वो जो मौका देखकर अंग्रेजों पर वार करना चाहते थे, और नेताजी उन्हीं दूसरे लोगों में से थे।
4: तो क्या नेताजी के इस रवैये पर किसी को कोई एतराज नहीं था?
2: बिल्कुल था, और इसीलिए पार्टी से वो अलग भी हो गए थे। लेकिन ये उनकी लोकप्रियता का ही असर था कि पार्टी से बाहर होने के बावजूद उन्हें उस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया गया।
6: आप लोग समझते क्यों नहीं, यही सही समय है अंग्रेजों पर वार करने का।
7: देखो, तुम स्वतंत्रता प्राप्ति का जो मार्ग अपनाना चाहते हो उसका कोई छोर नहीं है। आजादी का मार्ग अहिंसा से ही प्रशस्त हो सकता है।
6: महानुभाव, क्षमा कीजिए, मैं भी कोई हिंसा का अनुगामी नहीं, लेकिन देश हित के लिए शस्त्र उठाना कोई गलत बात भी नहीं। और फिर
8: क्या सुभाष बाबू, अंग्रेज पहले ही जर्मनों से घिरे हैं, यही ना। पर आप ये क्यों नहीं समझते कि हम हिंदुस्तानी तब भी उनसे लड़कर मुकाबला नहीं कर सकते।
6: क्यों नहीं कर सकते? देखिए ना, इस समय जर्मनी का हिटलर इंग्लैंड पर लगातार हमले कर रहा है। वो एक तरफ से बुरी तरह घिरे हुए हैं और इस दूसरी तरफ से हम उन्हें घेर कर ज्यादा मुसीबत में डाल सकते हैं।
7: नहीं नहीं, ऐसे में तो हम स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरा विचार तो यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में यदि हम अंग्रेजों का साथ दें, उनका संबल बने, तो हमें अवश्य ही कुछ प्रतिसाद मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है?
6: यदि आप सब ऐसा ही सोचते हैं तब भी मैं आपके साथ नहीं हूं। अब हमारे मार्ग अलग होंगे। आप अपनी तरफ से स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश करें और मैं अपने मार्ग पर चलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।
9: क्यों भाई, पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष बाबू तो अलग ही पड़ गए।
4: वो अलग पड़ने वालों में नहीं है भाई।
10: मैंने सुना है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है
4: और अब तो उनसे लोग जुड़ने भी शुरू हो गए हैं।
8: सुना आपने, सुभाष अब खुद ही नेताजी हो गए हैं। उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है और अब तो उनकी बातों का असर जनता पर भी होने लगा है।
7: लेकिन कितने लोगों पर होगा? मुट्ठी भर लोगों का साथ पाकर भला अंग्रेजों का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। आप तो ये बताइए कि 20 मार्च को होने वाले अधिवेशन की क्या तैयारी है?
8: उस अधिवेशन का सारा कार्य मौलाना अबुल साहब को सौंप दिया गया है। वे ही उस दिन जनता को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि इस समय अंग्रेजों का साथ देने में ही हमारा हित है।
7: कौन है भाई?
11: जी पत्र है।
7: लाइए।
8: क्या बात है?
7: लिखा है कि हमारे अधिवेशन के ही दिन सुभाष बाबू भी रामगढ़ में जनता को संबोधित करने वाले हैं और उनका यह उद्बोधन समझौता विरोधी होगा। पता नहीं अब क्या होगा।
8: अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, उनके अपने विचार हैं, वो जब चाहे व्यक्त करें। चलिए देखते हैं क्या होगा 20 तारीख को।
12: शांत हो जाइए सब लोग। आप लोग बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें। सभा को अब हमारे नेताजी संबोधित करेंगे।
13: यहां उपस्थित भारत माता के वीर सैनिकों, आप सब जानते हैं कि हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम अंग्रेजों का साथ देने की नीति का विरोध करते हैं। अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भीख मांगने से स्वाधीनता कभी नहीं मिलेगी। स्वाधीनता प्राप्त करने का एक ही हथियार है और वो है युद्ध। अब यूरोप की हर एक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की भारत में पकड़ ढीली होती जाएगी। इस समय भारतवासियों को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय हिंद,
14: जय हिंद।
4: नेताजी को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त तो समर्थन मिल ही गया?
2: नहीं, उनके साथ कार्यकर्ता तो बहुत जुड़ गए थे पर बाकी कहीं से भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा था। ऊपर से उस वक्त उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।
5: तब तो सारा आंदोलन ठप पड़ गया होगा।
4: और काका, वो रेडियो वाली बात का क्या हुआ?
2: हाँ, बताता हूँ भाई। असल में नेताजी ने तो जेल में ये कहकर भूख हड़ताल शुरू कर दी कि या तो रिहाई दो या मौत। बहुत मनाने पर भी वो नहीं माने। ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद

0: आइए आइए, कहिए
1: जी। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं एक भारतीय हूं। अंग्रेजों से अपने देश को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और इसी संबंध में आपसे कुछ मदद चाहता हूं।
0: मुझसे मदद? कैसी मदद चाहते हैं?
1: देखिए, आपकी जर्मन जेलों में जो भारतीय कैदी हैं, आप उन्हें रिहा कर दीजिए।
0: क्या?
1: जी, मैं उन बंदियों का इस्तेमाल ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष में करूंगा।
0: लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं?
1: आप कृपया मेरी बात को समझें। देखिए, एक तरफ आपके देश की सेना ने अंग्रेजों को पहले से ही घेर रखा है, दूसरी तरफ मैं अगर इन साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करूं तो अंग्रेज काफी कमजोर हो जाएंगे।
0: तो आपका मतलब है कि ये हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ेंगे?
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सारे भारतीय बंदियों को आज और अभी रिहा किया जाता है, जाइए, आप लोग जा सकते हैं।
3: अरे ये अचानक जर्मन सरकार को हम भारतीयों पर इतनी दया कैसे आ गई?
4: कोई बात तो जरूर है।
5: हाँ, एकदम से उन्होंने हमें क्यों रिहा किया जबकि हमारी सजा तो अभी पूरी नहीं हुई?
3: लगता है इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई उद्देश्य होगा।
6: चाल नजर आती है तो
7: नहीं, कोई कारण तो
8: हमें छोड़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा,
9: जरूर होगी हमें छोड़ने की।
2: आइए आइए, आप सबका स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया, आप सबको रिहा कराने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और
5: आप भारत से आए हैं। आपको कौन भारतीय नहीं जानता सुभाष बाबू। स्वतंत्रता प्राप्ति की आपकी कोशिशों के बारे में हम सब ने सुन रखा है, लेकिन हम आपके किस काम आ सकते हैं?
2: भाइयों, आप लोग एक काम करें, इतने समय बाद आजाद हुए हैं तो आज आराम कर लें, कल सभी एक जगह इकट्ठा होकर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, इतना तो मैंने कल आप सबको बता ही दिया था कि एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको रिहा कराया गया है। मैं अब चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर भारत माता को स्वतंत्र कराने में मेरी मदद करें। हम सब मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे।
10: लेकिन हम तो केवल 30-35 लोग हैं।
11: और हाँ भाई, फिर इतनी दूर जर्मनी से हम भला भारत को कैसे आजाद करा सकते हैं?
2: साथियों, जहां चाह है वहां राह है। देखिए, बात यदि संख्या की ही है तो आपकी ही तरह हमारे हजारों साथी इटली और यूरोप के देशों में बंदी हैं। हम उन्हें भी किसी ना किसी तरह छुड़ा लेंगे। और रही बात दूरी की, तो हौसला होने पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। कहिए, क्या कहते हैं आप लोग, देंगे मेरा साथ? बताइए, क्या आप अपनी मातृभूमि का ऋण अदा नहीं करेंगे? तो ठीक है साथियों, आज से हम सब एक हैं, हमारा उद्देश्य भी एक है। हम सब जब भी मिलेंगे तो नमस्ते नहीं कहेंगे, जय हिंद बोलेंगे और हमारा नारा होगा, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद
12: जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
12: जिंदाबाद।
5: और हम सब आपको नेताजी कहेंगे, हमारे नेताजी। नेताजी
12: जिंदाबाद,
5: नेताजी
12: जिंदाबाद,
5: नेताजी
12: जिंदाबाद।
10: पर नेताजी, हमारे संगठन का पहला उद्देश्य तो और साथियों को जोड़ना ही तो होगा ना?
2: नहीं, हमें सबसे पहले अपनी आवाज हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे तक पहुंचानी होगी, ताकि दूसरे हजारों हिंदुस्तानी भाई भी आजादी की राह पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें।
10: नेताजी, लेकिन ये सब जर्मनी में रहकर कैसे संभव है?
2: हम अपनी बातों को अपने देश तक पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करेंगे।
13: रेडियो का? रेडियो का इस्तेमाल?
2: हाँ साथियों, हमारे रेडियो का नाम होगा आजाद हिंद रेडियो, जिससे कहीं हमारी हर बात आजादी का एक नया द्वार खोलेगी और सात समंदर पार होते हुए भी हर एक हिंदुस्तानी को झकझोरेगी। आजाद हिंद
12: जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
12: जिंदाबाद।
14: नमस्कार, हम आजाद हिंद रेडियो बर्लिन से बोल रहे हैं और अब आपसे मुखातिब होंगे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्यारे भारतवासियों,
4: वो समय आ गया है जब हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। देश को आजाद कराने का मार्ग हमें स्वयं बनाना होगा। अब ये समय अनुनय विनय का नहीं, गोरों को मौन की भाषा समझ नहीं आती। हमें अपनी चुप्पी तोड़ना ही होगी और मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना ही होगा। जय हिंद।
14: अभी आप सुन रहे थे बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण, जिसमें नेताजी ने बताया कि भारतवासियों के लिए
0: कौन है?
1: अरे भाई मैं हूँ, मैं बनवारी।
0: अच्छा तू है, रुक जा खोलता हूँ।
1: हाँ क्यों, क्या हुआ? अच्छा लगता है तू चुपके चुपके आजाद हिंद रेडियो सुन रहा था।
0: हाँ भैया चुपके ही सुनना पड़ता है, कहीं अंग्रेजों ने सुन लिया तो
1: क्या कर लेंगे। अब तो हम ही नहीं, आजाद होने की चाहत में पूरा हिंदुस्तान आज नेताजी का आजाद हिंद रेडियो सुनता है।
0: हाँ सो तो है, देखना नेताजी देश को जरूर आजाद करा के रहेंगे।
2: जी नेताजी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। आप क्या कह रहे थे?
5: नेताजी खबर मिली है कि हमारे प्रसारण का असर हिंदुस्तान में अब दिखने लगा है।
11: जी, एक तरफ जहां आज हिंदुस्तानी हमारी बातों से प्रेरित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की नींद उड़ गई है।
2: ये सब तो ठीक है, याद रखें यह हमारे उद्देश्य का पहला चरण है। हमारा प्रसारण नियमित अंतराल पर होता रहेगा। अब हमारा अगला काम है अपने साथ और भी साथियों को जोड़ना, और इसके लिए हमें परदेश में ही दूसरे हिंदुस्तानी भाइयों को ढूंढ निकालना होगा।
5: नेताजी एक जानकारी के मुताबिक हमारे 10,000 हिंदुस्तानी भाई जर्मनी के ही एनाबर्ग कैदखाने में कैद हैं।
11: जी, और इसी तरह इटली की जेलों में भी कई भारतीय बंदी हैं। यदि ये सब हमारे साथ मिल जाए तो हमारा संगठन बेहद मजबूत हो जाएगा।
2: बहुत अच्छे, तो फिर मैं जल्दी ही इसके लिए इटली और जर्मनी सरकार से बात करता हूँ। आजाद हिंद
12: जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
12: जिंदाबाद।
0: आइए नेताजी, कहिए कैसे आना हुआ?
2: बस फिर एक बार आप लोगों को मदद करनी होगी।
0: किस तरह की मदद चाहते हैं आप?
2: जिस तरह आपने पहले हमारी मदद की थी।
0: तो मतलब कोई कैदी बचे नहीं?
2: मैं आपकी जेल में बंद कैदियों के बाद जैसे आप कहेंगे
14: ये बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। समस्त हिंदुस्तानियों को ये जानकर हर्ष होगा कि आजाद हिंद फौज का विस्तार हो चुका है। जर्मनी और इटली की जेलों में बंद हजारों भारतीय बंदी अब नेताजी के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाएंगे और भारत को आजादी का सूरज दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
2: आजाद हिंद फौज में आए नए सैनिकों का स्वागत है। आइए हम सब प्रण लें कि हम अपनी आखिरी सांसों तक मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हम अपना जीवन स्वतंत्रता पथ पर न्यौछावर कर देंगे। आप सबका नेता होने के नाते मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम आजाद होकर ही रहेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद
12: जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
12: जिंदाबाद,
11: नेताजी
12: जिंदाबाद,
11: नेताजी
12: जिंदाबाद।
2: ये सही है कि अब हमारा संगठन काफी बड़ा हो गया है, लेकिन हम सबको ये याद रखना होगा कि बिना तैयारी के इम्तिहान नहीं दिया जाता। युद्ध के पहले हम सबको कठिन प्रशिक्षण के दौर से गुजरना होगा, और मैंने इसके लिए जर्मन सैन्य अधिकारियों से बात भी कर ली है। मैं ये भी जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग सेना में या फिर कहीं दूसरे स्थान में बड़े पदों पर आसीन रहे होंगे, लेकिन यहां हम सबको एक सैनिक की तरह काम करना होगा। हम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। हम सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आजादी है, और इससे परे हमें कोई सरोकार नहीं।
12: आजाद हिंद जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
12: जिंदाबाद,
11: नेताजी
12: जिंदाबाद,
11: नेताजी
12: जिंदाबाद।
10: नेताजी किस सोच में पड़े? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी?
2: नहीं नहीं, मैं श्री राज बिहारी बोस के बारे में सोच रहा था।
10: वो कौमी वीर राज बिहारी बोस जी?
2: हाँ, वो पिछले काफी समय से जापान में रहकर हमारी तरह ही भारत माता को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम उनसे मिल जाएं, तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी।
10: और हम यहाँ जर्मनी में और वो जापान में।
6: नेताजी सुबह पत्र आया था आपके लिए।
2: देखो तो जरा किसका पत्र है।
10: अरे नेताजी, ये उन्हीं राज बिहारी बोस जी का पत्र है जापान से।
2: क्या?
10: हाँ, लिखते हैं कि आप ही की तरह उन्होंने भी जापान में एक बड़ी फौज तैयार की है।
2: अच्छा।
10: और अब बुजुर्गियत के चलते वो इसकी कमान आपको सौंपना चाहते हैं, और इसीलिए आपको जापान बुलाया है।
2: और आगे पढ़ो।
10: आगे लिखते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीय तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं, आओ और मुझे मुक्ति दो।
2: मैं सोचता हूँ यही ठीक भी रहेगा, क्योंकि जापान से भारत की गतिविधियों पर नजर भी आसानी से रखी जा सकती है। हम जल्द से जल्द अब जापान जाएंगे।
10: लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? विश्व युद्ध के चलते आपकी यात्रा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
2: वैसे भी प्राणों के संरक्षण के बाद त्याग ही होता है, तो फिर त्याग से बचाव कैसा? जर्मन सरकार को लिख दो कि हम अपनी जिम्मेदारी पर जापान जाने के लिए तैयार हैं, हमारी यात्रा का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाए।
10: जैसा आप कहें।
2: आजाद हिंद फौज की ताकत बढ़ाने और एशिया के देशों का समर्थन हासिल करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा। और फिर अब मैं मातृभूमि के और भी पास हो जाऊंगा।
9: आज की ताजा खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे।
15: जापान जाते वक्त नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो
16: रहा है। अरे ना, दिखाना दिखाना।
17: अच्छा, विमान।

0: रेडियो लगा
1: चला। नमस्कार, ये आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। अब आप सुनिए स्वयं नेताजी को। मैं सुभाष बोल रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश संवाददाता ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया है कि मैं टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में मारा गया हूं। मैं मर जाऊं इस बात की उन्हें खुशी होगी और वे यही चाहते भी हैं, परंतु उनका दुर्भाग्य है कि मैं आज भी जिंदा
2: हूं।
3: मतलब वो खबर अंग्रेजों की एक चाल थी।
4: हाँ भाई हाँ,
5: यानी कि नेताजी सुरक्षित जापान पहुंच गए थे।
4: हाँ, न सिर्फ वो जापान पहुंचे बल्कि उन्होंने जल्द ही वहां पर काम करना शुरू भी कर दिया। एक सम्मेलन में राजबिहारी बोस ने संपूर्ण आंदोलन की बागडोर नेताजी के हाथों में सौंप दी।
6: मित्रों, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए आज तक सेना की कमी थी, आपने वो कमी पूरी कर दी। स्वाधीनता की लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई आजाद हिंद फौज की ही होगी। हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली चलो का नारा लगाते अब हमें तब तक चलते जाना है जब तक कि हमारा राष्ट्रीय झंडा नई दिल्ली के वॉइसराय भवन पर नहीं फहराने लगे और आजाद हिंद फौज पुराने लाल किले के अंदर विजय परेड ना करे।
7: भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजाद हिंद।

0: जल्द ही आजाद हिंद फौज ने ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अरे हाँ, उसके पहले नेताजी की बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि उनकी कोशिशों के चलते आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद सरकार घोषित कर दिया गया। फौज को सबसे पहले जापान ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दी। उसके बाद चीन, इटली, आयरलैंड और सिंगापुर ने भी आजाद हिंद सरकार को अपनी मान्यता दी।
1: अरे वाह, मतलब देश की आजादी के पहले सरकार भी बन गई और दूसरे देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया।
2: तो फिर क्या हुआ काका?
0: और उसके बाद भी कई लड़ाइयां लड़ी नेताजी ने और उनकी आजाद हिंद फौज ने, और लगातार कोशिश करते रहे आजादी के लिए। पर उसके बाद नेताजी का क्या हुआ, ये तो आज तक भी एक रहस्य ही बना हुआ है।
1: मतलब
0: भाई, कोई कहता है कुछ घटना दुर्घटना हो गई, तो कोई उनके गुमशुदा होने की बात कहता है।
1: सच काका, देश प्रेम की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी जहां एक अकेले आदमी ने न सिर्फ अपने दम पर देश की सरहदों को पार किया बल्कि लाखों लोगों को देश प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी किया।
0: हाँ, तो असली रेडियो का मतलब अब समझ में आ गया होगा, क्यों भाई रेडियो रंजन?
3: चलिए काका, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई।
0: अरे बेटा, तुम जैसे नौजवानों को ये सब बताना तो मेरा फर्ज है।
1: तो फिर काका, अगली बार भी फर्ज निभाने के लिए तैयार रहिएगा, हम जल्दी आएंगे।
0: जरूर आना। नमस्कार, जरूर काका। नमस्कार नमस्कार।
4: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओं, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खम्बे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी महर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हाड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूँ। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से 2 सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थीं। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नृत्य की पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधियां में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द ट्रैक।

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसी में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे श्रोताओं।
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालीदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी सांस पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और इनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा,
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों, चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: 9 दिसंबर रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई। स्वामी जी मठ के कार्य प्रणाली से खुश थे। एक दिन स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली के द्वारा घेरे हुए शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे। इसी समय साधु नाग महाशय उनके दर्शन के लिए मठ में पधारे। श्री रामकृष्ण देव की इन दो सृष्टियों का बहुत दिनों बाद आनंद सम्मेलन हुआ। एक शिष्य सन्यास का चरम आदर्श है और दूसरा है मूर्तिमान गार्हस्थ धर्म।
1: स्वामी जी ने प्रणाम करके पूछा,
2: प्रणाम महाशय, आप अच्छे तो हैं ना?
3: आपका दर्शन करने आया हूं। जय शंकर जय शंकर। साक्षात शिव दर्शन हुए।
0: नाग महाशय सब कुछ भूलकर तन्मय होकर स्वामी जी को देखे जा रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें प्रसाद देकर उपस्थित जनों से कहा,
2: देख रहे हो, नाग महाशय को देखो। आप गृहस्थ हैं परंतु जगत है या नहीं ये भी नहीं जानते, सदा तन्मय रहते हैं। इन सब ब्रह्मचारियों और हम लोगों को श्री राम कृष्ण देव की कुछ बातें सुनाइए।
3: ये आप क्या कहते हैं, भला मैं क्या कहूंगा। मैं आपको देखने आया हूँ, श्री राम कृष्ण देव की लीला के सहायक महावीर जी का दर्शन करने आया हूँ। श्री राम कृष्ण देव की बात अब लोग समझेंगे। जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण।
2: आप ही ने वास्तव में श्री राम कृष्ण देव को पहचाना है, हम तो केवल भटकते रह गए।
3: ठीक ठीक ठीक ठीक, ये कैसी बात आप कहते हैं। आप श्री राम कृष्ण देव की छाया हैं, सीधा बाजू और उल्टा बाजू, जिसकी आंख हो देख ले।
2: ये सब जो मठ आदि हो रहा है वो क्या ठीक है?
3: मैं क्षुद्र जीव हूँ, क्या समझता हूँ। आप जो कुछ करते हैं निश्चित जानता हूँ, उससे जगत का कल्याण होगा, मंगल होगा।
2: मैं एक बार आपके घर आऊंगा।
3: हाँ, क्या ऐसा दिन आएगा? मेरा घर काशी बन जाएगा, क्या ऐसा मेरा भाग्य होगा?
2: मेरी तो इच्छा है, पर जब मां ले जाए तब तो हो।
3: आपको कौन समझेगा, दिव्य दृष्टि खोले बिना आपको पहचानने का उपाय नहीं है। एकमात्र श्री राम कृष्ण देव ने ही आपको पहचाना था। शेष सभी लोग केवल उनकी बात पर विश्वास करते हैं, आपको कोई समझ ना सका। हाँ,
2: मेरी इस समय एकमात्र इच्छा है देश को जगा दूं। मानो महावीर अपनी शक्ति पर विश्वास खोकर सो रही हैं, चूं तक नहीं करते। सनातन धर्म के भाव को देशवासियों में किसी प्रकार यदि भर सकूं तो समझूंगा कि श्री राम कृष्ण देव और हम लोगों का आना सार्थक हुआ। केवल यही इच्छा है, मुक्ति फुक्ति सब तुच्छ लगती हैं। आप आशीर्वाद दीजिए, हमें सफलता प्राप्त हो।
3: श्री राम कृष्ण देव का आशीर्वाद है। आपकी इच्छा की गति को कोई पलट सके ऐसा कोई देखने में तो नहीं आता। आप जो चाहेंगे वही होगा।
2: कहां, कुछ भी तो नहीं होता। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता।
3: उनकी इच्छा और आपकी इच्छा एक हो गई है। आपकी जो इच्छा वही श्री राम कृष्ण देव की इच्छा है। जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय राम।
2: नाग महाशय, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ कुछ समझ नहीं आता। एक एक समय एक एक बात की ओर प्रबल झुकाव आ जाता है, उसी के अनुसार काम किए जा रहा हूँ। इससे भला हो रहा है या बुरा कुछ समझ नहीं आ सकता।
3: श्री राम कृष्ण देव ने जो कहा था कि आप संदूक में बंद हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं। समझने के साथ ही लीला समाप्त हो जाएगी। हाँ, लीला समाप्त हो जाएगी।
0: नाग महाशय के साथ स्वामी जी की तुलना करते हुए नट सम्राट गिरीश बाबू ने कहा था,
4: महामाया दो व्यक्तियों से हार मान गई है। स्वामी जी को महामाया जितना ही बांधने जाती है, स्वामी जी उतने ही बड़े बन जाते हैं। माया की रस्सी उन्हें बांध नहीं पाती और नाग महाशय इतने छोटे बन जाते हैं कि रस्सी की गांठ के भीतर से फिसल जाते हैं।
1: एक दिन हितवादी अखबार के संपादक श्रद्धेय पंडित सखाराम गणेश देवस्कर अपने मित्रों के साथ स्वामी जी के दर्शन करने आए। वार्तालाप के सिलसिले में पंडित देवस्कर के मित्रों में से एक को पंजाबी जानकर स्वामी जी उनके साथ पंजाब प्रांत की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा,
2: भारतीय जनता के दैन्य दुख, अशिक्षा तथा सामाजिक जीवन की दुर्दशा को दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व है और इस उद्देश्य से प्राणपण चेष्टा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।
1: राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं के प्रधान प्रधान विषयों का वर्णन स्वामी जी ओजस्वी भाषा में करने लगे। काफी देर तक वार्तालाप के बाद पंडित जी ने विदा ली। इसी समय उनके साथी पंजाबी मित्र ने स्वामी जी से कहा,
5: जी स्वामी जी, आपसे धर्मोपदेश सुनने के लिए हम बड़ी दूर से बड़ी आशा करके आए थे, परंतु दुर्भाग्य से अति साधारण विषयों पर चर्चा हुई। ओ जी, आज का दिन बड़ा ही व्यर्थ गया स्वामी जी।
1: स्वामी जी का मुखमंडल व्यथित करुणा से गंभीर हो उठा। वे धीर भाव से बोले,
2: सज्जन, जब तक मेरी जन्मभूमि का एक कुत्ता भी भूखा रहेगा तब तक उसे रोटी देना ही मेरा धर्म है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है अधर्म है।
0: स्वामी जी के देहत्याग के वर्षों बाद इस बात का उल्लेख कर पंडित देवस्कर जी ने कहा था कि स्वामी जी का वो गंभीर समवेदनापूर्ण कथन उनके दिल में सदा जागृत रहा है। उसी दिन से उन्होंने समझा है कि वास्तव में देश प्रेम किसे कहते।
1: हमने पहले उल्लेख किया है कि इससे पूर्व 16 दिसंबर को ही स्वामी जी ने दूसरी बार इंग्लैंड और अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की थी। इस समय ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में समुद्र यात्रा से संभवतः उनके स्वास्थ्य को लाभ होगा। इसी आशा से उनके मित्र व चिकित्सक गण उन्हें यात्रा के लिए अनुरोध करने लगे। अंत में 10 जून स्वामी जी का इंग्लैंड यात्रा का दिन नियत हुआ। स्वामी जी के साग्रह अनुरोध से स्वामी तुरियानंद जी ने उनका साथी बनना स्वीकार किया। बालिका विद्यालय के आवश्यक कार्य के लिए भगिनी निवेदिता ने भी इंग्लैंड जाने की इच्छा प्रकट की।
0: 31 जुलाई को स्वामी जी लंदन पहुंचे। टिलबरी डॉक में उतरकर अपने अंग्रेज शिष्य और शिष्याओं के बीच दो अमेरिकन शिष्याओं को स्वागत के लिए आए देख स्वामी जी कुछ विस्मित व आनंदित हुए। वे दोनों समाचार पत्रों द्वारा स्वामी जी के इंग्लैंड आगमन का संवाद पढ़कर गुरु दर्शन की तीव्र इच्छा से डेट्रॉयट से लंदन आई थी। स्वामी जी लंदन से कुछ दूरी पर विंबलडन नामक स्थान में निवास करने लगे। इस बार स्वामी जी ने दर्शनार्थी जिज्ञासुओं के साथ धर्मालोचना करने के अतिरिक्त जनता के लिए कोई भाषण नहीं दिया।
1: अंत में अमेरिका से बार बार बुलाए जाने पर 16 अगस्त को गुरु भाई तुरियानंद तथा दोनों अमेरिकन शिष्याओं के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क की ओर यात्रा की। इस समुद्री यात्रा के संबंध में स्वामी जी की शिष्या श्रीमती फंकी ने लिखा है,
6: समुद्र पर व्यतीत किए हुए 10 दिनों की स्मृति कभी भूलने की नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल गीता का पाठ व व्याख्या होती थी और कभी कभी हम लोग संस्कृत कविता और कहानियों की आवृत्ति तथा अनुवाद सुनते थे। कभी प्राचीन वैदिक प्रार्थना मंत्रों का पाठ होता था। समुद्र शांत था, मनोहर चांदनी से रात्रि चमक रही थी। एक दिन गुरुदेव डेक पर टहलते हुए प्राकृतिक सौंदर्य के संबंध में हमें समझा रहे थे। उज्जवल चांदनी में उनका विशाल सुंदर शरीर बड़ा ही मनोहर लग रहा था। इसी समय एकाएक खड़े होकर वे कह उठे,
2: माया राज्य के दृश्य जब इतने सुंदर हैं, तो सोचो इसके पीछे विद्यमान वे कितने सत्य स्वरूप ईश्वर स्वयं सुंदर होंगे।
0: न्यूयॉर्क पहुंचकर आचार्य देव को श्रीमान और श्रीमती लिगेट ने बड़े आदर पूर्वक अपना अतिथि बनाया। उनके साथ थोड़े दिन रहकर उनके अनुरोध से फिर उसी दिन तीसरे प्रहर गुरु भाई तुरियानंद के साथ न्यूयॉर्क से 150 मील दूर स्थित उनके गांव के मकान रिजले मैनर में रहने के लिए वे चल गए। स्वामी जी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य देखकर सहृदय लिगेट दंपत्ति ने एकदम उन्हें प्रचार का कार्य प्रारंभ करने नहीं दिया, इस भय से कि उनका बिगड़ा स्वास्थ्य अधिक परिश्रम से कहीं और न बिगड़ जाए, उन्होंने स्वामी जी की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी।
1: एक माह के बाद निवेदिता इंग्लैंड से वहां आ गईं।

0: धन्यवाद देने लगे। अभेदानंद जी एक दिन बाद ही वेदांत समिति संबंधी कार्य के लिए न्यूयॉर्क लौट गए।
1: अनेक शिक्षित नर नारी जो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें तथा भाषण आदि पढ़कर उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, इस समय उनके अमेरिका में आने का समाचार पाकर उनके दर्शन की इच्छा से न्यूयॉर्क आने लगे। स्वामी जी भी बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को आदर के साथ स्वागत करते हुए उनकी धर्म संबंधी समस्याओं को दूर कर दिया करते थे।
0: पुराने मित्र शिष्य और शिष्याओं के आग्रह पूर्वक निमंत्रण पर वे न्यूयॉर्क के आसपास बोस्टन, ब्रुकलिन आदि कई स्थानों में गए। इस प्रकार अंतरंग भक्त और मित्र मंडली के साथ 2 सप्ताह सानंद बिताकर स्वामी जी ने कैलिफोर्निया की ओर यात्रा की।
1: कैलिफोर्निया के रास्ते में स्वामी जी को बाध्य होकर शिकागो में उतरना पड़ा। मित्र व भक्त मंडली के आग्रह की वे उपेक्षा न कर सके। शिकागो निवासियों ने स्वामी जी के सम्मान के लिए अभ्यर्थना की तैयारी में कोई कसर नहीं रखी। स्वामी जी ने शिकागो में कुछ दिन रहकर नए व पुराने भक्तों की आकांक्षा को पूर्ण किया। अंत में उनसे विदा लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में वे कैलिफोर्निया पहुंचे। सन 1900 के जून मास से लगातार 7 महीने तक उन्होंने इस प्रांत में निवास किया।
0: कैलिफोर्निया की प्रथम नगरी लॉस एंजलिस में पदार्पण करने के साथ ही स्वामी जी को श्रीमती ब्लोजेट ने अपने घर में आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। उनकी शिष्या कुमारी मैकलियॉड भी वहां पर पहले से ही निवास कर रही थी। स्वामी जी के आगमन के थोड़े ही दिन बाद प्रतिदिन बहुसंख्यक नर नारी उनके दर्शनों के लिए आने लगे। स्वामी जी की पुस्तकों का अध्ययन कर अनेक व्यक्ति ऐसे मुग्ध हुए थे कि ये जानकर कि वे आजकल लॉस एंजलिस में पधारे हैं, दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल व तीसरे प्रहर नियमित रूप से प्रश्नोत्तर सभा होने लगी। अंत में जनता के आग्रहपूर्ण अनुरोध से उन्होंने फिर भाषण देना स्वीकार किया।
1: इन भाषणों के बारे में श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था,
2: इस अप्रतिद्वंदी प्राच्य प्रचारक के अतुलनीय आध्यात्मिक संदेश की महिमा की चर्चा कैलिफोर्निया प्रांत के नगर नगर गांव गांव में होने लगी। ऑकलैंड से स्वामी जी फरवरी मास के अंत में कैलिफोर्निया की राजधानी सैन फ्रांसिस्को में पधारे। आने वाले उनके दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात की ओर ध्यान रखते हुए स्थानीय मान्य तथा शिक्षित व्यक्तियों ने टकर स्ट्रीट में एक विशाल भवन का प्रबंध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद ही स्वामी जी ने स्थानीय गोल्डन गेट हॉल में हजारों श्रोताओं के सम्मुख अपना प्रथम तथा प्रसिद्ध सार्वजनीन धर्म का आदर्श नामक शीर्षक भाषण दिया। मंत्रमुग्ध जैसी जनता ने एकाग्रचित होकर श्रद्धा के साथ लगभग 2 घंटे तक खड़े रहकर उनके श्रीमुख से निकली हुई अमृत मधुर सत्य की वाणी का श्रवण किया। भाषण के बाद स्वामी जी के आसन ग्रहण करने पर जनता उच्च कंठ से उन्हें धन्यवाद देने लगी।
0: कर्म के इस प्रवाह के बीच में भी समय समय पर उनका पवित्र मन एक अज्ञात भाव राज्य में डूब जाता था। इस प्रकार उच्च भाव से अभिभूत होकर स्वामी जी ने अपनी शिष्या कुमारी मैकलाउड को 18 अप्रैल 1900 को लिखा था,
3: कर्म करना सभी समय कठिन है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि हमेशा के लिए मेरा काम करना बंद हो जाए और मेरा समग्र मन प्राण श्री मां की सत्ता में एकाकार हो जाए। उनका कार्य वे ही जाने। मैं अच्छा हूं, मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, शरीर की बजाय मन की शांति व स्वच्छंदता का ही बहुत अधिक अनुभव कर रहा हूं। युद्ध में हार जीत दोनों ही हुई, अब बोरा बिस्तर बांधकर उस महान मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में बैठा हूं। अब शिव पार करो मेरी नैया, हे शिव मेरी नैया पार लगा दो प्रभु। मैं पैदा हुआ था इससे खुश हूं,

0: इतना जो दुख भोगा है उस पर भी खुश हूं। जीवन में कभी कभी बड़ी बड़ी भूलें की हैं, इस पर भी खुश हूं। फिर अब जो निर्वाण के शांत समुद्र में डुबकी लगाने जा रहा हूं, इसमें भी खुश हूं। मेरे लिए संसार में फिर लौटना होगा। मैं किसी को किसी बंधन में छोड़कर नहीं जा रहा हूं, अथवा इस प्रकार का बंधन मैं किसी से लेकर भी नहीं जा रहा हूं। देह जाने के बाद मुझे मुक्ति हो अथवा देह रहते ही मुक्त हो जाऊं, पता नहीं। परंतु वो पुराना विवेकानंद चला गया है, हमेशा के लिए चला गया है और नहीं लौटेगा। शिक्षादाता, गुरु, नेता, आचार्य चला गया, पड़ा हुआ है केवल पहले वाला वही बालक, प्रभु का वही चिर शिष्य, चिर पदाश्रित दास।
1: स्वामी जी के कैलिफोर्निया छोड़ने के कुछ दिन पूर्व कुमारी मिन्नी सी बुक नामक उनकी एक भक्तिमती शिष्या ने एक स्थायी मठ की स्थापना के उद्देश्य से 160 एकड़ के लगभग एक बड़े भूमिखंड का दान दिया। स्वामी जी ने आनंद के साथ इस दान को ग्रहण किया। बाद में स्वामी तुरीयानंद ने जाकर वहां पर एक आश्रम की स्थापना की। यद्यपि स्वामी जी के जीवन काल में ही उस स्थान पर शांति आश्रम की स्थापना हुई थी, किंतु वे आगे उसे पूरा होते देख न सके।
2: मई मास के अंत में स्वामी जी को लंदन से लिगेट दंपति का पत्र प्राप्त हुआ कि वे जुलाई मास में पेरिस जाएंगे, और उन्होंने प्रार्थना की कि स्वामी जी भी वहां पहुंच जाएं। इधर पेरिस प्रदर्शनी की धर्म इतिहास सभा के विदेशी प्रतिनिधियों के लिए गठित स्वागत समिति की ओर से स्वामी जी को इस सभा में भाषण देने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ। इन दो कारणों से वे कैलिफोर्निया के शिष्य व भक्तों से विदा लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे। रास्ते में अवश्य ही अपने पुराने मित्र और शिष्यों से भेंट करने के लिए उन्हें शिकागो व डेट्रॉइट में उतरना पड़ा था।
1: अंतरंग भक्त व मित्रों के साथ एक सप्ताह बिताकर स्वामी जी 10 जुलाई को न्यूयॉर्क लौट आए। अंत में कुछ दिन विश्राम करके 20 जुलाई को उन्होंने पेरिस की यात्रा की।
2: पेरिस पहुंचकर स्वामी जी ने लिगेट दंपत्ति का आतिथ्य स्वीकार किया। इस समय श्रीमती ओली बुल डिटानी प्रांत के लानियोन नामक स्थान में निवास कर रही थी। उनके आमंत्रण पर स्वामी जी थोड़े दिनों के लिए वहां पधारे। श्रीमती बुल के निवास स्थान पर फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक व लेखक मां जूल बोआ के साथ स्वामी जी का परिचय हुआ। इनके साथ हमेशा दर्शन, साहित्य और ऐतिहासिक गवेषणा के संबंध में चर्चा होती थी, जिससे स्वामी जी को फ्रांसीसी भाषा सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था।
1: लिगेट दंपत्ति अपने श्रद्धेय अतिथि की सब प्रकार की सुख सुविधाओं के प्रति लक्ष्य रखते हुए मुक्त हस्त से व्यय करने लगे। प्रतिदिन विख्यात दार्शनिक, साहित्यकार, चित्रकार, भास्कर यानी संगतराश, धर्माचार्य व वैज्ञानिक गण उनके भवन में आमंत्रित होते थे। पेरिस की विराट प्रदर्शनी व धर्म सभा के उपलक्ष्य में अनेक पंडित गण संसार की सर्वश्रेष्ठ नगरी में एकत्रित हुए थे। स्वामी जी ने लिखा है,
0: कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, समाज सेवक, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, चित्रकार, शिल्पकार, संगतराश, वादक आदि नाना प्रकार के व्यक्तियों का आगमन श्री लिगेट के घर में होता था। उनके घर में होने वाला विराम वार्तालाप, नाना प्रकार के विचारों का विकास, मनमोहक संगीत, विद्वानों की गंभीर चर्चाएं सभी उपस्थित जनों को मुग्ध बना देती थी।
2: लगभग 3 मास पेरिस में बिताकर स्वामी जी 24 अक्टूबर की रात को अपने साथियों के साथ वियना की ओर रवाना हुए। वियना नगरी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों को देखकर हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बल्गेरिया होकर उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल में प्रवेश किया। कॉन्स्टेंटिनोपल नगर को बहुत कुछ प्राच्य भावापन्न देख स्वामी जी प्रसन्न हुए और दूसरे ही दिन अपनी शिष्या कुमारी मैकलियॉट के साथ नगर देखने गए। तोप निर्माता मैक्सिम साहब के दिए हुए परिचय पत्र की सहायता से स्वामी जी का स्थानीय अनेक विख्यात व्यक्तियों से परिचय हुआ।
1: इस प्रकार कुछ दिन आनंद पूर्वक बिताकर स्वामी जी प्राचीन ग्रीक सभ्यता की समाधि भूमि एथेंस में पधारे। एथेंस नगरी का दर्शन कर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिस्र देश की ओर यात्रा की। कायरो शहर पहुंचकर स्वामी जी म्यूजियम में रखी हुई प्राचीन सामग्रियों को उत्सुकता से देखने लगे और अपने साथियों को मिस्र के अतीत इतिहास से फैरो राजवंश का विवरण सुनाने लगे। पिरामिड, स्फिंक्स आदि को देखकर उनके संबंध में विशेष बातें स्वामी जी अपने साथियों को बताने लगे। साथियों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी प्राचीन मिस्र के संबंध में इतनी अधिक बातें जानते हैं कि मानो वे जीवन भर वहाँ के प्राचीन तत्वों की ही चर्चा करते रहे हों।
2: मिस्र में पहुँचने के बाद ही भारत में लौटने के लिए उनका मन अत्यंत आकुल हो उठा। इस बीच समाचार आया, मायावती मठ के संस्थापक श्री सेवियर बहुत बीमार हैं। इस समाचार को पाते ही स्वामी जी ने भारत में लौट आने का निश्चय कर लिया। बंबई बंदरगाह में उतरकर वे कलकत्ते की ओर चले। इस बार अभिनंदन, भाषण, लोक शिक्षा, प्रचार कार्य इत्यादि की ओर उनकी तनिक भी इच्छा ना थी और इसीलिए अत्यंत गुप्त रूप से गाड़ी पर चढ़े।
1: सन 1900 ईस्वी के 9 दिसंबर की रात को स्वामी जी अचानक बेलूड़ मठ में उपस्थित हुए। मठ के सन्यासी और ब्रह्मचारी गण रात के भोजन के लिए बैठे थे। इतने में वहां का माली दौड़ते हुए आया और कहा,
3: बाबा जी एक साहब आए हैं, अंदर आना चाहते हैं, पर फाटक में तो ताला लगा है। उन्होंने कहा है कि चाबी लेकर आओ और फाटक खोलो जल्दी।
4: अरे वो टंगी तो है वहाँ, ले जाओ।
3: कहाँ पर बाबा जी?
4: वो देखो सामने।
3: हाँ, इस वक्त कौन साहब आए होंगे?
4: अब पता नहीं बाबा जी, अभी देख कर आते हैं।
3: साहब जी कहाँ गए? गाड़ी तो खाली है, साहब है ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ गए, देखता हूँ, बाबा जी को बोलता हूँ।
4: बाबा जी फाटक तो खोल दिया है पर गाड़ी तो खाली है, साहब उसमें नहीं है।
3: नहीं है तो फिर कहाँ गए?
5: मैं यहाँ हूँ। अरे देख क्या रहे हो, मुझे पहचाना नहीं? अरे कोट पैंट पहना हूँ तो क्या इतना बदल गया हूँ कि तुम लोग पहचान नहीं पा रहे?
4: अरे स्वामी जी आप हैं?
6: वाह, बिल्कुल साहब जैसे लग रहे हैं।
3: पर फाटक तो बंद था, आप अंदर कैसे आए?
5: दीवार फांद कर, बाहर से खाने की घंटी सुनकर लगा अगर जल्दी अंदर ना आऊं तो खाना नहीं मिलेगा। बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। ओ, खिचड़ी पकी है। जल्दी लाओ भाई जल्दी।
6: आइए, आप ही के लिए है।
2: श्रीयुत सेवियर से मिलने की इच्छा से स्वामी जी यथा शीघ्र भारत लौट आए, परंतु उनसे मिल नहीं सके। बेलूर मठ में पहुंचते ही उन्हें पता चला कि सेवियर 28 अक्टूबर 1900 को ही देह त्याग कर चुके हैं। श्रीमती सेवियर ने उनके पेरिस के पते पर पत्र लिखकर उन्हें ये संवाद भेजा था, परंतु स्वामी जी उस समय पूर्व यूरोप तथा मिस्र का भ्रमण कर रहे थे। पत्र भी उनके पीछे घूमता हुआ 2 माह बाद बेलूर पहुंचा। सेवियर के निधन पर स्वामी जी अत्यंत दुखी हुए थे, ये उनके कई पत्रों से ज्ञात होता है। श्रीमती सेवियर का पत्र मिलने के पूर्व 11 दिसंबर को उन्होंने कुमारी मैकलाउट को लिखा था,
5: परसों रात को मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ, परंतु खेद है कि इतनी शीघ्रता में लौटकर भी कोई लाभ नहीं हुआ। बेचारे कैप्टन सेवियर कुछ दिनों पूर्व ही परलोक गमन कर चुके हैं। इस प्रकार 2 महाप्राण अंग्रेजों ने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए आत्मोत्सर्ग किया है। यदि कोई शहीद हो तो यही है।
2: ओली बुल को उन्होंने 15 दिसंबर के पत्र में लिखा,
5: श्री सेवियर अब नहीं रहे, ये सचमुच मेरे लिए एक बड़ा आघात है। न जाने हिमालय के कार्य का भविष्य अब क्या होगा। श्रीमती सेवियर अब भी वहीं हैं और और मैं प्रतिदिन उनके पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
1: स्वामी जी ने निश्चय किया था कि वे श्रीमती सेवियर को सांत्वना देने मायावती जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिमालय की गोद में स्थित मायावती के अद्वैत आश्रम का भविष्य क्या होगा, इसका निर्धारण करना भी आवश्यक था। सेवियर दंपत्ति के अर्थ व उत्साह और स्वामी जी के शिष्यों के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो आश्रम पहले अल्मोड़ा में प्रारंभ हुआ और फिर मायावती में स्थानांतरित होकर पिछले 2 वर्षों से भी अधिक काल से सुचारू रूप से चल रहा था तथा जिसका प्रभाव क्रमशः दूर दूर तक फैल रहा था, वो क्या अपनी शैशवावस्था में ही विनष्ट हो जाएगा, या फिर श्रीमती सेवियर अपने पति द्वारा किए गए कर्म को पत्नी का कर्तव्य समझकर पूर्ववत ही चलाती रहेंगी। इसी विचार ने स्वामी जी के मन में एक समस्या का रूप धारण कर लिया था। बाद में श्रीमती सेवियर का पत्र मिलने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी शंका निराधार थी। श्रीमती सेवियर ने अपने पति के वियोग को एक धर्म प्राण सती के समान ही सहन किया था और मायावती का कार्य बंद करने की बात उन्होंने कल्पना तक नहीं की।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

90.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे देश के ख्यात शायर और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बशीर बद्र को कल हमने खो दिया। रेडियो आजाद हिंद उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, आपको देते हैं अब जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। कल सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:10 से। इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन, कल आप सुनेंगे इसमें सूक्त 128। भक्ति संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा सुबह 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग, जिसका प्रसारण समय होता है सुबह 8 बजे, ये कार्यक्रम कल केंद्रित रहेगा नारायण मल्हार जोशी की पुण्यतिथि पर। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 से। रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा का एपिसोड 10 कल प्रसारित किया जाएगा। 9 बजे का समय होगा कार्यक्रम योग संवाद का, जिसमें आप सुनेंगे योग वशिष्ठ, अहंकार और चित्कार दोष। भारत विभूति, ये कार्यक्रम कल केंद्रित रहेगा सुंदरलाल बहुगुणा पर। प्रसारण समय 9:30। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर केंद्रित कार्यक्रम परिक्रमा कल आप सुनेंगे सुबह 10 बजे, और 10:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद। कल का आकर्षण होगा सरजू प्रसाद सिंह। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर सागर, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे आकांक्षा मिश्रा का बुंदेली गायन। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे युग प्रवर्तक विवेकानंद, इस कार्यक्रम का एपिसोड 59 कल प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम, जिन्हें आप सुनेंगे कल प्रातः 7 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। रात्रि के 10:01 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 7 बजे आपसे हम पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।